हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध

0: भारती मुंबई केंद्र से और विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले सुनेंगे वंदनवार चिंतन, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 भूले बिसरे गीत और 7:30 हम है राही प्यार के। सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण के

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से आती हैं जो उन्हें पार करने की हिम्मत रखते हैं, और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कभी हार नहीं मानते। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज और प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। सुनिए आज का भाग 189, 6:35 पर। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। सुनिए इस श्रृंखला का चौथा भाग, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। सात बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक है मिलिंद सबनिस। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुनिए इसका भाग 28। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 4 बजे सुनिए पिटारा में गीतों भरी कहानी। कहानी है जीवन एक सरल रेखा। लेखिका श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। संपादन सहायक काजल।

भदरगी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। पांच बजकर 30 मिनट पर सुनिए तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता, 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका बुखार, लेखन है वीरेंद्र कश्यप का, निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर, इन्हीं की प्रस्तुति। आठ बजकर पंद्रह मिनट पर रात्रि चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, और 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत, लेखक एवं स्वर राजुल अशोक का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलख कहउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ का भाग 189।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कोश फूले, कुमुदिनी जिये सकुच रही, भृंग लता झूले। श्रोताओं, कृष्ण भक्ति का संसार बड़ा विविध रंगी है। इसमें कृष्ण के बाल रूप, सखा रूप और मधुर रूप की अद्भुत छटा बिखेरी गई है। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला में भक्ति के विविध रूपों और आयामों पर चर्चा हम कर रहे हैं अनूप जलोटा जी के साथ। इस कड़ी में आज भक्ति भाव की कौन सी छटा अनूप जी बिखेरेंगे, हम उन्हीं से पूछते हैं। अनूप जी बताइए।
2: आज हम कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण एक ऐसे ईश्वर हैं जो हमें अधिकार देते हैं, थोड़ी लिबर्टी दे देते हैं कि हम उनको चोर भी कह सकते हैं। हम उन्हें माखन चोर कहते हैं, हम उनको रणछोड़ कहते हैं, हम उनके साथ नृत्य कर सकते हैं, हम उनकी रासलीला में शामिल हो सकते हैं। भगवान ऐसे कौन से हो सकते हैं जो इतनी हमें इजाजत देते हो कि हम उनके साथ कर सकें। इसके

0: बड़ी सुंदर कहानी है कि जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, तो जो वानर सेना थी वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे साथ तो बड़ा धोखा हो गया। उन्होंने कहा क्या धोखा हो गया, तो हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके साथ खेलने आए थे, आनंद करने आए थे, और आपने हमको रावण युद्ध में लगा दिया, उसके बाद अब आप राजा बन गए, अब तो हम बिल्कुल आपके साथ खेल नहीं सकते, हम तो बड़ा दूर रहते हैं आपसे। तो भगवान राम ने कहा कि बात सही है, अब मैं राजा बन गया हूँ, तुम लोगों के साथ मैं खेल नहीं सकता, लेकिन द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम लोगों को ग्वाल बाल बना दूंगा और हम सब खेलेंगे
1: जी।
0: तो अपने भक्तों को देखो भगवान यूं संभाले, भय राम जी के बानर किशन जी के ग्वाले। तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जो हमें आनंद देते हैं, मित्र बन के हमारे साथ खेलते हैं। लीजिए ऐसा ही एक भजन आपको सुनाता हूँ।
2: वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी

सचमुच हम बांसुरी बजैया के रंग में जैसे डूब गए थे, खो से गए थे। अनूप जी, हमें बताइए कि इस भजन में किस

0: राग की चर्चा थी
1: कोई प्योर राग इसमें हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, मिक्स है।
0: जी। और हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे भजन आपने गाए हैं, उन भजनों की रचना प्रक्रिया बताते हुए कुछ झलक प्रस्तुत करें।
1: मैया मोरी मैं नहीं
0: जी,
1: माखन
0: जी।
1: खायो, इस भजन को पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले गाया और कमाल का गाया। उसके बाद उसी श्रृंखला में उसी भजन को कुछ उसी स्टाइल में मेरे पिताजी ने उतारा और उसको एक सरलता प्रदान करी। उसके बाद कई लोगों ने उस भजन को गाया अलग अलग धुनों में, लेकिन हमने, मैंने और पिताजी ने उसी धुन को साथ रखा जो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने गाई थी। इस भजन के साथ साथ जो व्याख्या होती है वो बड़ी ही हृदय स्पर्शी है
0: जी।
1: कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी। सोचा था कि कन्हैया आएंगे, ये मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई है, समझ गए कि ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, मेरे साथियों को भूख लगी है, सबको माखन खाना है, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा थोड़ा मैं भी खा लूं, और जैसे ही जरा सा माखन मुख से गया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी।
0: क्या बात है।
1: कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तो तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू किया। घंटी बोली हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो हम कैसे चुप रह सकते हैं।
0: क्या बात।
1: बस आ गई गोपी, पकड़ लिया कन्हैया को, ले गई यशोदा के पास और यशोदा पूछ बैठी कन्हैया तूने माखन खाया क्या, और कन्हैया के मुख से अनायास

भोर और सांझ, तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास हो।

अब इसमें एक नई व्याख्या सुनिए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमने हमेशा

माखन ही चुराया है, तुम्हारा नाम पड़ गया माखन चोर। अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, वो सब तो तुम नहीं चुराते, तो ये माखन से इतना प्रेम क्यों है? कन्हैया बता रहे हैं यशोदा को कि उनको माखन इतना प्रिय क्यों।

0: वाह, बहुत सुंदर, भाव विह्वल कर देने वाला भजन आपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया और हम सब की आंखें नम है इस समय।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत की है आशीष झा। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: सुनिए सुनिए शहर की सुबह, चाय की चुस्की और रेडियो लेक सिटी का साथ। आज है शुक्रवार यानी डिजिटल एंड फन फ्राइडे। नमस्कार, उदयपुर में सुबह 8:30 बजे। सुबह सुबह की ताज़ा खबरें, लोकल अपडेट्स तो होंगी ही, लेकिन आज हम वर्ल्ड फैमिली डे पर बात करेंगे खास मेहमान से और स्मार्ट लिविंग में जानेंगे प्राइवेसी कितनी ज़रूरी है डाटा की और भी बहुत कुछ, तो सुनना ना भूलें। नमस्कार उदयपुर, सुबह 8:30 बजे रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। जिंदगी की मिट्टी से उठी कहानियों का मोल समझाते हैं ये 2 बीघा जमीन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शास्त्रीय संगीत से महकता ये गाना। फिल्म है हमदर्द, प्रेम धवन के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

आइए अब सुनते हैं सखी की उलझन। चित्रलेखा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल और संगीत है रोशन का।

ये थिरकता गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। आ फिल्म से हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे सजा फिल्म से संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाजों में गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: गीत आदि नारायण राव का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माइग्रेन का दर्द हो या हाथों की कपकपी, इसे मामूली थकान मत समझिए। आज सुनिए हेलो डॉक्टर रेडियो लेक सिटी पर सुबह 9:30 बजे। हमारे साथ होंगे शहर के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सिंह और सुलझाएंगे आपकी बहुत सारी उलझनों को या आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन।
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
9: RBI कहता है
10: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आइए विविध भारती मुंबई से सुनते हैं, हम है राही प्यार के।
12: किसी बगावत अजनबी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गाना, आनंद बख्शी के बोल और संगीत राहुल देव बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: मीठी सी शरारतें भी हैं और थोड़ी बहुत छेड़खानियाँ। अमीर गरीब फिल्म से आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गाना, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: खड़ी हो जा,

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हमें रही प्यार के इस कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
4: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
7: रुक जा बुड्ढू।
8: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
6: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
8: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
10: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
11: दिमाग चार्ज कर अपना।
12: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
11: देखा?
10: पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
12: अब क्या करोगे?
10: फ्री वाईफाई है ना।
11: बुद्धू सुधर जा।
12: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
10: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
12: RBI कहता है
13: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
14: मिलिए हमारी खास मेहमान न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सिंह से, जो बताएंगे कैसे एक स्वस्थ दिमाग ही खुशहाल जीवन की चाबी है। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुबह 9:30 बजे रेडियो डिग सिटी पर सुनना ना भूलें। कार्यक्रम के दौरान आप भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9462697568, इन पर आप अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के। आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म से ये गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के भूल।

जुगनू फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाना आनंद बख्शी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का आखिरी गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन।

0: इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं।
1: रेडियो लेक सिटी पर सुनना ना भूलें सुबह 8:30 बजे। नमस्कार उदयपुर, आज है डिजिटल एंड फन फ्राइडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
2: साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
3: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
4: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां, वैश्विक

स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में

0: देश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए

0: कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में

0: रास्ते मुश्किल सही, पर चलना छोड़ना नहीं। बस अपने सपनों से तुम मुंह मोड़ना नहीं। रात की क्या औकात जो सूरज को रोक पाए, अपने भीतर की अगन को तुम बुझने देना नहीं। तेरे पसीने की हर बूंद एक दिन मोती बन जाएगी, आज की छोटी सी कोशिश कल एक नई कहानी बनाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज़ करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के इस अंक में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ हैं
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ हम बता दें कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम क्या खास लेकर आए हैं।
1: तो आज है डिजिटल और फन फ्राइडे और खास बात यह है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
0: जी,
1: यानी आज का दिन होने वाला है डिजिटल और इमोशनल भी। ठीक है, तो आज के हम डे स्टार्ट में लेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, लोकल अपडेट्स होंगी, आईपीएल अपडेट्स होंगी ही, और उसके बाद होगा हमारा अगला सेगमेंट स्मार्ट लिविंग। इसमें आप जानेंगे डेटा प्राइवेसी के इम्पोर्टेंस के बारे में।
0: बिल्कुल, और इसके क्योंकि आज शुक्रवार है तो फिल्मी फ्राइडे, इस हफ्ते जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं उन फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे, और OTT सीरीज जो आ रही है उन पर भी बात करेंगे। साथ ही बॉलीवुड में जो बिग बजट मूवीज़ हैं उन मूवी के बारे में भी थोड़ी सी चटपटी बातें होंगी, और अंत में हम बातचीत सेगमेंट के अंदर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता रुझान विषय पर समाज शास्त्री डॉक्टर कंचन पानेरी से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
1: तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करें।

0: तो अब हम शुरू करेंगे लोकल अपडेट्स की। तो आज है एक सुरीली यात्रा और उसमें शामिल होंगे हम सब। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी उदयपुर प्रस्तुत करता है म्यूज़िक कॉन्सर्ट, लाइट म्यूज़िक गज़ल्स का ये कॉन्सर्ट है। इसमें आर्टिस्ट है डॉक्टर देवेंद्र सिंह हिरन, डॉक्टर पामेल मोदी। शुक्रवार 15 मई 2026 यानी आज शाम 7:30 बजे ये इवेंट होने वाला है और इसके वेन्यू है MLSU यूनिवर्सिटी कैंपस, MLSU गेस्ट हाउस, बप्पा रावल ऑडिटोरियम उदयपुर। तो इस जगह पे आप ये कंसर्ट सुन सकते हैं और इसकी पूरी प्रोसीजर्स के लिए या फिर पास के लिए आप आकाशवाणी के वर्किंग आवर्स में कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ साथ ओ अमित, मैंने अपनी चाबी कहाँ रख दी, याद ही नहीं आ रहा। पर अक्सर ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें भूल जाते हैं तो उसको कोई गंभीर नहीं समझते, ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद भूल गए तो फिर याद आ जाएगा। पर ये बातें होती है मेमोरी की और नर्वस सिस्टम की कि आपको अगर बार बार चक्कर आते हैं या हाथ पैरों में सुन्नपन महसूस होता है तो आप सीधे डॉक्टर से सवाल पूछ सकेंगे हमारे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में, जो है आज न्यूरोलॉजिकल स्पेशल एपिसोड होगा। डॉक्टर अमित सिंह होंगे हमारे साथ, डॉक्टर अजीत सिंह होंगे हमारे साथ। सुबह 9:30 बजे रेडियो लेक सिटी पर ये प्रोग्राम होगा हेलो डॉक्टर, और हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे 9462697568।
1: जी, और इसी के साथ में मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज बिजली बंद भी रहने वाली है सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। और जो इलाकों में बिजली बंद रहेगी वो है गारियावास, GSS के गारियावास, पुलिस लाइन, कृषि मंडी, सेक्टर 8, माली कॉलोनी, आवरी माता कॉलोनी, रेती स्टैंड, आनंद विहार, JC बॉस हॉस्टल के जो रोड है वो पानीरियों की मादरी, कांत नगर, टेकरी और सेंट्रल एरिया, इन एरिया में बिजली बंद रहने वाली है।
0: और मॉर्निंग आवर्स स्टार्ट हो गए हैं, हम अपने काम की ओर चले हैं तो देखिए जरा सूरज तपने ही लगा है वापस से, मतलब सुबह से ही हमारी जो गर्म हवाओं वाला दौर शुरू होता है ना अमित, रात तक लगभग यही गर्म हवाएं चलती रहती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का तापमान रहा अधिकतम 42.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। अब दोपहर में तो बिल्कुल सड़कें सूनी सूनी सी रहती हैं क्योंकि लोग कैसे जाएं, आखिर इतनी धूप होती है, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तो आखिर आप अवॉइड ही कीजिए दोपहर में जाना, क्योंकि ठंडे पानी की और छांव की तलाश हर तरफ होने लगती है। वैसे अगर आज फैमिली डे है, इंटरनेशनल फैमिली डे, तो फतेह सागर पर शाम को जाना तो बनता है।
1: बिल्कुल।

0: आईपीएल मुकाबलों की अगर हम बात करें तो ये आईपीएल सीजन बहुत ही ज़्यादा उत्साह भरा है। और कल के मैच की अगर हम बात करें तो कल खेला गया था मैच जिसमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने थी। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और दर्शकों को रोमांच और उत्साह से भर दिया। बल्लेबाजों ने शानदार चौके छक्के लगाए, वहीं गेंदबाजों ने भी कड़ी टक्कर दी। मैच का माहौल आखिरी ओवर तक बेहद रोमांचक बना रहा, फैंस अपनी टीम को चीयर करते नजर आए। आईपीएल का ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर स्कोर की हम बात करें तो सबसे पहले पंजाब की पारी ने 20 ओवर में 200 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर, और इसको चेस करते हुए मुंबई ने 3 ओवर में 50 रन बना लिए थे और काफ़ी रफ्तार से रन बनाते हुए वो इस स्कोर को चेस करते रहे। मुंबई की जीत के जो हीरो हैं वो है तिलक वर्मा, उन्होंने 33 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों के साथ नाबाद 75 रन की पारी खेली। उन्होंने आईपीएल के इस सीज़न में अपना दूसरा 50 लगाया है और शार्दुल की घातक गेंदबाजी का भी सामना करना पड़ा। मुंबई के लिए मीडियम पेसर शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करी और 4 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट भी लिए।
1: तो तिलक वर्मा रहे कल के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। आज के मैच की बात करें अगर अमित, तो आईपीएल का आज 59th मैच होने वाला है लखनऊ सुपर जॉइंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में शाम 7:30 बजे, दोनों ही के बीच में 5 दिन में ये दूसरा मैच हो रहा है। 10 मई को इससे पहले इन दोनों के बीच मैच हुआ था जिसमें सीएसके जीती और लखनऊ को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। तो उम्मीद कर रहे हैं कि लखनऊ आज हिसाब बराबर करने के लिए खेलना चाहेगी। तो फिर अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो टीवी का रिमोट शाम को संभाल लीजिएगा और मैच का मज़ा लीजिएगा।

0: तो ज्योति कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब एक महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो है डेटा प्राइवेसी।
1: रुकिए रुकिए, मैं आपसे एक बात पूछने वाली हूँ। आज है इंटरनेशनल फैमिली डे, तो क्या आप नेट पर डालेंगे फोटो अपनी फैमिली की?
0: हाँ बिल्कुल।
1: और हम सब यही करते हैं, हम अपनी सारी फोटोज हो, अपनी सारी डिटेल्स हो, अपनी लोकेशन हो, हमने कुछ भी काम किया हो, तुरंत हम
0: इंटरनेट पे
1: शेयर
0: डाल
1: करते
0: देते
1: हैं।
0: बिल्कुल। और यहीं से एक खतरा जो बढ़ता है वो है आपकी सेफ्टी का, यानी कि डिजिटल सेफ्टी का जो खतरा बढ़ता है, क्योंकि आपके यही इंप्रेशंस, जो छोटे छोटे इंप्रेशन हैं, आप फोटो डालते हो, लोकेशन डालते हो, या बहुत सारी चीज़ें आप जो शेयर करते हो, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी बाइक पसंद है, आपको कहाँ घूमना है, इन्हीं चीज़ों से जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसकी सिक्योरिटी पर हम बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि लेटेस्ट गैजेट खरीदना हमारा हमारा शौक होता है, हमें बड़ा पसंद होता है कि मेरे पास देखिए कौन सा फ़ोन है, लेकिन क्या हम उनका समझदारी से इस्तेमाल करना भी सीखते हैं? क्या जानते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमें अब यूज़ करना है? और कौन, अब देखिए हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट एसी है, मतलब माइक ओपन है और वो हमारी हर बात हमेशा सुनते रहते हैं।
0: जी
1: हमें चाहिए कि जब हम उन चीज़ों को उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो उनका माइक ऑफ कर दें, परमिशन भी हर ऐप के लिए हम लोग अलाउ ना करें।
0: बिल्कुल। और इसी चीज़ों से बचने के लिए हमें जो खास बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि पहले तो हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, दूसरी चीज़ ऑथेंटिक होने के साथ ही उनका पासवर्ड स्ट्रांग हो, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उनको हर चीज़ की परमिशन ना दें, यानी कि फ़ोन में फ़ोटो एक्सेस की परमिशन, आपकी आवाज़ सुनने की जो एक्सेस है वो ना दें, और साथ ही जो आपकी लोकेशन शेयर करने की, क्योंकि मैं आपसे एक बात शेयर करूं, जैसे मेरा फ़ोन कई बार मुझे ऐसा बताता है कि अच्छा शाम की 5 बज गई, अभी तो आपको वॉक पे जाना है,
1: हाँ,
0: मतलब वो इतना मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप उसको, उन चीज़ों को ऑफ़ करें, क्योंकि हर चीज़ पे वो अगर निगरानी रखेगा तो आपकी पर्सनल ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बचेगी।
1: और इवन आप सोचिए अमित, कि हम घर में जैसे फैमिली बैठ कर डिस्कस कर रही हैं कि इस वीक मुझे नई ड्रेस लेनी है, तो आपके फ़ोन में वो ऑप्शंस आने
0: ऑप्शंस
1: लगेंगे
0: आने
1: कि ये
0: लगेंगे।
1: मार्केटिंग वाले ऐप्स आप ले सकते हैं, या फिर इस जगह से ये खरीदें, यहाँ पे इस डिस्काउंट चल रहा है। आप सोचिए कि आपकी प्राइवेसी अब बची कहाँ। तो
0: बिल्कुल
1: इसकी जितना आप अपने डाटा को मैनेज करना सीखेंगे ना, तो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख पाएंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब भी आप गूगल सर्फिंग कर रहे हों तो किसी भी पॉपअप पे या फिर किसी भी अनावश्यक लिंक पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि बहुत सारे लुभावने ऑफ़र आएंगे, यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी डिटेल देकर आप कार जीत सकते हैं जैसे ऑफ़र्स, तो इन चीज़ों के लालच में नहीं आना है। और हमें इस तरह से ऐसे अनजान लिंक पर जाकर कुछ भी अपनी डिटेल साझा नहीं करनी है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि ये जो डेटा है ये हमारी, सिर्फ हमारी सेफ्टी नहीं, हमारे देश की सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें।
1: इवन आप शॉपिंग एप्स जब यूज़ करते हैं, आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ओपन करके छोड़ देते हैं कि हमें ही तो फ़ोन यूज़ करना
0: जी
1: है, हमें ही OTP मिलेगा और हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन सपोज़ किसी ने आपका फ़ोन लिया और उसमें से OTP लेकर के आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, पैसे चले जाते हैं, या इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होती है, बाद में हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया था, कैसे हो गया।
0: जी बिल्कुल। और सबसे ख़ास बात, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो सार्वजनिक जगह है, तो वहाँ का सार्वजनिक वाईफाई यूज़ ना करें, और अभी कुछ ऐसे गैजेट्स भी हैं कि आप चार्जिंग पॉइंट भी यूज़ ना करें, क्योंकि जैसे ही आप वो पॉइंट कनेक्ट करेंगे डेटा केबल के थ्रू, आपका फ़ोन हैक होने के चांसेस हैं।
1: बिल्कुल, आप फॉर्म भरते हैं कोई भी एग्ज़ाम का, तो फॉर्म भरने के बाद जैसे आप अपने आधार कार्ड हैं और या फिर अपने पैन कार्ड हैं, इन सब की एक पूरा एक फॉर्मेट बना, मतलब फॉर्म रेडी करने के बाद आप उसकी जो PDF बनाते
0: जी
1: हैं वो शेयर करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ जो ऑथेंटिक साइट्स हैं, जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको फॉर्म फिल करना है, उन्हीं में ये सारी चीज़ें साझा करें,
0: बिल्कुल
1: अन्यथा इन चीज़ों के दुरुपयोग होने की बहुत संभावना रहती है।
0: बिल्कुल।

0: और क्योंकि शुक्रवार है तो फिल्मों पे बात करनी तो बनती है। और इस हफ्ते जो इम्पॉर्टेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली कुछ सीरीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर फिल्म कर्तव्य आने वाली है। इस फिल्म में सैफ अली खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नज़र आएंगे जो अपराध और राजनीति के जाल में फंस जाता है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में रणदीप हुडा की लोकप्रिय वेब सीरीज़ इंस्पेक्टर अविनाश का सीज़न 2 भी आने वाला है। इसमें ज़्यादा एक्शन, अपराध और सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा। रणवीर सिंह की जो चर्चित फिल्म थी धुरंधर, वो भी ओटीटी पर आने वाली है और इसका नया वर्जन अनकट और ज़्यादा दमदार रहने वाला है। इसी के साथ अगर इंटरनेशनल कंटेंट आप पसंद करते हैं तो बर्लिन एंड द लेडी विथ एरमाइन भी रिलीज़ होने वाली है। ये मशहूर सीरीज़ बर्लिन की नई कहानी है और एग्ज़ाम्स करके एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज़ आने वाली है जो शिक्षा प्रणाली और परीक्षाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर केंद्रित है।
1: तो ये फिल्में इस वीक रिलीज़ होने वाली हैं और ओटीटी पर जो सीरीज़ आने वाली हैं, और उसके दूसरे हिस्से में यानी कि फिल्मी फ्राइडे के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं अमित उन फिल्मों की जिनका बजट सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। यानी कि ये सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि पर्दे पर रची गई एक अलग ही दुनिया सी लगती है। जानते हैं ये कौन कौन सी फिल्में हैं। तो इनमें हम ब्रह्मास्त्र को ले लेते हैं क्योंकि इस फिल्म ने VFX की परिभाषा ही बदल दी।

0: जितना काम इस फिल्म के वीएफएक्स पर हुआ ना, उतना शायद ही किसी भारतीय फिल्म पर पहले हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में भी इतना समय लगा कि फिल्म का बजट और समय दोनों बढ़ते चले गए, और इसमें जो अस्त्र बताए गए थे उनके कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करने के लिए असली प्राचीन भारतीय शास्त्रों की मदद ली गई थी। और अब बात करें उस फिल्म की जिसने बजट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो है 2.0। लगभग 570 करोड़ रुपए का बजट रहा अक्षय कुमार रजनीकांत की ये फिल्म। इसमें अक्षय कुमार ने जो पक्षीराज का लुक अपनाया, उसके लिए उन्हें हर दिन 4 घंटे प्रोस्थेटिक मेकअप में बिताने पड़ते थे। यशराज फिल्म्स की बात करते हैं तो उस फिल्म में जिसमें उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया, वो थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। और इस फिल्म में जो दो विशाल समुद्री जहाज़ दिखाई दिए थे, वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे। माल्टा में सचमुच के दो विशाल के जहाज बनाए गए थे जिनका वजन बहुत ज्यादा था, पर फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें तोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें भारत वापस लाना बहुत महंगा पड़ रहा था।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ घड़ी की तरफ देखें तो वक्त हो रहा है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, जिसे आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1,300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में

कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की

0: रुपये और डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कॉर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्र हित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूंगा और एस्कॉर्ट गाड़ी इसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कौन मालूम करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लगाएंगे। तो डेथ हुई उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल कंडोलेंस देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू बहाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर

0: दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। आइए अब सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता रुझान, इस विषय पर समाज शास्त्री डॉक्टर कंचन पानेरी से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज है विश्व परिवार दिवस और इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंचन पानेरी। आप समाज शास्त्री हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो परिवार दिवस है, वर्तमान में जिन परिवारों का विघटन हो रहा है या फिर जो परिवार की जो वर्तमान स्थिति है उस पर क्या आप दृष्टिकोण रखती है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: हम बात कर रहे हैं परिवार दिवस, तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसको हम कह रहे हैं, इसका वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है?
3: देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया था कि परिवारों का मानव जीवन में क्या महत्व है, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक या जो भी जिस भी प्रकार का संपूर्ण व्यक्तित्व में जो योगदान है उसको मान्यता देने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए। क्योंकि आज जिस तरीके के परिदृश्य में हम जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एकल परिवारों की प्रधानता हो रही है, संयुक्त परिवार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो हम एक वो बड़े आंगन वाले 5 पीढ़ियों वाले परिवारों से एक फ्लैट संस्कृति तक सीमित होकर रह गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में परिवार की भूमिका क्या है, महत्व क्या है, सहयोग, संस्कार, धर्म, इन सब के बारे में, इन सब से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है वो कैसे महत्वपूर्ण है परिवार इन सब में। इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं ताकि हम जान सकें कि परिवार की हमारे जीवन में क्या महत्ता है।
2: डॉक्टर कंचन, आपने यहाँ पे एक अच्छी बात बताई कि हमने जो संयुक्त परिवार जो थे, जो हम एक साथ एक ही आंगन में खेला करता था पूरा परिवार, एक ही साथ वहाँ निवास करता था, उससे हम आए हैं फ्लैट संस्कृति में। तो ये जो परिवर्तन आप बता रहे हो, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं क्योंकि सामाजिक रूप से जो हमारी कला संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं उससे हम कहीं ना कहीं अभी भी संयुक्त परिवार में बंधे हुए हैं। हम मौकों पर या किसी भी आयोजनों पर हम साथ दिखते हैं। तो आपके हिसाब से जो संयुक्त परिवार किसे कहा गया है, और अगर जो परिवार है उनके क्या कोई लाभ इस तरह के हैं जिससे आज के वर्तमान परिदृश्य को अगर उसमें अपनाया जाए तो उससे कुछ लाभ या फायदा हो सकता है इंसान को?
3: संयुक्त परिवार हम उस परिवार को कहते हैं सामान्य तौर पर जहाँ पर 2-3 पीढ़ियों से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं। मतलब उनका निवास स्थान सामान्य है, उनका सामान्य रसोई घर है, भोजन एक ही स्थान पर बनता है, सब साथ में बैठकर करते हैं, जहाँ संपत्ति सामान्य होती है, उत्तरदायित्व साझा होते हैं, हर चीज़ में एकता, जहाँ समानता, हमें अपनेपन का भाव, घनिष्ठता जहाँ महसूस होती है। और संयुक्त परिवार के एक नहीं एकाधिक लाभ हैं मानव जीवन में, क्योंकि ये हमारे मानव, और इस विशेष रूप से कहूँ कि हमारे भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे समाज की एक मूल इकाई है संयुक्त परिवार। पुराने समय में उत्पादन और उपभोग दोनों की इकाई जो है वो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, और इसी कारण से सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होती थी। तो बहुत सारे लाभ हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो सामूहिक रहती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, संपत्ति का विभाजन नहीं होता है, परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा परिवार के भीतर ही मिल जाती है। बच्चों के पालन पोषण से लेके परिवार में धर्म, संस्कृति, प्रथाओं, परंपराओं के पालन से लेके और संस्कृति की और धर्म की रक्षा, इन सब का उत्तरदायित्व अगर हम कहें तो साझा रूप से संयुक्त परिवार ने अपने कंधों पर लिया है प्राचीन समय से लेके अब तक।
2: जो आपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है कि एक संयुक्त परिवार ऐसी एक इकाई हुई जहाँ पर 2-3 पीढ़ियाँ हैं, साथ में बैठ के खाना खाया जा रहा है, एक ही रसोई है जहाँ पर आपकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी के दो है उसके सभी साझा हकदार हैं और वो एक साथ विराजमान है एक जगह। लेकिन यहाँ पर अगर कोई समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है तो

0: बुद्धिजीवी अगर एक से अत्यधिक बुद्धिजीवी एक साथ अगर होंगे तो निश्चित रूप से वो कई मुद्दों पर एकमत नहीं हो सकते। साथ ही साथ क्योंकि संपत्ति और अधिकारों की हमने बात की, तो समय के आधुनिक दौर में आजकल महिलाओं को भी संपत्ति के अधिकार में अधिकार मिले जिससे वो अपना क्लेम कर सकती। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं इससे क्या संयुक्त परिवारों की कुछ हानियाँ या कुछ या ऐसे दोष भी हैं जो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं?
1: जी देखिए, हर सिक्के के अपने दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। तो संयुक्त परिवार में जितने उसके गुण हैं तो हम दोषों से इनकार नहीं कर सकते। संयुक्त परिवार का सबसे जो पहला दोष यही है कि वहाँ पर वो व्यक्ति जो कोई कार्य नहीं कर रहा है उसको भी उतनी ही साधन सुविधाएं मिलेंगी जितनी कि बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति है उसको मिल रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वो व्यक्ति है उसके मन में असंतोष के भाव जगते हैं। दूसरा ये कि सदस्य संख्या ज़्यादा है तो घरेलू कार्यों में महिलाओं का बहुत सारा समय चला जाता है। तो संयुक्त परिवारों में महिलाओं की स्थिति हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते, मतलब एक घरेलू दासी या सहायिका के तौर पर वो सवेरे जल्दी उठती है और देर रात तक घरेलू कार्य करती रहती है। अधिक सदस्य होते हैं तो लड़ाई झगड़े कलह की संभावना भी होती है और कई सामाजिक बुराइयां, जैसे हम कहें पर्दा प्रथा हो गई या बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गई, इनके पीछे कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का योगदान देखा जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं के कारण संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं बदलाव आने प्रारंभ हुए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार को तोड़ना प्रारंभ किया है और इसी कारण हम आज एकल परिवारों की अधिकता देखते हैं।
0: अगर बात की जाए वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि एकल परिवार बढ़ रहे हैं, एकल परिवार क्योंकि हर एक काम काज के हिसाब से, या फिर जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि सामाजिक दृष्टिकोण होने की वजह से महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिल पाते थे क्योंकि
1: जी
0: वो घर में एक सहायिका या मिडवाइफ की तरह काम कर रही थी।
1: जी
0: लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे अधिकार मिले, नारी भी शिक्षित हुई, परिवार शिक्षित हुए, तो क्या ये शिक्षा का ही एक सकारात्मक प्रभाव कहेंगे या एक सामाजिक विघटन कहेंगे इस एकल परिवारों का बढ़ना?
1: देखिए, हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि हर सिक्के के अपने दो पहलू होते हैं, तो संयुक्त परिवारों का विघटन क्योंकि किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे एकाधिक कारण उत्तरदायी होते हैं। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक बहुत सारे ऐसे कारण थे, जैसे पश्चिमीकरण का प्रभाव है, नगरीकरण का बढ़ना हुआ, स्त्री शिक्षा का बढ़ना हुआ, महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकलीं तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चला। तो इस कारण से उन्हें एकल परिवार इसलिए रास आया क्योंकि वहां पर उनके ऊपर कोई रोक टोक लगाने वाला, उन्हें बंधनों में बांधने वाला नहीं था। वो अपनी योग्यता के आधार पर अपना आसमान चुन पा रही हैं। तो संयुक्त परिवार का विघटन और एकल परिवार के बढ़ने के पीछे कुछ जो लाभ हैं वो यही है कि भाई पारिवारिक निर्णयों में पहले परिवार के बुजुर्ग, क्योंकि संयुक्त परिवार में निर्णयकर्ता होते थे प्रधान, तो उनकी बात को टालना उचित नहीं माना जाता था। यहाँ पर एकल परिवार में व्यक्ति स्वयं अपने निर्णय ले रहा है, पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, जो कि संयुक्त परिवार में बिल्कुल महिलाओं का क्षेत्र ही नहीं माना जाता था पारिवारिक निर्णय। दूसरा है कि व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है क्योंकि उसके ऊपर उत्तरदायित्व कम है, तो उसे समझ में आ रहा है कि ये मेरा जीवन है, मुझे ये कार्य करना है, ये नहीं करना है। अपने बच्चों के करियर को लेकर, भविष्य को लेकर, या विवाह को लेकर, या स्वयं के जीवन में सुधार करने के लिए व्यक्ति के पास समय मिला है। तो ये हम एकल परिवार के कुछ लाभ हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि एकल परिवारों को बहुत ज़्यादा महत्व अब दिया जाने लगा है।
0: अगर संयुक्त परिवार के स्ट्रक्चर को हम देखें और तुलनात्मक रूप से अगर हम एकल परिवार को देखें, तो आपको क्या लगता है कि लाभ के साथ साथ क्या इनमें दोष या हानियां हैं जिसको वर्तमान समय में लोग देख नहीं पा रहे हैं?
1: जी देखिए, संयुक्त परिवार के जो लाभ थे वो एकल परिवार में आने पे पूरी तरीके से समाप्त ही हो जाते हैं, क्योंकि एकल परिवार का मतलब ये कि माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो समय जो बुरा होता है वो बुजुर्गों के लिए होता है, क्योंकि अगर माता पिता, बहू बेटा दोनों वर्किंग हैं, वो जॉब कर रहे हैं, तो घर में जो बुजुर्ग है वो अकेले रह जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो एकल परिवार का जो अवधारणा है उसमें क्या है कि बच्चा भी स्कूल से घर आता है, वो हॉबी क्लास जाता है, कोचिंग क्लास जाता है, तो बुजुर्ग जो है वो मानसिक और शारीरिक, भावनात्मक रूप से अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अगर हम बच्चों के लिए एक नकारात्मक पहलू देखें तो ये है कि बच्चा घर आता है, माता पिता नहीं है, तो वो बच्चा भी भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं स्वयं को अकेला महसूस करेगा, तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल दुनिया की तरफ जाएगा या ऐसे संपर्कों की तरफ जाएगा जहां उसे नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, अगर एक नुकसान जो हम देखें तो ये कि अगर माता पिता दोनों कामकाजी हैं तो घरेलू उत्तरदायित्व जो है उसको लेकर भी बहुत समस्या रहती है, उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ जाता है, बच्चे डे केयर में या फिर नौकर के सहारे पलते हैं, तो वो भी उनके लिए एक समस्या वाली बात है। और एकल परिवारों के बढ़ने के साथ साथ

0: समाज में वृद्धाश्रमों और डे केयर सेंटर्स की अधिकता इसीलिए है क्योंकि पहले हमारा परिवार जो था वो हमारे लिए एक सुरक्षा का केंद्र था, जहां हमें सुरक्षा भी मिलती थी और हमें केयर भी मिलती थी। अब वो चीजें जो है उसका बाजारीकरण हो गया है कि अब आप डे केयर सेंटर में जाइए, आपको सुरक्षा और कुछ चाहिए तो घर पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एकल परिवार है और वहां रहने वाले हर व्यक्ति के पास समय की बहुत कमी है।
1: अगर वर्तमान परिदृश्य में ये बात भी है कि जो अपने सुरक्षा और जो एक अपनत्व की बात की है, भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव की बात की, कि पुराने समय में बच्चे दादा दादी नाना नानी के आश्रम में रहते थे और कुछ संस्कार से लेके अपनी कल्चर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था हुआ करता था, लेकिन आजकल की पीढ़ी को जिनमें हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, जेन जी, अल्फा, बीटा, इस तरह से, तो और ये प्योरली जो क्रैच है और या फिर पालना ग्रह जिसको हम कहते हैं, उनमें पल बढ़ रहे हैं। कामकाजी लोग बढ़ने की वजह से, क्योंकि दोनों दंपत्ति अगर कमा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी, क्योंकि सुरक्षात्मक और भावनात्मक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी एकल परिवारों की संख्या वर्तमान समय में बढ़ती जा रही है। इसका आप क्या परिणाम देखते हैं भविष्य
0: देखिए,
1: में?
0: एकल परिवारों का बढ़ना कहीं समाज की दृष्टि से लाभकारी तो है, पर इसके नुकसान से हम मना नहीं कर सकते कि इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिन फायदों को देखकर हम एकल परिवारों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम संयुक्त परिवारों से दूर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाकर भावनात्मक रूप से हम अपने आप को कटा महसूस करते हैं। जो बालक है वो दादा दादी, परदादा परदादी, चाचा ताऊ बुआ, कितने ही लोगों के संरक्षण में जब पला बड़ा होता है तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब उसका व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास होता है। वो धार्मिक रूप से भी जागरूक होता है, आर्थिक रूप से भी वो जागरूक होता है, परंपरा, धर्म, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, हर चीज़ से वो जागरूक रहता है। और पुराने लोग धार्मिक कथाओं कहानियों के माध्यम से एक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को एक अच्छे नागरिक के रूप में गढ़ देते थे। ये कला आज के एकल परिवारों में नहीं है, तो बच्चे डिजिटल दुनिया की ओर जा रहे हैं, और ये बच्चों के लिए सबसे एक भावनात्मक रूप से तोड़ने की बात है कि वहाँ जो भावनात्मक लगाव, प्यार, स्नेह, अपनापन जो बच्चों को परिवार में मिलता था, एकल परिवारों में उसकी कमी है। और इस कारण से समाज पर हम आगे चलकर इसके प्रभाव देखते हैं। ऐसे बहुत सारे शोध भी हुए हैं जिनमें बताया कि एकल परिवारों में रहने वाले बच्चे जो हैं भावनात्मक रूप से अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, या अपनी संस्कृति, सभ्यता, धर्म के बारे में उनकी जो जानकारी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो एक जो समन्वयपूर्ण, प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो बच्चों को मिलना चाहिए वो एकल परिवार जो है नहीं दे पा रहे।
1: अगर हम देखा जाए कि महिलाओं की स्थिति, चाहे संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, वो एक प्रमुख आधार स्तंभ है परिवार की इकाई के रूप में, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं संयुक्त परिवारों में बढ़ जाया करती थी, लेकिन आज के समय में वो जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ने की बजाय सिर्फ एक ही जगह पर आ चुकी है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी महिला की ही मानी जाती है, बच्चों के लालन पालन से लेकर घर की रसोई तक। लेकिन क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं और उन्हें ये सब अपने काम बाईपास करने होते हैं, उसके लिए नौकर रखना होता है या फिर उन्हें वो अपनी व्यवस्था खुद करनी होती है, अन्यथा खुद घर पर आके खाना बनाना होता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो वर्षों से चला आ रहा है, संयुक्त परिवार से अब हम एकल परिवार, और कहीं कहीं आज के वर्तमान स्वरूप में कमाने वाली महिलाएं परिवार के बंधन से भी मुक्त होकर बिल्कुल अकेला जीवन भी जी रही है, तो आपको क्या लगता है इसका महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है?
0: देखिए, संयुक्त परिवारों में महिलाओं के साथ जो समस्याएं थी, एकल परिवार तक आते आते काफ़ी हद तक उन समस्याओं से महिलाओं ने निजात तो पा ली, वो पारंपरिक समस्याओं से मुक्त हो गई, तो वो कुछ नए प्रकार की समस्याओं के जाल में फंस गई हैं कि पहले महिलाएं शिक्षित नहीं थीं, घर की चार दीवारी तक उनका काम सीमित था, वो सुबह से लेकर देर रात तक लगी रहती थी घरेलू कार्यों में, सबकी सेवा में, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में। अब वो जब एकल परिवार में आई है तो वो शिक्षित हुई है, वो घर से बाहर निकल रही है, नौकरी कर रही है, व्यवसाय कर रही है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में अपना योगदान दे रही है। पर क्योंकि समाज तो हमारा परंपरा प्रधान है, पितृसत्तात्मक है जो भी हम कहें, और शुरू से माना जाता है कि घरेलू उत्तरदायित्व जो है एक महिला की जिम्मेदारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर महिलाएं एक दोहरे चक्रव्यूह में फंस गई हैं कि एक तरफ उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, वो घर से बाहर निकलना चाहती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, कुछ नया सीखना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं कि उनका व्यक्तित्व विकसित हो, और दूसरी तरफ जब वो मुड़कर देखती हैं तो घरेलू जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, और क्योंकि परंपरागत रूप से माना गया है और आज हम आधुनिक युग में आ गए हैं तब भी हम ये मान रहे हैं कि एक घरेलू जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी महिलाओं का प्रमुख कर्तव्य है, तो तो महिलाओं

0: के लिए एक नए प्रकार की समस्या है कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हैं कि वो एक से निकलती हैं तो दूसरी तरफ जाकर उन्हें लगता है कि मैं यहाँ भी परेशान हूँ। तो महिलाओं के लिए जितना फायदा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी समस्या भी बढ़ी है।
1: विगत कुछ समय से हमने देखा है कि सरकारों ने, चाहे समाज ने, महिला सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात
0: जी
1: की, साथ ही साथ महिला आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। तो इन सब अगर आर्थिक रूप से देखें, क्योंकि वो कमाने लगी तो ये सशक्तिकरण तो आया है, लेकिन कहाँ पर वो कमज़ोर साबित हुई है उसका अगर हम देखें कि आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं।
0: देखिए, महिलाएं सशक्त तो हुई हैं, लेकिन उससे सिर्फ केवल मात्र आर्थिक रूप से किसी महिला के आत्मनिर्भर होने को हम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का सशक्तिकरण नहीं कह सकते, क्योंकि वो घर से बाहर निकली हैं, शिक्षित हुई हैं, जागरूक हुई है, लेकिन फिर भी आज वो परंपरागत समाज की बेड़ियों में कहीं ना कहीं जकड़ी हुई है। तो वो पूरी तरीके से ना तो आधुनिकता को अपना पा रही है और ना ही वो पूरी तरीके से परंपराओं को छोड़ पा रही है। लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर माताओं को जब बच्चे देखते हैं तो उनमें, बच्चों में भी एक अलग तरीके का आत्मविश्वास आता है कि नहीं, हमारी जो माता है वो बहुत मजबूत महिला है और वो घर भी उतना अच्छे से मैनेज कर लेती हैं जितना कि वो बाहर अपनी नौकरी भी कर लेती हैं। तो समाज पर ये प्रभाव इसलिए भी अच्छा रहेगा भविष्य में, क्योंकि हम जब किसी एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो हम एक व्यक्तित्व को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन जब हम एक महिला को पढ़ाते हैं, जब हम उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम पूरे परिवार को, पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर कोई महिला आर्थिक रूप से सक्षम हुई है, वो शिक्षित है, वो किसी अच्छे पद पर है, कुछ अच्छा कर रही है, कहीं ना कहीं वो चाहेगी कि उसके बच्चे उससे भी अच्छा करें। तो समाज के विकास के लिए महिलाओं का ये जो आर्थिक सशक्तिकरण है, ये भविष्य में बहुत अच्छे और एक सशक्त समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो।
1: तो आप थे डॉक्टर कंचन पानेरी, और आज आपने विश्व परिवार दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं के साथ साझा की और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हृदय से आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता रुझान, इस विषय पर समाजशास्त्री डॉक्टर कंचन पानेरी से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत
3: है। और इसके बाद हम सुनेंगे रेडियो लेक सिटी पर हेलो डॉक्टर, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह के साथ मस्तिष्क और उससे जुड़ी समस्याओं पर बातचीत होगी। रेडियो लेक सिटी सुनना ना भूलें।

तो आप घड़ी की तरफ देखें तो इस कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो गया है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ थे ज्योति। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं, आइए आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.
1: Good morning, Udaipur. ये है शहर का लोकप्रिय रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 FM बैंड पर. फ्राइडे मॉर्निंग है और सेहत की बातें होंगी. शुरू करेंगे वीकली हेल्थ शो. हेलो डॉक्टर. उदयपुर, हमारा दिमाग नाजुक और अदम्य शक्ति का केंद्र होता है और इसे स्वस्थ बनाए रखने और इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानकारी लेंगे आज के हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में. हमारे साथ हैं हमारे मेहमान न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह और आपसे बातें कर रहे हैं विनोद शर्मा जी.
2: कार्यक्रम के प्रायोजक है जीबीएस जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वा उदयपुर.
3: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH.
4: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भरजी की बाड़ी उदयपुर. कॉल 02943535000.
3: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
4: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भरजी की बाड़ी उदयपुर. कॉल 02943535000.
5: हेलो डॉक्टर. कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, आज एक दो सूचनाएं आपसे साझा कर लें. आज हम आकाशवाणी के 90वां वर्ष मना रहे हैं. साल भर से आयोजन चल रहे हैं और आज इसी श्रृंखला में आकाशवाणी उदयपुर शाम को एक संगीत संध्या का आयोजन करेगा और ये संगीत संध्या का जो स्थान है वो है महाराणा MLSU सभागार जो है उसके अंदर ये होगा, जो गेस्ट हाउस वाला जो ऑडिटोरियम है. इसमें जो एंट्री है वो जनरली हम आमंत्रित जो श्रोता हैं उन्हीं को देंगे, जो पासेज लेकर के आएंगे यानी कि जो हमारे आमंत्रण जो इनविटेशन कार्ड हैं उनके आधार पर देंगे. और जो कलाकार हैं वो हैं डॉक्टर देवेंद्र हिरण और डॉक्टर पामिल मोदी. इनकी गज़लें और शाम को 7:30 से कार्यक्रम शुरू होगा. तो आप भी इस कार्यक्रम का अगर हिस्सा बनना चाहें तो आमंत्रण पत्र प्राप्त कर सकते हैं हमारे जो कार्यालय, आज क्योंकि आज का ही दिन है तो 10 से 4:30 के बीच में अगर आप ऑफिस में आते हैं तो आपको हम आमंत्रण पत्र देंगे और उस आमंत्रण पत्र के आधार पर आप इस संगीत संध्या का आनंद ले सकते हैं. अच्छी संगीत संध्या होगी. सामान्यतः आकाशवाणी के जो आयोजन होते हैं वो गरिमामय और अच्छे होते हैं. जनरली जो शास्त्रीय एक तरीका रहा है प्रस्तुति का वो इनमें मौजूद रहता है, आप आनंद लेंगे. डॉक्टर अजीत आज हमारे साथ हैं. आपसे हम खास तौर से जो बात करेंगे वो ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे, रीढ़ की समस्याओं को लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे. एक नया तरीका आजकल चला है मरीज़ को जगाकर की जाने वाली जो सर्जरीज हैं इनको लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे. स्पाइन सर्जरीज को जो मिथक हैं उनके बारे में सच्चाई क्या है इसको लेकर के बात करने की कोशिश करेंगे. ब्रेन स्ट्रोक जिसमें भी फास्ट टेक काफ़ी कॉमन

0: वर्ड होता है, इसके बारे में ये क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे, और हेड इंजरी इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पे जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अचानक आते हैं, बिना किसी चेतावनी के आते हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, अचानक चक्कर आते हैं, कभी आपकी जबान तुतला जाती है, लड़खड़ा जाती है, या उठते बैठते टाइम अचानक आपको लगता है कि पैर में उतनी दम नहीं है जितनी होनी चाहिए, या आँख से अचानक आपके पानी टपक रहा है, या होठ या आपका मुंह पूरा उस तरह से बंद नहीं हो रहा जैसा आधे घंटे पहले बंद हो रहा था, तो आप चेत जाइए, ये न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स हो सकते हैं। अलग अलग तरह के न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, और ये आजकल न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं ये काफ़ी कॉमन हैं। डॉक्टर अजीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: डॉक्टर अजीत, ये जो चीज़ें आजकल, एक चीज़ सब अपने आप को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से, एक तो हर आदमी सोचता है कि मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पीठ का दर्द हो सकता है, घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने किसी को बहुत ज़्यादा ये चर्चा करते नहीं सुना कि साहब, और अचानक आपके पास आता है पेशेंट और क्रिटिकल कंडीशंस में आता है, कई बार तो आप कहते हैं कि साहब टाइम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी क्या वजह है?
1: देखिए, ये सब अवेयरनेस की चीज़ है। हम लोग हार्ट अटैक के बारे में सब चीज़ें आजकल जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे, क्या कब जाना है, क्या करना है, क्या इलाज, लेकिन ब्रेन की जो न्यूरोलॉजिकल इलनेस है उसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई ये ऐसी डिजीज़ है, ये या तो ये बूढ़ों में होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल यंग लोगों में भी स्ट्रोक आ सकता है। उसके अलावा अगर अपन देखें कि भाई जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। इसमें एक ब्रेन की बीमारियाँ भी होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है इन लोगों को। तो जागरूकता से ही लोग इसके बारे में जान पाएंगे, और आज का सेशन मुझे लगता है लोगों को इसके बारे में अवेयर करेगा।
0: एक बड़ा अंधविश्वास बहुत से चलते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो प्रकट रूप से वैसे नहीं हैं, जैसे आपकी जबान तुतलाने लग गई, या फेस पे थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो गई है, आँख से हम सोचते हैं कि किसी का माताजी का प्रकोप है। मैं बिना किसी के आस्थाओं पर सवाल किए हुए बात कर रहा हूँ। ये हम जनरली दूसरी तरफ ज़्यादा भागते हैं बजाय कि मेडिकल लाइन की तरफ जाएं, मेडिकल कंसल्टेंसी।
1: देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हार्ट अटैक आएगा तो आपको बहुत तेज़ दर्द होगा, या कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, पसीने वगैरह होंगे, तो आपको मरीज को वो ज़्यादा फील होता है। लेकिन ब्रेन की कंडीशन में ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता कि उसको सर दर्द होगा या उसको कोई पसीना आएगा। उसको न्यूरोलॉजी की, मतलब जैसे आपकी घर में लाइट है और वोल्टेज कम हो जाए, तो उस तरह की स्थिति होती है, उसको आपको भांपना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पता होगा, आपका जो ब्रेन है वो वही देख सकता है जो आप मतलब आपको पता हो, आपकी आंखें वही देख पाएंगी जो आपके ब्रेन को पता हो। तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, जैसे पड़ोस में भी एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब चलिए, पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ इमोशनल हो गए हैं, मतलब हमारा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मैं गया तो मैंने देखा उनको स्ट्रोक था, उनको स्पीच एरिया उनका इन्वॉल्व था, वो समझ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ऐसा जागरूकता होती कि भाई ये एक स्ट्रोक का लक्षण है तो हम उसको और जल्दी डायग्नोस कर पाते।
0: डॉक्टर, पहले स्ट्रोक को लेते हैं, हालांकि लिस्ट काफ़ी लंबी आपने मुझे दी है, ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर और कई चीज़ें, लेकिन स्ट्रोक काफ़ी अचानक आता है। स्ट्रोक के बारे में पहले तो बताइए, स्ट्रोक कंडीशन क्या है और क्या इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, स्ट्रोक है क्या?
1: देखिए, जैसे हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक ब्रेन अटैक होता है, दोनों में सेम कंडीशन होती है कि ब्लड की सप्लाई रुक जाना। जैसे हार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ऐसे ही ब्रेन में भी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई रुकने से तेज सीने में दर्द होता है, ब्रेन की सप्लाई रुकने से ब्रेन के फंक्शन इफेक्ट हो जाते हैं, जिसको अपन जानने के लिए बी फास्ट एक निमोनिक बनाया हुआ है।
0: काफी फायदे का वर्ड है, और गूगल करेंगे तो हर किसी को ही मिल रहा है बी फास्ट।
1: पहले ये फास्ट हुआ करता था, फास्ट मतलब अपने जैसे आपने बताया कि फेस, आर्म, स्पीच और टाइम इज ब्रेन। फिर देखा कि उसमें लगभग 10-15% स्ट्रोक पकड़े नहीं जा रहे थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें फिर बी लगाया गया, द बैलेंस और आंखों की प्रॉब्लम्स। आंखों से अगर आपको डबल दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है तो भी स्ट्रोक हो सकता है, तो वो बी फास्ट बनाया गया।
0: ये स्ट्रोक के जो लक्षण हैं

0: को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, BEFAST। और डॉक्टर अजीत बताएंगे कि BEFAST होता क्या है, बी फास्ट होता क्या है।
1: सो आपको
0: बी से
1: हमेशा,
0: शुरू करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो हमेशा ये आप रट लीजिए, ये 5-6 वर्ड जो हैं, BEFAST। तो बी इज़ बैलेंस। अगर आप चलते चलते लड़खड़ा रहे हैं,
0: संतुलन
1: अचानक
0: बिगड़
1: से,
0: रहा है,
1: ये सब अचानक से होने वाली है, पुरानी नहीं है कि जैसे पुराने टाइम से लड़खड़ाहट है तो वो स्ट्रोक नहीं होता है, अचानक से आप एकदम स्वस्थ हैं, आप चलते हैं एक तरफ गिर रहे हैं या चलते चलते गिर जा रहे हैं अचानक से,
0: या सो करके उठे हैं और
1: हाँ सो करके उठे हैं, तो वो मतलब मॉर्निंग स्ट्रोक होता है। तो आप लड़खड़ाने का मतलब जब आप चल के देखेंगे तभी पता चल पड़ेगा कि आप लड़खड़ा रहे हैं या
0: संतुलन
1: नहीं,
0: नहीं बनता।
1: संतुलन। तो संतुलन जब आप चलेंगे, आप खड़े हो रहे हैं एक तरफ गिर रहे हैं कमजोरी की वजह से,
0: गिरे भी नहीं तो भी संतुलन बनाने में जोर आ रहा है,
1: संतुलन बनाने में दिक्कत आती है। तो किसी भी तरीके से आपको अगर अब नॉर्मल लग रहा है कि मेरे को या तो मैं गिर जाऊंगा या मेरा संतुलन सही नहीं है, तो ये एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है।
0: शरीर का एक हिस्सा कई बार थोड़ा सा निशक्त महसूस करता है।
1: बिल्कुल। तो स्ट्रोक ज्यादातर एक ही तरफ होता है,
0: अच्छा।
1: ज्यादातर केसेस में एक तरफा होता
0: या
1: है,
0: तो बायां या दायां।
1: हाँ, तो बायां होगा दायां होगा, इसीलिए इसको पक्षाघात बोलते हैं, एक पक्ष का आघात
0: तो
1: होता है।
0: पूरे हिस्से में ही दिखेगा आपको, जैसे पैर में भी दिखेगा, हाथ में, आंख में, एक हिस्से में, या सिर्फ कुछ लोकलाइज भी हो सकता है।
1: अगर बहुत छोटा स्ट्रोक है,
0: हाँ,
1: बहुत ही छोटे हिस्से को इन्वॉल्व किया, जैसे स्पीच एरिया को इन्वॉल्व किया है, तो कई बार सिर्फ आवाज में बदलाव आ सकता है।
0: ठीक है।
1: लेकिन अगर थोड़ा बड़ा एरिया इन्वॉल्व हुआ है या ऐसा एरिया इन्वॉल्व हुआ है जहाँ से बहुत सारी नसें निकलती है, जैसे कॉलोनी में एक घर की एक वायर से लाइट जाती तो एक घर में ही अंधेरा होता है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर में दिक्कत आए तो एक लंबे एरिया में अंधेरा होता है।
0: तो क्या लक्षण होते हैं? एक तो संतुलन तो आपने बता दिया, ये
1: आईज
0: तो
1: का होता है, दूसरा
0: आँखों
1: तो
0: का।
1: आँखों में अगर आपको ब्लरिंग हो रही है, मतलब आपको दिखाई देने में दिक्कत आ रही है अचानक से,
0: किसी
1: या
0: एक आंख में, दोनों में,
1: एक में भी हो सकता है, दोनों तो में भी हो सकता है,
0: अच्छा,
1: तो आंख के अंदर दोनों में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, तो आपको देखने में दिक्कत आ रही है या आपको डबल दिखाई दे रहा है,
0: फोकस नहीं कर पा रहे,
1: फोकस नहीं कर पा रहे, वो तब होता है जब एक आंख वीक होगी एक ठीक है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तो आप डबल दिखाई देने लगता है।
0: आंखों से लगातार जैसे ब्लिंक नहीं कर पा रहे, एक आंख से पानी आ रहा है,
1: एक आंख से पानी आ रहा है, वो फेस के अंदर आता है अपने, तो फेस की जो नर्व फास्ट जो होता है, फेस फेस
0: अच्छा,
1: के
0: F,
1: अंदर,
0: F, F पे आ रहे हो आप,
1: F
0: B,
1: पे,
0: E तो
1: हाँ,
0: आपने
1: E
0: एक्सप्लेन
1: हो
0: कर
1: गया, आंखों की रिलेटेड है। आंखों को जो झपकने वाली नस होती है या आंखों अपने जो चेहरे की नसें होती हैं, तो वो पूरे फेस को इन्वॉल्व करती हैं, तो उसके
0: F.
1: अंदर क्या होगा, एक तरफा आपकी आंखों में ब्लिंकिंग में दिक्कत आएगी, आपकी एक तरफ से पानी वानी जैसे पिया है तो वो निकलने लगेगा, आप विसिल नहीं कर पाओगे, आपकी तरफ से एक होंठ बंद नहीं होगा, और आप जब स्माइल करने की कोशिश करोगे तो आपका चेहरा एक तरफ चला जाएगा,
0: टेढ़ा हो जाएगा,
1: टेढ़ा हो जाएगा, तो टेढ़ा उस तरफ होगा जहां आपकी सही है, वो जो सही मसल्स हैं वो आपके खींच लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से आप स्माइल नहीं कर पाते हो, तो वो लकवे वाला पार्ट है ज्यादातर।
0: ये महसूस दूसरे को पता चलता है या खुद पेशेंट को भी पता चल जाता है?
1: पेशेंट पानी पी रहा है और साइड से निकल रहा है तो उसको भी महसूस हो जाता है, और सामने वाले को भी महसूस होता है कि भाई आपका चेहरा टेढ़ा कैसे हो रहा है, आपकी आंख बंद नहीं हो रही। तो ये दोनों को भी मतलब आप खुद देख के भी पता लगा सकते हो, पेशेंट भी बता देता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है।
0: और फेस का कलर एक जैसा रहता है,
1: फेस का कलर,
0: स्किन टोन एक जैसा रहेगा,
1: सब कुछ एक जैसा रहेगा,
0: सिर्फ ये है कि आपकी एक्टिविटी,
1: हाँ, दोनों में फर्क नजर आएगा कि एक एक कमजोर लगेगा एक सही लगेगा,
0: वो आपको खुद भी महसूस होगा,
1: वो महसूस हो जाता है खुद।
0: ये आ गया BEF। अब एस की बात करते हैं, स्पीच की।
1: अब ए ए आएगा अपने आर्म,
0: अच्छा, FAST,
1: ए आएगा, ए में अपने आर्म का है, हाथ का, जैसे आपने पेन पकड़ने की कोशिश करी लिखने के लिए और आप नहीं लिख पा रहे, आपने गिलास पकड़ने की कोशिश करी आप पानी पीने के लिए तो लड़खड़ा रहा है हाथ, तो ये एक मतलब अर्ली लक्षण हो जाता है। दूसरा, अगर इसको चेक करना है तो दोनों हाथों को आप सामने रखेंगे अपने,
0: अच्छा,
1: तो जो कमजोर हाथ है वो नीचे गिर जाएगा,
0: अच्छा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा,
1: वो होल्ड नहीं, तो कई बार अपने को आंखें बंद करनी पड़ती है, क्यों, आंखें बंद करने से आपको पता नहीं चलता है कि वो हाथ कौन सा है, तो वो जल्दी गिर जाता है, तो आंखें बंद करके सामने हाथ रखेंगे तो एक तरफ से आपका दूसरा जो कमजोर हाथ है वो नीचे जाता रहेगा। तो ये हाथ मतलब आर्म के अंदर ये सिम्टम्स आप चेक कर
0: और
1: सकते।
0: एक चीज ध्यान रखें कि ये अचानक आए हुए लग,
1: ये अचानक आए हुए,
0: ये नॉर्मल ऐसा नहीं कि आप 10-15 दिन से भोग रहे हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कईयों में धीरे धीरे धीरे वो फिर स्पाइन संबंधित हो जाता है।
0: वो फिर अलग विकार है,
1: वो अलग विकार
0: हो सकता है कि आपने ज्यादा हैवी

0: कर लिया हो तो भी कई बार मसल्स लोड नहीं ले पाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उस केस में भी कई बार आपकी मसल्स पेन नहीं पकड़ पाएंगी या
1: बिल्कुल,
0: दूसरे
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये आपको देखना जरूरी है कि न्यूरो का अगर है तो वो ऑल ऑफ सडन है।
1: ब्रेन ट्यूमर के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्लोली स्लोली करके आपको वीकनेस आए।
0: अच्छा, ये ब्रेन ट्यूमर,
1: ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है ये स्ट्रोक की बजाय।
0: तो ये होगी ए, बी ई एफ ए। अब आते हैं एस पर,
1: स्पीच। स्पीच है जैसे आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप शब्द नहीं सही से बोल पा रहे हैं, तुतला रहे हैं,
0: और ये अचानक हो रहा है।
1: ये अचानक, ये आपकी बिल्कुल ही बोली जा चुकी है, मतलब आपकी आवाज बिल्कुल जा चुकी है, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं,
0: सुन पा रहे हैं
1: लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। और दूसरी सिचुएशन होती है आप समझ भी नहीं पाते। अगर पूरा स्पीच एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, एक समझने का स्पीच एरिया होता है, एक जवाब देने का होता है, तो अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो एक स्पीच एरिया इन्वॉल्व है, अगर आप समझ भी नहीं पा रहे तो दूसरा स्पीच एरिया इन्वॉल्व है।
0: तो ब्रेन में अलग अलग जोन होते हैं,
1: अलग अलग जोन होती है,
0: अलग अलग छोटे छोटे ट्रांसमीटर होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अलग ये अलग... अगर फ्यूज हो गया तो आप बोल नहीं पाओगे, ये फ्यूज हो गया चल नहीं पाओगे, ऐसे जोन होते हैं।
1: इसीलिए अलग अलग जगहों के स्ट्रोक के लक्षण अलग अलग होते हैं। तो बैलेंस के लिए अलग एरिया इन्वॉल्व होता है, आईज का अलग होता है, तो सब जगह एक ही जगह स्ट्रोक नहीं आता, या पूरे ब्रेन में स्ट्रोक नहीं आता है,
0: कभी भी एक साथ नहीं आता,
1: मतलब अलग अलग एरियाज में स्ट्रोक आ सकता है।
0: और लास्ट जो बच गया वो है टी,
1: टाइम। टाइम इज ब्रेन।
0: ये क्यों?
1: ये इसलिए कि अगर आप टाइमली स्ट्रोक को पता लगा सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं तो ये पूरा रिवर्स किया जा सकता है।
0: अच्छा, ठीक हो सकते हैं।
1: ठीक हो सकता है। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास एक क्लॉट बस्टर ड्रग होती है, उसको दवा देने से वो क्लॉट घुल जाता है, आपकी ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है और आपका रिकवरी कुछ घंटों में वापस हो जाती है।
0: कितने घंटे में आना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपके पास?
1: 4.5 घंटे में अगर आपको वो
0: न्यूरो का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए या नॉर्मल फिजिक जो डॉक्टर हैं ये भी
1: देखिए इसमें क्या होता है कि इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना होता है कि स्ट्रोक, देखिए दो तरह के होते हैं, ज़्यादातर स्ट्रोक को अपन लेके चलते हैं कि जो बंद होने से, जो क्लॉट बनने से आगे सप्लाई बंद हो गई है वो स्ट्रोक है, तो 80% मामले वो होते हैं। 10% मामले में वो ब्लॉक नहीं होता, नस फट जाती है, जिसको अपन हेमरेजिक स्ट्रोक,
0: हेमरेजिक और
1: हाँ
0: दूसरा,
1: तो दोनों को पहले अपने को कंफर्म करना चाहिए कि ये है कौन सा। अगर आपने हेमरेजिक स्ट्रोक में वो दवाई दी तो ये घातक हो जाएगा और हेमरेज बढ़ जाएगा।
0: तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डॉक्टर साहब?
1: ये आपको तुरंत एक सीटी स्कैन या एमआरआई से आइडेंटिफाई करना।
0: ये क्या इस दौरान क्या टाइम लूज नहीं हो रहा है क्या?
1: सीटी स्कैन में 1 मिनट लगता है,
0: फटाफट हो जाता,
1: फटाफट हो जाता है।
0: ये जरूर है कि वो डॉक्टर जहाँ हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं
1: तो तो वो सीटी स्कैन कराए बिना अगर आप इलाज करेंगे तो कई बार ये घातक हो सकता है,
0: काउंटर प्रोडक्टिव
1: हो सकता है। तो इसलिए आपको एक न्यूरोफिजिशियन, सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा, साथ ही साथ एक डीएसए लैब होता है जो अपन एंजियोग्राफी करते हैं हार्ट की, उसी में अपन ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं जिसको डीएसए बोलते हैं। तो ये होना जरूरी है। अगर जैसे आप 4.5 घंटे से लेट पहुँचे तो हम वो दवाई नहीं देते, हम डायरेक्ट क्लॉट को हटा देते हैं। क्लॉट हटाने के लिए एक तार द्वारा हम अंदर तक जाते हैं, आर्टरी तक, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास, बलून वगैरह, जिससे अपन क्लॉट को हटा देते हैं। तो अगर आप 8 घंटे के अंदर आए हैं, 4.5 घंटे बीत गए लेकिन अभी भी आपके पास टाइम होता है,
0: टाइम है।
1: तो ऐसी जगह आप पहुंचे हुए हो जहां पे ये सब सुविधाएं हैं तो इनसे आप स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं 8 घंटे के अंदर। 8 घंटे के बाद क्या होता है कि दवाइयां अवेलेबल होती है, आप हटा भी सकते हैं, लेकिन 8 घंटे के बाद
0: चांस
1: कम, ट्रीटमेंट के चांस कम हो जाते हैं और रिस्क बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा,
1: जितनी देर नस बंद रहेगी उसको खोलने से क्या होता है कि एकदम से बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, वो ब्लड एकदम तेजी से अंदर जाता है तो हेमरेज होने के चांस रहते हैं।
0: अच्छा, मान लीजिए रात को स्ट्रोक आया और हमने पहचान लिया, आसपास न्यूरो का कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अब भी ये स्थिति है, उस दौरान कुछ डू और डोंट्स हैं हमारे लिए, पेशेंट के लिए या किसी अच्छे हॉस्पिटल में सेलेक्शन करने के लिए? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना।
1: हाँ, तो देखिए इसमें जितनी जल्दी आप ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाएं जिसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं,
0: अच्छा,
1: वो आपको पता करके रखने चाहिए अपने एरियाज में स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो होते हैं जहां पे फुल टाइम आपको न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी होगी, फुल टाइम न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी होगी,
0: इक्विपमेंट्स होंगे,
1: फुल टाइम सीटी स्कैन एमआरआई की अवेलेबिलिटी होगी, फुल टाइम एक डीएसए लैब जो एंजियोग्राफी लैब की अवेलेबिलिटी होगी, एक

0: भैया आईसीयू की अवेलेबिलिटी होगी। अगर ये सब है उस हॉस्पिटल में तो आप जाएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।
1: उदयपुर में कितने हॉस्पिटल हैं ऐसे?
0: देखिए जो भी मेजर मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में ये फैसिलिटीज़ होगी। हमारे यहाँ पे पारस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है और मुझे लगता है अमेरिकन हॉस्पिटल में भी होगी। तो जो मेजर बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन सब में होगा।
1: सरकारी हॉस्पिटल्स में भी शायद?
0: सरकारी में भी होगा बिल्कुल।
1: जो इसका मैकेनिज्म है वो थोड़ा हमें समझाएं कि स्ट्रोक एक्चुअली होता क्यों है, कारण भी इसके होंगे ना। ये तो अपने लक्षण पे बात,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कारणों पे बात करेंगे। उससे पहले श्रोताओं को बता दूं ये लाइव प्रोग्राम है, डॉक्टर अजीत सिंह है, न्यूरोसर्जन है, और अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो हमें आप व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9462697568, 9462697568, 9462697568। ये काफ़ी फायदे का प्रोग्राम है, जनरली इस तरह के डिस्कशंस होते नहीं हैं सोसाइटी में, और अचानक पता चलता है कि फला आदमी को स्ट्रोक था, फला आदमी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था और वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया। तो काफ़ी फायदे की चीज़ें हैं, प्लीज़ सवाल करें इसके बारे में कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब स्ट्रोक की बात कर रहे थे, कारण स्ट्रोक के आप बड़े बड़े जो कारण, उसमें एक तो ब्लड प्रेशर को आप हाइपरटेंशन को काफी बड़ा कारण मानते हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? क्या अंदर जाके कोई ब्लास्ट हो जाता है वेंस में या एकदम से ब्लॉक आ जाता है? आपने दोनों स्थितियां बताई कि एकदम से रप्चर भी हो जाता है और कई बार ब्लॉक भी हो जाता है।
0: तो देखिए मतलब लाइफ स्टाइल डिजीजेस में आता है स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी। ज़्यादातर आज की लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंटरी हो गई। सेडेंटरी से मतलब है कि आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ता है, आपकी टेबल पे ही सब कुछ हो जाता है, आपका काम भी वो लैपटॉप में हो जाता है, आपका खाना पीना भी सब उसी टेबल पे हो जाता है, बातचीत भी वहीं हो जाती है, तो आप उस टेबल से उस चेयर से चिपके रहते हैं। तो इसे बोलते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से आपके अंदर जो वेन्स होती है, आपकी जो आर्टरीज होती है, उसके अंदर धीरे धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल और ये सब एथेरोमेटस चीज़ें जमा होने लगती है, जो धीरे धीरे धीरे आपकी नसों को बंद कर देती है। तो नसें बंद होने से आपके ब्रेन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है और स्ट्रोक आ जाता है। उसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर से दोनों तरह के स्ट्रोक आ सकते हैं। अगर धीरे धीरे धीरे क्या ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज को डैमेज करता है और धीरे धीरे धीरे उसकी वजह से वो बंद होती है, तो वो आता है नॉर्मल जो स्ट्रोक 90% वाला। 10% केसेस में आपका तेजी से बीपी बढ़ गया, 200 बीपी हो गया, 250 बीपी
1: अचानक
0: हो गया, हाँ, तो आपकी वो नसें फट जाती
1: है। आपकी हिस्ट्री नहीं है बीपी की,
0: वो तो आपको हिस्ट्री नहीं होती, आप चेक नहीं कराते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे तो बीपी कभी हुआ ही नहीं मेरे, क्योंकि
1: होता डॉक्टर साहब मैंने देखा कि 2-5-10 दिन सप्ताह भर दवाई लेकर के नॉर्मल हुआ और फिर छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल, पहले तो आप दवाई स्टार्ट ही लेट करते हैं क्योंकि आप चेक ही नहीं कराते, आप सोचते हैं कि भाई मेरे को बीपी हो ही नहीं सकता, लेकिन बीपी जब तक चेक नहीं करा जाएगा पता नहीं चलेगा। इसके जो लक्षण हैं जैसे हेडेक है और स्ट्रोक है, ये बहुत लेट स्टेज में आते हैं।
1: बीपी इतना खतरनाक हो सकता है?
0: बीपी बहुत खतरनाक हो सकता है, तो ये आपकी नसें,
1: कई बार हम दवाइयां लेते ही नहीं है, ओवरलुक कर जाते हैं इसको।
0: तो बीपी की दवाई लेने के बाद आपका बीपी नॉर्मल आता है तो आप सोचते हैं कि आपका बीपी ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। बीपी और शुगर की दवाएं लगभग लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। अगर आप अचानक से बंद कर देंगे तो आपका बीपी शूट हो जाएगा। सपोज 150 रहता था, आपने दवाई शुरू की और फिर आपने बंद कर दी, तो वो 180-200 तक भी जा सकता है क्योंकि वो इतने टाइम से दवाई से कंट्रोल था।
1: कई बार सुनने को मिलता है कि साहब मेरा तो गाढ़ा खून है इस वजह से, ये क्या, ये भी एक कंट्रीब्यूटर?
0: हाँ, तो खून के अंदर कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बोलते हैं। कोएगुलेशन का मतलब होता है खून का जमना।
1: अच्छा,
0: तो अपने नॉर्मली खून जैसे कट लगता है, आप दवा देते हो वो रुक जाता है,
1: थक्का जम,
0: लेकिन कई चीजों में आपका खून रुकता नहीं है या थक्का जल्दी बन जाता है।
1: अच्छा,
0: दोनों तरह की बीमारी होती है, कईयों में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है। हाँ, तो कईयों में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है कि आपका खून रुक ही नहीं रहा है, जम ही नहीं रहा है।
1: थैलेसीमिक जो पेशेंट,
0: हाँ, तो ऐसे हीमोफीलिया वाले होते हैं, हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खून रुकता नहीं है, तो ऐसे में ब्रेन में हेमरेज होने की संभावनाएं रहती है। और दूसरे में खून जल्दी जम जाता है, तो आपने जैसे आपका डिहाइड्रेशन हुआ या आपका कुछ ऐसी दवाइयाँ गई जिससे खून गाढ़ा होता है, तो ऐसे में भी

0: स्ट्रोक आने की संभावनाएं हो जाती है।
1: एक क्या जेनेटिक कनेक्शन जेनेटिक
0: भी होता है इसमें, जेनेटिक होता है इसमें, एक होमोसिस्टीन एक अपने ब्लड के अंदर एक वो चीज़ होती है, अगर वो ज़्यादा है तो आपका क्लॉट जल्दी बनेगा।
1: अच्छा।
0: उसके अलावा क्लॉट रोकने के लिए कुछ चीज़ें होती है जिसको प्रोटीन सी प्रोटीन एस बोलते हैं, जो क्लॉट बनने से रोकते हैं। अगर ये कम है, डेफिशिएंसी है इनकी, तो क्लॉट जल्दी बन जाता है।
1: अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आजकल कई तरह की चीज़ें हैं मार्केट में जिनको जो ट्रिगर करती हूँ स्ट्रोक को, या आपके ब्लड के कोगुलेशन को, या आप कह रहे हो कि साहब नर्व जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाते हैं, कुछ ऐसे जो मार्केट में अब सप्लीमेंट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के और ये तमाम तरह की स्टीरोइड्स और हम एक बहुत सारी नकली जीवन जी रहे हैं, क्या ये चीज़ें भी कई बार ब्रेन स्ट्रोक को, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट को तो ये करती हैं ट्रिगर, क्या स्ट्रोक को भी ट्रिगर करती हैं?
0: बिल्कुल, स्टेरॉइड्स की ज़्यादा मात्रा की वजह से आपकी बॉडी में डैमेज हो सकता है, मतलब आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको शुगर हो सकती है, और भी कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे आपका स्ट्रोक ट्रिगर हो सकता है।
1: ये जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए अनवेरीफाइड होते हैं, मैं इनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये अनट्रेंड या मेडिकल बैकग्राउंड की जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग रिकमेंड करते हैं, कई बार इस तरह के लोग कार्डियक प्रॉब्लम्स के शिकार हो जाते हैं।
0: हाँ, देखिए इसमें वही है कि देखो हर चीज़ में एक स्टडी की ज़रूरत होती है कि ये इससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर जो भी अनवेरीफाइड है और मेडिकल क्लेम करते हैं कि जिसमें अंदर अपने को पता ही नहीं है कि अंदर है क्या, और वो क्लेम कर रहे हैं कि इससे आप ये ठीक हो जाएंगे, आपका ये भी ठीक हो जाएगा, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर मार्केटिंग गिमिक है और नुकसानदायक है।
1: बल्कि
0: उसमें स्टेरॉयड भी हो सकता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको टेम्परेरी आपको अच्छा फील होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदायक है।
1: कुछ अदर जो दूसरे ट्रिगर्स हैं वो अगर स्टार्ट हो गए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब ठीक है स्ट्रोक तो नहीं आया लेकिन आपको बीपी ट्रिगर हो गया, या आपकी शुगर ट्रिगर हो गई, या कोई और इस तरह का कोई डेवलपमेंट हो गया बॉडी में जो कि स्ट्रोक से या कार्डियक अरेस्ट से या किसी और प्रॉब्लम से कनेक्ट हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इसलिए अनवेरीफाइड
0: चीजें नहीं लें।
1: एक सवाल आया डॉक्टर साहब, ये अभिषेक शर्मा अवधेश जी हैं शर्मा, ये कह रहे हैं कि सर मेरा सर में कुछ दिन से बहरापन नाइट में रहता है, सर घूमता हुआ महसूस होता है, सर घूमता हुआ महसूस होता है, क्या रीजन है, हो सकता है बताएं, मतलब चक्कर से आते हैं?
0: देखिए हाँ, तो अगर अचानक से चक्कर आ रहे हैं और आपको उठने बैठने पे चक्कर आ रहे हैं, या करवट लेने पे चक्कर आ रहे हैं, या आपकी हेड की पोजीशन चेंज करने पे चक्कर आ रहे हैं, तो इसको पोजिशनल वर्टिगो कहते हैं, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए
1: न्यूरो की समस्या,
0: ये भी न्यूरो की समस्या
1: वाला डील करेगा,
0: ये दोनों डील करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कान के अंदर घूमता है और वो नर्व को अपने संदेश देता है कि आपकी पोजीशन कैसी है, तो उसके अंदर कुछ वो फ्लूइड घूमने की वजह से अगर वो सही नहीं घूम रहा है तो आपको इम्बेलेंस और चक्कर आने लगते हैं, ब्रेन को सिग्नल सही गलत जाते हैं तो वो चक्कर महसूस होता है। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कराते हैं जो ENT वाले भी करा सकते हैं और न्यूरो फिजिशियंस और न्यूरो सर्जन्स भी करवा सकते हैं।
1: कुछ घर पर टेस्ट कर सकते हैं इसको, वर्टिगो है भी कि नहीं है?
0: हाँ, वो मतलब आप थोड़ा सा क्या है कि हर चीज़ ट्रेंड आदमी करे तो उसके रिजल्ट्स भी सही आते हैं, अपन अपनी मर्जी से टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो डायग्नोस सही ढंग से नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, सिंपल टेस्ट होते हैं, लेकिन वो क्लिनिशियन देख के ही करें तो अच्छा रहता है।
1: और कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है?
0: ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं,
1: छोटा सा ही एक कुछ केमिकल की बोल होती है वो इधर उधर हो जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उससे दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, हम स्ट्रोक के कारणों पे बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा कारण बता रहे थे आप, इसके अलावा
0: जैसे अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अपने जो बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो डायबिटीज़ की एक ऐसी चीज़ है जो अपने पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करती है, वो ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती है, हार्ट को भी, आँखों को भी, किडनी को भी, नर्वसों को भी। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी पहले 300 शुगर थी, अभी पिछले दिन से मेरी अभी 150 है, 100 है, तो अब मेरे को वो प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए,
1: दवाई कम कर
0: दो। हाँ, दवाई भी कम कर दो और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं वो तुरंत ठीक हो जाने चाहिए।
1: तो जैसे न्यूरो पे डायबिटीज का क्या इफेक्ट आता
0: हाँ,
1: है? तो न्यूरोपैथी एक पूरा हाँ, अलग सब्जेक्ट।
0: बिल्कुल, तो इसमें वही कह रहा हूँ, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, सब पैथियां डायबिटीज से हो जाती हैं।
1: और ये सारे न्यूरो से जाके कनेक्ट हो रहे
0: हैं। हाँ, तो अब नस की है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है उसमें ये शुगर

0: क्रॉनिक तरीके से, मतलब धीरे धीरे करके नस को डैमेज करती है।
1: होता क्या, नसें जाम हो जाती हैं?
0: हाँ, नस का जो कंडक्शन है, मतलब नस का जो अपना वोल्टेज और वो सब है, वो कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट सोचता है कि मैं जैसी शुगर कंट्रोल कर लूँगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।
1: रिवर्स नहीं होता वो?
0: वो रिवर्स होने में बहुत लंबा समय लगता है, और जो डैमेज हो जाता है वो ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो बचाव ही उपचार बढ़िया है,
1: तो
0: अगर आप डैमेज ही ना होने दें तो ही बेस्ट है, अदरवाइज तो फिर आपको न्यूरोपैथी की कुछ दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं।
1: न्यूरोपैथी के शुरुआती सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? संवेदना कम होना,
0: हाँ, तो इसमें आपको सेंसेशन सही महसूस नहीं होगी,
1: हाँ,
0: आपको ऐसे लगेगा कि मेरे को कांटे चुभ रहे हैं
1: पैरों में है,
0: पैरों
1: ज़्यादातर
0: में,
1: पैरों में होता है,
0: पैरों में, हाथ में, दोनों में।
1: हाथों में?
0: हाँ, तो ये
1: अच्छा।
0: जो डायबिटीज़ वाली होती है वो, उसको हम ग्लव और स्टॉकिंग बोलते हैं। पैटर्न, ग्लव मतलब जहाँ आप दस्ताने पहनते हैं उस एरिया में ये सब महसूस होगा, जिसमें सुन्नपन होगा, कांटे जैसा महसूस होगा, है ना, आपको और भी कई चीज़ें ऐसी महसूस होंगी। ऐसे ही पाँव में, जहाँ पे आप सॉक्स पहनते हैं,
1: अच्छा,
0: तो सॉक्स पहनने वाली और ग्लव्स पहनने वाली, ये जगहों पे ज़्यादातर डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी दिखाई देती है।
1: डॉक्टर साहब एक सवाल और आया, मैं श्रोताओं को बता दूंगा, अगर कोई आपका सवाल है खास तौर से न्यूरो से संबंधित, न्यूरो सर्जन है डॉक्टर अजीत, ब्रेन स्ट्रोक पे या स्पाइन के कुछ इश्यूज हैं, ब्रेन ट्यूमर है या कुछ इस तरह के और भी कई समस्याएं होती हैं, प्लीज़ सवाल करें, हमें लिख करके भेजें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9462697568, 9462697568। डॉक्टर साहब ये मावली से हैं गणपत लाल विजय वर्गीय, ये कह रहे हैं कि 29 अप्रैल तक मेरे बीपी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक अभी 5 मई से 214 से 220 के आसपास चल रही है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह चल रही है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? हालांकि आप न्यूरो के हैं लेकिन बीपी डील तो करना पड़ेगा डॉक्टर साहब आपको।
0: हाँ, तो देखिए इसमें ऐसा है कि एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो दवाई मिस तो नहीं करी है, आपने दवाइयाँ बंद तो नहीं कर दी है।
1: अच्छा,
0: दूसरा, आपके जीवन में कोई स्ट्रेसेस तो नहीं आ गए हैं जिससे आप परेशानी आप परेशान हो गए हों, उससे भी बीपी बढ़ सकता है। उसके अलावा किडनी संबंधित अगर कोई बीमारी है तो वो भी आपकी बीपी बढ़ा सकती है। तो इसके लिए आपको तुरंत, इतना ज़्यादा बीपी है, तुरंत आपको फिजिशियन या हार्ट के स्पेशलिस्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए और बीपी को कंट्रोल करना
1: ये
0: चाहिए।
1: तो आश्वस्त लग रहे हैं डॉक्टर साहब, कह रहे हैं कि 210 से 220 है,
0: नहीं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपको तुरंत
1: तो
0: हॉस्पिटल
1: बहुत।
0: जाके इसको कंट्रोल करना
1: अच्छा,
0: चाहिए।
1: एक चीज़ और है, जैसे शुगर हमारी 200 के आसपास चली जाती है तो भी चिंता की बात तो है, जो आपका जो नॉर्मल पैरामीटर उससे ऊपर जा रहे हो आप, लेकिन शुगर और बीपी में से अगर एक चूज करना पड़े तो 200 शुगर ज़्यादा खराब या 200 बीपी ज़्यादा
0: देखिए,
1: खराब?
0: बीपी डेफिनेटली 200 बहुत ज़्यादा है और इससे ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी बीमारी में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी बीमारी है, दोनों ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत सारी समस्याएं पैदा करती हैं, तो दोनों को ही कंट्रोल करिए।
1: चलिए डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं और इसके बाद ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन पे आपसे बात करेंगे।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
0: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
1: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं एट भरजी की बाड़ी उदयपुर। कॉल 02943535000।
2: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ हैं। आप न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोसर्जरी को लेके आज हम बात कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका, आप व्हाट्सएप करें हमें, हमारा नंबर है 9462697568, 9462697568। डॉक्टर अजीत, एक सवाल है, मांगीलाल सालवी जी हैं, करें कि 41 साल इनकी उम्र है और करें कि मुझे 3 महीने पहले हर्पिस हुआ था, तो मेरा आधा सर सूना है, मेरा आधा सर सूना है, अंग्रेजी में लिखते हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है पढ़ने में, आँख पूरी नहीं खुल रही और आँख भी सूनी है, मतलब सूना सूना लग रहा है, इलाज चल रहा है, प्लीज कुछ बताएं। तो ये हर्पीज तो वैसे आपका डोमेन है नहीं?
3: नहीं, हर्पीज देखिए, हर्पीज जोस्टर जो है एक वायरस की बीमारी है
2: जी,
3: जो अपनी नस को डैमेज करती है। तो इस नस की डैमेज होने से, उस एक पर्टिकुलर नस को डैमेज होने से, वो नस जहाँ जहाँ सप्लाई करती है सबसे पहले वहाँ पे कुछ फफोले टाइप हो जाते हैं, कुछ
2: अच्छा
3: है ना, ब्लिस्टर टाइप बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे उस एरिया में जलन होने शुरू हो जाती है और मतलब न्यूरोपैथिक पेन टाइप शुरू हो जाता है, जलन आपको पिंस सी लगेगी आँख के अंदर, जैसे इसमें जैसे इनकी ऐसे लग रहा है आँखों की वो नस को इन्वॉल्व किया है।
2: तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है,
3: हाँ, तो ये न्यूरोलॉजी की ही प्रॉब्लम है बेसिकली।
2: अच्छा,
3: तो इसके अंदर आपको आपके ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया होगा, मुझे लगता है शुरू में एंटीवायरल अपने को देनी होती है वायरस के खिलाफ कुछ मेडिसिन, साथ ही साथ जो आपको दर्द हो रहा है उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन न्यूरोपैथी के हिसाब से अपने को देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ समस्या है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उसको पर्टिकुलर निदान हो जाएगा।
2: एक सवाल और है, ये करें कि संधू जी हैं, BS संधू जी, करें कि

0: सिंह का पासन से, ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के नाक से पानी गिरता है सुबह सुबह, उनका इलाज चल रहा है 10 साल हो गए, पानी लगातार गिरता रहता है नाक से, तो इसकी कोई
1: देखिए
0: वजह?
1: अब इसमें अगर ज़्यादातर आपके अगर एलर्जी की समस्या है या साइनस की समस्या है तो नाक से पानी गिर सकता है, वो ENT स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका जो ये जो पानी होता है वो दिमाग का पानी होता है,
0: बहुत रेयर,
1: जिसको हाँ CSF बोलते हैं। CSF कई बार आपकी नाक से आ सकता है।
0: अच्छा,
1: तो ये गंभीर समस्या को पैदा कर सकता है, जिसको अपन मेनिनजाइटिस बोलते हैं, ब्रेन की जो बुखार, दिमागी बुखार है वो पैदा कर सकता है। दिमाग में इन्फेक्शन जा सकता है अगर ब्रेन का पानी रिस रहा है तो। अगर ऐसा, क्योंकि अब आपको 10 साल हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि ये ब्रेन का होगा, नहीं तो आपको कभी भी दिमागी
0: कॉम्प्लिकेशंस हो जाते।
1: हाँ हो जाते। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार चेकअप करा लेना ठीक रहेगा।
0: कई बार जैसे चोट लगती है या गिर जाते हैं, आपको बाकी सब ठीक लग रहा है लेकिन नाक से खून आने लगता है। एक तो नक सिर आती है, नक सिर तो चलिए आपको लोकल कहीं इंजरी हुई है नाक में, झिल्ली फट जाती है और रुक भी जाएगा सेल, ये क्या खतरनाक संकेत है?
1: यस, तो हेड इंजरी में कुछ ऐसे खतरनाक संकेत होते हैं कि जैसे चोट लगी, अब आपको डिसाइड करना है कि आपका CT स्कैन की ज़रूरत है या ये एक डेंजरस चोट है या नहीं है। तो आपको जैसे ही आप गिर गए, अगर आपको नाक या कान से खून आया है तो ये इंटरनल ब्रेन की इंजरी का संकेत हो सकता है, क्योंकि ये तभी आएगा जब आपके हड्डी में फ्रैक्चर होगा ये अपनी स्कल की। तो यहाँ अगर सामने की नाक के इस हिस्से के ये जो कमज़ोर जगह होती है तो ये चोट से यहाँ से आपके नाक से खून आ सकता है, तो आपको CT स्कैन की जरूरत पड़ेगी।
0: मुंह से भी आएगा, नाक से?
1: हाँ, तो वो आपको CT स्कैन करवाना चाहिए ऐसे केसेस में। तो कान से आ रहा है अगर तो कान से मतलब है कि बेस, स्कल बेस के, ये स्कल बेस के जो स्कल के जो नीचे का हिस्सा होता है उसके फ्रैक्चर्स में ऐसा होता है। तो अगर फ्रैक्चर है इसका मतलब है कि आपको चोट तेज लगी है,
0: गंभीर है,
1: गंभीर है। तो आप
0: जो आवेग है वो तेज,
1: तो इसके अंदर अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर, तो आपको CT स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक सिम्टम, आपकी आंखें जैसे सूज गई हैं, काली पड़ गई
0: और आप होश में हो।
1: हाँ, आप होश में हो और नाक से कान से खून आया तो भी आपको डेंजरस अंदर
0: बाद में डेवलपमेंट
1: हो सकती है।
0: मैंने कई बार देखा है डॉक्टर साहब कि हेड इंजरी वाले खासतौर से एक आध दो दिन बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और हम मिल के आते हैं साहब ये तो नॉर्मल बात है, कोई नहीं, कल तक डिस्चार्ज। ऑल ऑफ सडन पता चला उसकी डेथ हो गई।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा क्यों?
1: तो ये एक ऐसी एक बीमारी है या एक लक्षण ऐसा है जिसको हम लूसिड इंटरवल बोलते हैं।
0: जी,
1: लूसिड इंटरवल होता है कि इसमें जैसे ही आपको चोट लगती है आप टेम्परेरीली, आपके आगे अंधेरा छा जाता है, टेम्परेरीली आपको बेहोशी आती है,
0: ठीक है,
1: और फिर आप ठीक हो जाते हो, फिर आप टाइम निकालते हो, फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि आप वापस से बेहोश हो रहे हो।
0: अच्छा,
1: वापस से आपकी तबीयत खराब होने लगती है और
0: एक दिन भी लग सकता है।
1: तो ये ऐसा होता है कि जैसे ही आपको चोट लगती है आपको कंकशन होता है, ब्रेन को झटका लगता है, तो टेम्परेरी अनकॉन्शियस होते हो, टेम्परेरी जो सिम्टम होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं,
0: फिर रिकवर हो जाते हो, थोड़ा
1: फिर रिकवर हो जाते
0: हैं, लेकिन वापस डिटेरिएट होते
1: हैं। हाँ, लेकिन अंदर एक नस पे चोट लग जाती है खून वाली जिससे धीरे धीरे
0: ब्लीडिंग होती है,
1: तो धीरे धीरे धीरे वो ब्लीडिंग करके इतनी हो जाती
0: है, जम जाएगा।
1: हाँ, तो वो अंदर क्लॉट ऐसा बन जाता है जो ब्रेन को दबा देता है और आप वापस से अनकॉन्शियस हो जाते हो, और अगर आप ध्यान नहीं दो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है,
0: डेथ भी हो सकती है। और ये काफी सीरियस बात है,
1: ये एक सीरियस,
0: इसलिए कान नाक या कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है
1: तो इसमें कुछ लक्षण है जो मैं बताना चाहूंगा, जिसमें कान नाक या आंख से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, दूसरा है आंखों में सूजन आ गई है जिसको अपन रकून आईज बोलते हैं, आंखें बिल्कुल ऐसे
0: लाल हो गई,
1: नीली पड़ गई है, लाल हो गई है आंखों के अंदर, हाँ,
0: एक या दोनों,
1: तो वो भी एक इंटरनल उसका संकेत है,
0: हो सकता है कि अंदर से खून आ रहा था कहीं से वो रुका।
1: ये आपको 30 मिनट से ज्यादा का आपको याद नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ।
0: अच्छा।
1: कई बार एक्सीडेंट के बाद पता नहीं होता कि मैं कैसे लाया, कहाँ क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को चोट कैसे लगी, मैं क्या कर रहा था,
0: ये भी बड़ी बात है कि
1: तो ये मिनट? हाँ, तो 30 मिनट से ज्यादा का अगर आपको एमनीजिया है या आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको अंदरूनी चोट हो सकती है,
0: याददाश्त आपकी टेम्परेरीली चली गई है।
1: बिल्कुल। दूसरा है अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, लगातार उल्टियां हो रही हैं, आप वैसे ठीक महसूस कर रहे हो लेकिन बार बार उल्टी होती जा रही है
0: जी।
1: तो ये भी इंटरनल उसका संकेत हो सकता है।
0: नॉर्मल पानी आएगा उसमें या ब्लीडिंग भी हो सकती है?
1: मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग यूजुअली नहीं, पर आप जैसे खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वापस बिना मतलब ब्लीडिंग हो रही है,

0: तो वो ब्लीडिंग क्या वॉमिटिंग ब्रेन, इसका ब्रेन इंजरी से क्या ताल्लुक?
1: हाँ, तो वॉमिटिंग अपने जैसे ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है या सूजन आती है तो उसको कम करने के लिए बॉडी वॉमिट करती है।
0: अच्छा,
1: उससे सूजन कम होती है ब्रेन की, तो बार बार हो रही है लेकिन एक लिमिट तक ही बॉडी वो कर सकती है।
0: तो करवाना जरूरी भी है डॉक्टर साहब?
1: तो अगर आपको बार बार
0: मेडिकल सुपरविजन में वॉमिट करवाना जरूरी भी है?
1: नहीं नहीं, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो सीटी स्कैन करके हमें देखना पड़ेगा कि अंदरूनी चोट सूजन वगैरह कैसी है, तो सूजन कम करने की दवाई दे देंगे तो वॉमिटिंग
0: भी रुक जाएगी।
1: अच्छा, उसके अलावा अगर आपको जैसे फिट्स आया है,
0: अच्छा अचानक
1: से चोट लगने के बाद, तो अंदरूनी चोट का
0: मतलब चोट लगी तो तान ट्रिगर हो सकता है?
1: तान ट्रिगर हो सकती
0: है, भले हिस्ट्री नहीं रही आपकी।
1: हाँ, भले हिस्ट्री नहीं थी तो चोट लगने से आपको
0: शरीर एकदम से अकड़ गया है।
1: बिल्कुल, तो ये अगर इंटरनल चोट है तो ऐसा हो सकता है। बच्चों में ज्यादा होता है, कई बार उनके चोट भी नहीं होती, हल्की सूजन आने से भी उनको फिट्स आ जाते हैं।
0: तो ये सीरियस बात है, वार्निंग सिग्नल?
1: यस, तो एक सीरियस बात,
0: आपको तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में न्यूरो के पास जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: एक सवाल है सर, हेमंत वैष्णव है, एक सवाल और थोड़ी आपकी तारीफ भी लिख दी इन्होंने, करेंगे, डॉक्टर अजीत सर ने मेरी मदर का ब्रेन ट्यूमर निकालकर उन्हें नया जीवन दान दिया था, आज वो स्वस्थ हैं और डॉक्टर साहब के फॉलोअप में 3 साल निकल गए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मदर का नाम कमला देवी है। ये करेंगे, मेरा सवाल है कि सर से आजकल मुझे आँखों में बहुत भारीपन, जलन और दिखने में दिक्कत हो रही है, सिर में दर्द रहता है बहुत तेज, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आँखों के डॉक्टर ने भी मुझे सीटी स्कैन के लिए बोला है ब्रेन की। विद्या भवन पॉलिटेक्निक में ये लेक्चरर की पोस्ट पे हैं।
1: थैंक यू हेमंत जी। मेरा काम है ब्रेन ट्यूमर निकालना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी माताजी एकदम स्वस्थ हैं। अब जैसे जो आपने लक्षण बताए हैं वो भी कुछ सीरियस हो सकते हैं अगर लगातार बने हुए हैं और बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए।
0: मांगीलाल बैरवा हैं, ये कह रहे हैं, हालांकि सवाल और भी बहुत हैं लेकिन श्रोताओं के सवाल आ रहे हैं इसलिए ले लें इसको, कह रहे हैं कि सर नमस्ते, अस्थाई लकवा और स्ट्रोक क्या एक ही पार्ट है या भिन्न है? अस्थाई लकवा ठीक के होने के बाद स्ट्रोक हो सकता है या नहीं?
1: यस।
0: जोगीवाड़ा उदयपुर से हैं और 48 साल इनकी, न 55 साल उम्र है शायद इनकी, 55 जोगीवाड़ा, 48 साल उम्र है।
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिए इससे ये पता चलता है कि आप काफ़ी जागरूक हैं। क्योंकि कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो वार्निंग स्ट्रोक्स होते हैं, जो जिसको अपन TIA भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक, जो स्ट्रोक होने से पहले के वार्निंग साइंस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ मिनट का भी स्ट्रोक जैसा हुआ है और वो ठीक हो गया है तो भी आपको पूरे शरीर की अपनी जांचें करानी चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये एक मेजर स्ट्रोक में बदल सकता है। उसको आप नज़रअंदाज ना करें, अपनी जांचें कराएं। और ये एक अपॉर्चुनिटी भगवान देता है कि आप एक मेजर स्ट्रोक से, स्थायी अपंगता से बच सकते हैं।
0: तो आपको ध्यान जरूर रखना है।
1: बिल्कुल,
0: न्यूरो की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो फॉलोअप जरूर मांगती हैं। आप बिल्कुल बैठ नहीं सकते, एक बार ठीक होने के बाद भी 6 महीने।
1: हाँ, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि भाई ये हुआ ही क्यों।
0: जनरली मेडिकेशन चलता ही रहता है अगर।
1: हाँ, अब देखिए, अब कुछ
0: ज्यादातर केसेस
1: में हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो या स्ट्रोक हो या हार्ट डिजीज हो, इनमें प्रिवेंटिव दवाइयां चलती रहती हैं
0: और वो जरूरी है, उनको ओवरलुक नहीं कर सकते।
1: हाँ, नहीं तो फिर मेजर प्रॉब्लम आ सकती है।
0: सीरू कंवर हैं, ये कह रही हैं कि मुझे मेरे कुछ साल पहले जुकाम हुआ था, उसके बाद मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, आज तक सीना भारी रहता है। जुकाम तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है डॉक्टर साहब।
1: हाँ, तो
0: क्या वजह हो सकती है?
1: कुछ एलर्जी वगैरह हो सकती है, तो आपको फिजिशियन या ENT स्पेशलिस्ट से
0: ये करना चाहिए। अब कुछ स्ट्रोक से रिलेटेड और 2-3 आपने पॉइंट मुझे बताए थे जब गाना चल रहा था उस टाइम। एक आपने कहा कि स्मोकिंग को जरूर डिस्कस करेंगे, इतना महत्वपूर्ण स्मोकिंग?
1: देखिए, स्मोकिंग, हाँ, स्मोकिंग एक बहुत ही ऐसी आपकी आदत है जो आपके शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है और सारी बीमारियों की जड़ है। मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहाँ हम लोग किताब में नहीं पढ़ते हैं कि ये स्मोकिंग से नहीं होती है। तो अगर आप कैंसर पढ़ेंगे तो स्मोकिंग उसमें नाम आएगा, आप हार्ट अटैक पढ़ेंगे तो स्मोकिंग नाम आएगा, स्ट्रोक पढ़ेंगे तो स्मोकिंग उसमें नाम आएगा,
0: यहाँ तक कि सर हड्डियां स्टिफ हो जाती हैं, जॉइंट्स पेन।

0: में
1: तो
0: भी
1: आपको
0: वो
1: बैक
0: कहते
1: एक
0: हैं
1: अगर
0: न्यूरो,
1: है,
0: हाँ
1: हाँ, तो वो उसमें स्मोकिंग का, तो स्मोकिंग से सारी बीमारियां हो सकती है, तो
0: न्यूरो में
1: जितनी
0: क्या,
1: जल्दी हो सके।
0: न्यूरो में क्या इसका केमिकल लोचा होता है, क्या होता है?
1: देखिए ये बेसिकली निकोटीन और टबैको अंदर जाने से होता है, ये धीरे धीरे आपकी जो एंजियोपैथी करती है, एंजियोपैथी मतलब है कि आपकी जो छोटी छोटी नसें सप्लाई करने वाली बॉडी में,
0: उनको
1: बॉडी
0: ब्लॉक।
1: पार्ट्स को, वो बंद कर देती है।
0: अच्छा, पहले 20 में
1: तो
0: से सप्लाई हो रही थी, वो
1: हाँ
0: 5 में आ जाएगी।
1: बिल्कुल, तो ऐसे में मांसपेशियों को भी ब्लड चाहिए, दिमाग को भी ब्लड
0: तो
1: चाहिए, हार्ट को भी ब्लड चाहिए,
0: आपको
1: न
0: थकान भी
1: न
0: लगेगी।
1: थकान भी, तो वो सब जगह ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो आपका बॉडी में विभिन्न तरह की बीमारियां आने लगती।
0: एक सवाल आया, राजकुमार चित्तोड़ा है, करें कि सर बीपी 120 प्लस आयु जोड़ के देखें तो क्या ये ठीक है? क्या ये मिथ वैसे है? कॉमन जो लोग हैं वो बताते हैं कि साहब आपकी एज में 120 जोड़ दो तो आपका बीपी अगर आ रहा है वो ठीक है, तो ये करें कि मेरा 190 आ रहा है इसके हिसाब से, तो
1: तो
0: क्या
1: ये गलत
0: ठीक
1: है, नहीं ये फॉर्मूला, कोई
0: है?
1: फॉर्मूला अपनी मर्जी से बनाया हुआ है, तो इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करें। WHO ने 140/90 की एक सीमा बना रखी है,
0: एज नहीं है इसमें कोई।
1: हाँ, तो इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। उसके अलावा आपके डॉक्टर से आपको सलाह करनी है, 150 तक एक्सेप्टेबल हो सकता है ओल्ड एज में, 80-90 ईयर्स में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप 120 में भी अपनी एज ऐड कर दें तो वही आपका
0: एक
1: बीपी
0: और
1: रहे।
0: जो आउट ऑफ हॉस्पिटल डिस्कशन चलता है कि साहब ये तो क्या बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये तो डॉक्टर्स को दवाइयां देनी है इसलिए, ये कितना सच है? कि
1: नहीं देखो ये तो हजारों
0: साहब ये
1: लाखों
0: बीपी जानबूझ के मेरा तो बीपी निकाल दिया, कल तो मेरा ठीक था और डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्यों 150 लिख दिया, 160 लिख दिया।
1: हाँ, तो देखिए एक दो रीडिंग बीपी की ज़्यादा आने से एकदम मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। अगर
0: अच्छा,
1: कंटिन्यूअस बीपी ज़्यादा आ रहा है और आप आराम की अवस्था में भी है, आपको स्ट्रेस नहीं है, हैं, आपने कॉफ़ी चाय पी के बीपी नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप कॉफ़ी चाय पी के तुरंत बीपी लेंगे तो भी बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो बहुत
0: इवन
1: सारी
0: आप
1: चीज,
0: सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो भी डॉक्टर
1: हाँ, तो
0: साहब आ
1: जब भी
0: सकता
1: आप
0: है।
1: दौड़ के खेल के आएंगे और बीपी नापेंगे तो ज़्यादा ही आएगा, तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं लाइफ में इस, लेकिन आपको रेगुलर आपको बीपी चेक करना पड़ेगा। अगर लगातार ज़्यादा है तो डेफिनेटली दवाइयाँ शुरू करनी
0: और बीपी
1: पड़ेगी।
0: और न्यूरो का सीधा सीधा कनेक्शन है, ये ध्यान
1: बिल्कुल,
0: रखना। और बीपी अगर इरेगुलर है तो काफ़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, चंद्रशेखर सोनी है, ये करिए कि न्यूरो सिस्टम को मजबूत बनाने और इससे जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक तरह से
1: यस
0: कंक्लूजन ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और क्या ज़्यादा खाना चाहिए और क्या कम खाना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेज करनी चाहिए? तो एक तरह से कह रहे हैं कि आप सम अप कर दो प्रोग्राम को।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी
1: तो देखिए जो लक्षण मैंने बताया कि भाई कारण है, उसको अपन को रोकना है, तो उसको रोकने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, जैसे अपन बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, हम लोगों का ऑफिस का काम रहता है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे को टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, जबकि सारे काम वो कर रहे होते हैं, मतलब एंजॉय भी कर रहे होते हैं, मूवीज़ भी देख आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम उनके शेड्यूल में नहीं आ पाता है।
0: ज्यादातर ये झूठ बोलते हैं लोग।
1: यही है, तो टाइम टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, कुछ लोग कर पा रहे कुछ नहीं कर पा
0: अच्छा
1: रहे।
0: चलिए, आप तो काफी बिजी
1: हाँ
0: मानता हूं मैं
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर्स को,
1: बिल्कुल,
0: आप कर पाते हो
1: मैं
0: क्या?
1: बिल्कुल, तो सुबह
0: कितनी
1: मैं
0: देर
1: थर्टी
0: ले?
1: टू 45 मिनट्स की मैं मॉर्निंग वॉक और कुछ लाइट
0: तो जब आप कर
1: एक्सरसाइजेस
0: सकते
1: करता
0: हो तो हम
1: हूँ
0: तो कर ही सकते हैं।
1: तो वो
0: और
1: आपको, अगर आप आदत बनाएंगे तो वो आपको डेली बिना एक्सरसाइज के फिर आप नहीं रह पाएंगे। बस एक स्टार्टिंग ट्रबल है कि मुझे 15 मिनट 20 मिनट रोज एक्सरसाइज करनी है, शुरुआत करके देखें तो आपको डेफिनेटली धीरे धीरे धीरे आप उसकी आदत पड़ जाएगी, और बिना एक्सरसाइज के आप कहीं जाएंगे ही नहीं फिर, तो
0: और
1: एक्सरसाइज करिए। खाने पीने में देखिए इसमें B12 विटामिन का बहुत रोल है न्यूरो की प्रॉब्लम्स में, तो B12
0: B12
1: वाली,
0: काफी कॉमन डेफिशिएंसी रिपोर्ट
1: हाँ,
0: हो रही है आजकल।
1: तो इसका एक कारण ये भी है कि वेजिटेरियंस में, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में, उनके कोई तरीके से उनको B12 नहीं मिल सकता है
0: अच्छा, नॉर्मल कोई तरीका
1: ये,
0: नहीं।
1: हाँ, ये ज़्यादातर नॉन वेज चीज़ों में ही मिलता है, तो इसलिए आपको जो भी स्ट्रिक्ट
0: सप्लीमेंट्स,
1: वेजिटेरियंस हैं तो उनको लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट्स,
0: इंजेक्शन या
1: इंजेक्शंस या टैबलेट्स।
0: और शायद इसकी एक अच्छी बात ये डॉक्टर साहब, एक बार अगर आप ले लो तो काफी लंबे टाइम तक इसका स्टॉक आपकी बॉडी में रह जाता
1: हाँ, तो इसके कुछ शेड्यूल्स होते हैं, वो आप एक कंप्लीट कर लें तो 1 साल में फिर दोबारा, फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको ज़रूरत पड़ेगी।
0: है, काफी अच्छा मतलब उसमें वो हो जाता है B12।
1: बिल्कुल,
0: और
1: उसके अलावा आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, हैं, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा मत लीजिए, ये सब भी ध्यान रखेंगे तो आपको डिजीज़ेस नहीं आएगी।
0: एक उदयलाल टेलर है।

0: ये कह रहे हैं कि सर जी कई लोगों के हाथ हिलते रहते हैं और हाथ से खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा पाते, खास तौर से एल्डरली पर्सन्स में होता है। ये कोई बीमारी है या एज के
1: यस,
0: साथ
1: तो
0: होने वाली
1: इसमें
0: चीज़ है?
1: बीमारी भी होती है, कुछ वंशानुगत भी होता है, कुछ एज के साथ भी होता है। तो
0: बीमारी
1: ज़्यादातर
0: कौन सी होती
1: कॉमन
0: है?
1: जो बीमारी वो अपन बोलते हैं पार्किंसोनिज्म,
0: पार्किंसन।
1: जिसके अंदर बैठे बैठे बैठे वो हाथ हिलते
0: तो
1: रहते
0: ये
1: हैं।
0: प्रोग्रेसिव है,
1: ये प्रोग्रेसिव है अगर आप दवाई ना लें तो,
0: बाद में बैलेंस भी बिगड़ जाएगा
1: या
0: आपका।
1: इसमें बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा इसमें आप बार बार गिरते रहते हो, आपकी चलने की स्पीड बहुत धीरे हो जाती है, आप बहुत धीरे धीरे चलते हो, आपके फेस के एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं।
0: इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं,
1: यस, इसको अच्छे से मैनेज
0: क्वालिटी
1: किया
0: ऑफ
1: जा सकता
0: लाइफ
1: है,
0: काफी ठीक
1: क्वालिटी
0: रह सकती
1: लाइफ
0: है।
1: काफ़ी अच्छी हो सकती है इसमें। और जिन केसेस में, कुछ केसेस में जैसे अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो एक ब्रेन में पेसमेकर लगता है, वो भी लगाया जा सकता है, उससे भी आपकी दवाइयाँ बहुत कम हो जाती है और
0: इसकी
1: आपकी
0: सक्सेस रेट कितनी है डॉक्टर साहब? अभी जो पेस मेकर है, एक
1: पेसमेकर
0: तो
1: है।
0: कॉस्टली पड़ता है,
1: हाँ, बहुत
0: और आज आप
1: कॉस्टली।
0: बता ही दो कि ये सक्सेसफुल है भी
1: तो
0: कि प्रचार ज्यादा है।
1: हर चीज के पीछे, सक्सेस के पीछे होता है कि राइट डायग्नोसिस और राइट पेशेंट।
0: राइट पेशेंट भी चाहिए,
1: हाँ
0: रेस्पॉन्सिव
1: बिल्कुल।
0: बॉडी हो।
1: तो राइट डायग्नोसिस और राइट पेशेंट, कोई भी कितनी भी अच्छी सर्जरी मैं कर लूँ, लेकिन अगर डायग्नोसिस गलत है तो वो सर्जरी फेल हो जाएगी। तो
0: ठीक है,
1: इसमें प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर सिलेक्शन है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, मतलब मिरेकल टाइप के रिजल्ट्स हैं इसमें।
0: मतलब किया जा सकता है इसको।
1: बिल्कुल।
0: दो एक सवाल और ले लेता हूँ सर। एक ये कह रहे हैं कि सर जय हिंद, मेरे किसी नॉन को 42 वर्ष पूर्व माइनर पैरालाइज का अटैक हुआ था जो सिर्फ चेहरे पर आया था। अब वो डायबिटिक है, साइटिका है, L3 L4 में गैप है और उम्र 60 के लगभग है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले 4-5 वर्षों से मेमोरी फुल कुछ लॉस हो रही है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे डॉलर वाले झूले में बैठे हों। कृपया पूरी जानकारी दें, थोड़ा
1: देखिए,
0: बताएं इसमें।
1: इसमें जैसे इनको पुराना स्ट्रोक आया हुआ है ऐसा लगता है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ भी है, तो इन सब चीज़ों से न्यूरोपैथी भी हो जाती है, साथ ही साथ पोस्ट स्ट्रोक आने की वजह से डिमेंशिया भी जल्दी आ जाता है, तो याददाश्त वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे केसेस में वही आपको फिर से न्यूरो के स्पेशलिस्ट से दिखाना पड़ेगा।
0: एक सवाल हो रही है, कह रहे हैं कि मेरी उम्र 65 साल है, कभी कभी रात में अचानक गला सूखने लगता है, नींद खुल जाती है, तो ये
1: ये
0: न्यूरो
1: तो
0: का।
1: एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं,
0: हाँ,
1: फिर भी पर्टिकुलर
0: या कोई
1: एग्जामिनेशन।
0: रेसिपिरेटरी इशू भी हो जाते हैं कई बार, स्लीप
1: हाँ
0: एपनिया,
1: बिल्कुल।
0: वो भी एक चीज़ हो सकती है। एक सवाल और आया है सर, ये कह रहे हैं कि उदयपुर RJ जी डॉक्टर साहब ने सवाल है कि हर कि मेरे एक्सीडेंट में होता हाथ टूटा था इनका और अब जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? कि पहले भी इन्होंने एक बार ये सवाल किया था, तो मुझे लगता है कि ये
1: ये ऑर्थो संबंधित सवाल
0: ऑर्थो
1: हुआ
0: संबंधी
1: मेरे
0: जाता
1: हिसाब
0: है।
1: से।
0: चलिए अब फाइनली कंक्लूड करेंगे, उससे पहले एक पॉइंट और लिखवा दिया था आपने, एल्कोहल, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी है।
1: अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में आपके लिए घातक है। इसके अंदर वही सारी जो भी
0: ठीक है,
1: स्मोकिंग से बीमारियां होती है, वही भी सब अल्कोहल से हो सकती
0: और
1: है।
0: ट्रीटमेंट स्ट्रोक का?
1: स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, अगर इश्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें नस बंद हो गई है, तो 4.5 घंटे के अंदर आप पहुंचेंगे तो एक क्लॉट बस्टर ड्रग होती है, उसके बाद में एंजियोग्राफी करके वो क्लॉट निकाला जा सकता है। कुछ इस एरिया के इस के बाद सिर्फ फिजियोथेरेपी और कुछ दवाइयां बचती हैं जो आपको लेनी पड़ती
0: और
1: हैं।
0: हेमरेजिक में तो आप
1: हेमरेजिक के अंदर है, अगर क्लॉट बड़ा है तो ऑपरेशन सर्जरी करके उसको निकाला भी पड़ सकता है।
0: अब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे डॉक्टर साहब, और उसमें बी फास्ट बताते हुए आप बताइए कि किस तरह
1: बिल्कुल।
0: से न्यूरो से बच सकते हैं, कोई
1: तो
0: प्रॉब्लम्स ना।
1: जब तक आप अवेयर नहीं होंगे किसी बीमारी को, तब तक आप उसको अर्ली डायग्नोस नहीं कर सकते और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, तो आपको प्रॉब्लम्स लाइफ लॉन्ग हो सकती है। तो बी फास्ट एक निमोनिक है जो आप हमेशा याद रखें, वेरी सिंपल है, BEFAST। बी फॉर बैलेंस, आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो स्ट्रोक हो सकता है। ई फॉर आइज, आइज में आपको कोई समस्या आ रही है, ब्लरिंग हो रही है, देखने में समस्या आ रही है, दो दो दिख रहे हैं तो स्ट्रोक हो सकता है। फेस पे चेंजेस आ रहे हैं तो स्ट्रोक हो सकता है। आर्म है, आपके हाथ में चीज़ पकड़ने में दिक्कत आ रही है तो स्ट्रोक हो सकता है, स्पीच है आपकी।

0: आवाज़ में दिक्कत आ रही है तो स्ट्रोक हो सकता है। और लास्ट में टी है, जितनी जल्दी आप स्ट्रोक का पता लगाएंगे और जितनी जल्दी इलाज कराएंगे आप परमानेंट या मतलब हमेशा की अपंगता से बच सकते हैं।
1: एक प्रशंसक और है राहुल गवारिया आसपुर से, इन्होंने आपको धन्यवाद भेजा है। 10 साल पहले इन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया था, ट्यूमर का इलाज कराया था, और एक वापिस इन्होंने मई में 2026 में भी करा। कि साहब दोनों बार आपने बहुत अच्छा किया और आपको धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं।
0: थैंक यू राहुल जी।
1: हाँ तो चलिए, ये जो बी फास्ट वाला जो सूत्र है इसको याद रखें, और न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सीरियसली लें, ये अर्ली वार्निंग्स हैं, और टाइम ही अपने आप में पूरा का पूरा जो है वो ही गोल्ड है, और वही एक तरह से न्यूरो का एक कहें तो उसमें सारी समस्याओं का निदान संभव है। डॉक्टर अजीत, आप हमारे बीच में आए और इतनी जानकारियाँ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: उदयपुर बचाव ही उपचार है, डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया। अपनी सेहत और अपने मस्तिष्क का ख्याल रखिएगा। उम्मीद है न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह जी के साथ विनोद शर्मा जी की ये गुफ्तगू लाभदायी रही होगी। आप सभी का शुक्रिया इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। एक नए विषय विशेषज्ञ मेहमान से फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक मुस्कराते रहिए, सुनते रहिए अपना मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल भेड़वा उदयपुर।
4: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
5: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा गुड्डू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो
8: पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट
10: एक्सप्रेस
9: के यात्री
10: इसे मोबाइल चार्ज करना,
11: दिमाग चार्ज कर अपना।
12: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
11: देखा
10: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
12: अब क्या करोगे?
10: फ्री वाईफाई है ना।
11: बुद्धू सुधर जा।
12: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
10: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
12: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

लिसनर्स चॉइस। अब ये प्रोग्राम सुनिए हर शुक्रवार को सुबह ठीक 11 बजे। इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं हमें व्हाट्सएप करके। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा गाना आपको सुनना है। तो शुक्रवार की सुबह ठीक 11 बजे सुनिए प्रोग्राम।

0: लिस्नर्स चॉइस ओनली ऑन 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी पर।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। प्रोग्राम का नाम है हिट परेड।

हैप्पी बर्थडे टू एवरग्रीन आइकॉन माधुरी दीक्षित। कहते हैं सफलता हाथ रातों रात नहीं मिलती। माधुरी की पहली फिल्म अभूत फ्लॉप रही थी और कई लोगों ने तो कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी है, पर ज़रा ये शेर सुनिए। हौसले जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं ना, इम्तिहान भी उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, है ना।

एक एक्ट्रेस, बेहतरीन माँ, पत्नी और शानदार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी। 2026 में भी माधुरी उतनी ही ग्रेसफुल हैं जितनी 90s डेकेड में थीं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: ये है शहर का लोकप्रिय रेडियो चैनल रेडियो लिक सिटी 101.9 FM बैंड पर। शुक्रवार की सुबह है और हमारा व्हाट्सएप इनबॉक्स पूरी तरह आपकी पसंदीदा गीतों के मैसेजेस के साथ फुल है। प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं लिसनर्स चॉइस।

लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम की पहली पेशकश हमने इन श्रोताओं के नाम की, ये हैं चेतक सर्कल से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, प्रेमपुरी गोस्वामी, सहेलियों के बाड़ी से अजय जीनगर, प्रिंस जीनगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर से, और इन्हीं के साथ में हम कुछ और नाम जोड़ रहे हैं इस गाने के साथ, आयुर्वेदिक चौराहे से अशोक।

रूप चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान, भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से हैं सीमा वारी, नाहर सिंह वारी, और वारियों की घाटी से हैं सत्यनारायण वारी, शांति वारी। और इन्हीं की पसंद का अगला गाना हम सुनवाएंगे, उससे पहले सुनेंगे आनंद फिल्म का गाना।

किसी की याद में खोया है दिल, तो ये गाना कितना सुकून पहुंचाता है। चलिए इसी गाने के साथ कुछ और नाम शामिल करते हैं। ये हैं भाटापारा दत्तरंगी के हमारे श्रोता हैं हीरामणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। और इसके अलावा अगले श्रोताओं के नाम हम गाने के बाद शामिल करेंगे। ये हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना सुनवाने की फरमाइश भेजने वाले सत्यनारायण वारी और इनका पूरा परिवार, आपके लिए ये गाना।

हमारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी, और श्रोताओं के नाम हम शामिल कर रहे हैं, ये हैं अद्वेश शर्मा, श्री कृष्ण शर्मा, मुकेश शर्मा, सनम शर्मा, रोहित शर्मा, अशोक शर्मा, ब्रजेश प्रकाश, गायत्री शर्मा, हीरालाल शर्मा, दिलमणि शर्मा, बक्सर के हमारे श्रोता हैं। और इसके बाद हम अगला गाना अब आपको सुनवाएंगे, अपना बना लो फिल्म का नाम है देखो कोई प्यार ना करना, और इसके लिए हमें फरमाइश भेजी है नफीसा फकरू, यूनुस असगर, सकीना पटवा, जकिया गौरिया, बस्ती राम जी की बाड़ी के श्रोता हैं, और साथ में है हाफिजा।

सदाबहार गाना हमने सुनवाया आपको, मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से। श्रोताओं की पसंद पर अब छत्तीसगढ़ के हमारे और श्रोताओं के नाम शामिल कर रहे हैं, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, और श्रोता हैं नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटार।

इस खूबसूरत से गाने के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनके साथ हैं लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के भी। और साथ में नाम शामिल कर रहे हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषारदेव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, ये हैं छत्तीसगढ़ के ही श्रोता। नथाना पंजाब के श्रोता हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये हैं नेपानगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता। चलिए अगले गाने की ओर रुख करेंगे, आपको सुनवाएंगे हम अगला गाना कौन सा। सड़क फिल्म का ये गाना है और गाने के बाद नाम

सड़क फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया इन सभी की पसंद पर। ये है मालदा स्ट्रीट से मंजू सेन और अशोक जी सेन, साथ में हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। इसी गाने में हम नाम शामिल कर रहे हैं। ये श्रोता हैं दुबिहा नेवादा ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल, अमित, हैप्पी, ओम प्रकाश रॉय और श्रीमती उषा रॉय, इनके नाम भी शामिल कर चुके हैं। और नाम हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री श्याम कुंवर, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं। और श्रोता हैं हमारे ये बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन हैं। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशूर धान खुराना हैं। और कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम शामिल करेंगे और गाने की ओर भी बढ़ेंगे। अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे, ये है जहरीला इंसान फिल्म से।

तरुणा झमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया, पूर्व पूर्बिया लक्ष्मी लक्षराज पूर्बिया, हाथीपोल उदयपुर के श्रोताओं की पसंद। इसी गाने में नाम शामिल हो रहे हैं गुलाब रेगर, शांति रेगर, रेगर कॉलोनी उदयपुर से हैं आप, भरत रेगर, डिंपल रेगर, प्रिंस गोकू रेगर कॉलोनी की और श्रोता हैं।

फिल्म जहरीला इंसान के इस गाने के साथ ही नाम शामिल कर रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गौरिया जालंधर के श्रोताओं के भी। और अगला गाने की ओर बढ़ते हैं, धनवान फिल्म का गाना है, इसे सुनवाने की फरमाइश की है हमें नीरज, ध्रुवेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर के श्रोताओं ने।

रेडियो लेक सिटी पर बज रहे हैं गाने अपने श्रोताओं की पसंद के, हमारे उदयपुर के श्रोताओं की पसंद पर। और इसी गाने के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और सविता गोवर्ड का भी। और श्रोता हैं जिन्होंने, जिनके नाम हम शामिल करना चाहेंगे, उनके नाम बताएंगे आपको। पहले ये गाना सुनिए, गोपी फिल्म का गाना है। इसके बाद में और इसकी पसंद भेजी है सविता शर्मा, पायल, पूनम, पुनीत, सिद्धेश, अदिति, सृष्टि, विनीता, मंजू और सुनीता ने। ये है भोपालपुरा के श्रोता।

इसी गाने में नाम शामिल हो रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल के रविंद्र सरणी मारवाड़ी स्ट्रीट के श्रोताओं के भी। और अब हम आपको आगे सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म का गाना। इसके लिए हमें फरमाइश भेजिए ब्रजमोहन शर्मा, शारदा शर्मा, लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्यों ने। ये हैं खेड़ा सर्कल सेक्टर 14 उदयपुर के श्रोता।

मन्ना डे का गाया एक खूबसूरत सा क्लासिक गाना पुराने दिनों की याद ताज़ा करता हुआ, और ऐसा ही एक और गाना सुनवाने की फरमाइश की है अशोक ने। आप हैं प्रताप नगर से।

रेडियो लिख सिटी लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम का आधा वक्त पूरा हो चुका है और देखिए अब किस किस के गाने, मतलब हमारे किन श्रोताओं की पसंद आज पूरी हो पाती है, उनके गाने बज पाते हैं। अगला गाना बाजार फिल्म से सुनवाने की फरमाइश भेजी है अशोक साधवानी, देवीलाल चौधरी, मोहन चौधरी, किशन जी, हितेश, गौरव, कपिल खिलानी, भरत तेली, आबिद खान पठान और उनके सभी मित्र हैं। ये हैं उदयपुर के श्रोता।

ये अलहदा आवाज़ जगजीत कौर की, जिनकी आवाज़ में आपने ये गाना सुना, बाजार फिल्म का, और इसी गाने के साथ नाम शामिल कर रहे हैं उदयपुर रामदेव जी मंदिर से मनोज जी कुमावत, सुंदर देवी कुमावत, किरण ललित, अजय भावना, हेमलता विनायक जी, यशस्वी सिद्धि, निष्ठा प्रतिष्ठा, और इनके साथ हैं सेक्टर 7 चामुंडा माता मंदिर से शांता देवी कुमावत, मनोज कुमावत, सुनील कुमावत, और हैं काष्ठकला मार्ग के श्रोता अमृत लाल जी, रेणू रविशंकर जी, और हैं हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी, सूरज, तस्सू और हनु। और इसके बाद अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

0: हैं, ये गाना है बहरवाड़ी के हमारे श्रोताओं की पसंद पर, जीने की राह फिल्म का नाम, शब्बीर इटारसी रुबाब बानो हमारे श्रोता।
1: सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

0: सदाबहार गाते गुनगुनाते गीत हम आगे बढ़ रहे हैं और ये गाना है जीने की राह फिल्म से और इसी के साथ नाम शामिल हो रहे हैं नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई और सैफन भाई के भी मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं कविता गौड़, दिग्दर्शन गौड़ और इनका पूरा परिवार। चलिए अब अगले गाने की ओर रुख करेंगे और ये गाना हम आपको सुनवाएंगे राजू चाचा है, फिल्म का नाम भरत जायसवाल सोनी गरासिया, गांव मनवा डूंगरपुर राजस्थान के श्रोताओं की पसंद पर। और गाने के साथ कुछ और नाम हम शामिल कर लेते हैं, ये नाम है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से।
1: संजना संजना
2: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है, हाँ यही तो है सब निशानियां,

मिले जुले गाने आप सुन रहे हैं लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में। ये वीकली प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी पसंद हमें भेजते हैं और वो गाने हम आपको सुनवाते हैं। अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे, आग ही आग फिल्म का नाम है और इसके लिए फरमाइश भेजी है रहमान कॉलोनी उदयपुर से यास्मीन बानो, शबनम बानो, हुस्ना बानो, फरहीन नाज ने, और गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान के भी। ये हैं बिलाड़ा राजस्थान के हमारे श्रोता। महावीर जैन चित्तौड़ा हैं, इनका भी नाम शामिल कर चुके हैं, और श्रोता हैं हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। नया गाँव पाली से है, ये बड़गांव रंगास्वामी कॉलोनी से हैं शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी रंगास्वामी, साधना रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, भानु प्रताप दास, महिमा, चित्रांची भास्कर, शांति भाभी जी, कमला जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और इनका पूरा परिवार, साथ में है खुबानी परिवार। चलिए अब अगला गाना सुनवाते हैं, आग ही आग फिल्म का नाम है।

मेलोडियस गानों से भरा ये प्रोग्राम जिसका नाम है लिसनर्स चॉइस और इसमें कुछ श्रोताओं के नाम हम शामिल करना चाहेंगे। हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, इसी गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय के भी, और जोड़ा परिवार कृष्णा पार्क दिल्ली से। और श्रोता हैं हमारे जिनके नाम शामिल करेंगे, ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। चलिए अगला गाना आपको सहरा फिल्म से हम सुनवाएंगे, मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर, अक्सा, इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी, सलुम्बर की श्रोताओं की पसंद पर।

और चलिए अब प्रोग्राम में उन सभी श्रोताओं के नाम शामिल करने की बारी जिनके फरमाइशें हमें मिली हैं और उनके गाने शामिल ना भी हो पाएँ तो हम कोशिश करेंगे उनके गाने भी अगली बार शामिल करें। बहरहाल नाम ज़रूर शामिल करेंगे और साथ में बजेंगी गाने उन्हीं के जो आपने भेजे हैं, पर पूरी फरमाइशें नहीं होंगी लेकिन नाम हम कोशिश करते हैं सभी श्रोताओं के नाम शामिल किए जाएँ। इजाज़त फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं रामचंद्र टेलर, लीला देवी, कल्पेश पवार, पिंकी, मनस्वी, चेतन्या और कार्तिकेय, प्रभात नगर, हिरणमगरी सेक्टर 5, उदयपुर के श्रोताओं की पसंद पर।

कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं आपके नाम, तो वो नाम हम आपको सुनाते हैं जिन जिन की फरमाइशें हमें मिली हैं। वरिन खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हैं, ये हैं रामपुरा से सुधा रानी वैष्णव, और श्रोता हैं ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के श्रोता, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशीता, भंवर वशीता, गौतम वशीता, राहुल अगरबत्ती, रामद्वारा चौक, धोली पावड़ी, उदयपुर के श्रोता हैं, रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और उनका परिवार है उदयपुर से।

श्रोताओं के नाम हैं राजकुमार जैन, रेनू जैन प्रगति नगर शोभापुरा से, और हैं महेश्वरी मोहल्ला मावली से गणपत विजयवर्गीय, भगवती पुष्पाबेन, फेना गर्ग और पूरा विजयवर्गीय परिवार, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग हैं सहारनपुर के श्रोता, और ये श्रोता हैं खैरातीवाड़ा चौक से श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, और श्रोता हैं सत्यनारायण कुरील, पुष्पलता कुरील, मिनाली, मिताली और रोहन कुरील हैं खैरातीवाड़ा से, और श्रोता कमल कुमार सोहालका, धारावती सोहालका, श्वेता और श्रीमती कौशल्या सोहालका, जतिन और लोमा सोहालका, मोहाली चंडीगढ़ से श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

रेडियो लिक्सिटी पर लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में श्रोताओं के नाम शामिल कर रहे हैं। ये हैं कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। और श्रोता हैं भोपालपुरा उदयपुर से भाग्यवंती चौहान, सत्येन चौहान, तरुणा चौहान, मधुकांता चौहान, नव्याश्री, नित्याश्री, रिदम। और ये गाना सुनना चाहते हैं उसी की वजह से हमने आपका नाम शामिल किया है फरमाइशी गीतों के इस प्रोग्राम में। बहरहाल फरमाइशों की लिस्ट जो है बहुत लंबी है। नाम शामिल किए जा रहे हैं रामपुरा से नारायण सेन,

चलिए नाम शामिल करते हैं, ये कशिश है, कह रही हैं कि काफ़ी देर से किसी गाने पर वो जो टेबल बजाने का मन कर रहा था, चलिए वो गाना भी बज गया। शुक्रिया आपने मैसेज भेजा। जगमाल सिंह डागला हैं, हैप्पी डागला, नायक जी एस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार है हनुमानगढ़ जंक्शन से।

बेशक आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें, फरमाइशें भेजते रहें। नाम हम शामिल कर रहे हैं फाजिलका पंजाब से, भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाडी, दिवानशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, वाणी खेड़ा, जीवन सिंह पू के, और नाम है नारायण इंगले, बंगला इंगले, आशीष मुहर्रिकर हैं, नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता, सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से हैं, खतूरिया कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा की, जय सालवी संतोष खतूरिया, यज्ञा सालवी दो तलाई उदयपुर से, शक्ति नगर उदयपुर से, संतोष खतूरिया, काम्या खतूरिया, विकास खतूरिया, भानु खतूरिया, हिताक्ष खतूरिया हैं, नवी हसन अब्बासी हैं, मारहरा दरवाज़ा एटा से, और इनका पूरा परिवार शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद अनम और यशरफ अब्बासी।

बिल्कुल, गाते गुनगुनाते कहाँ रुकना चाहिए। चलिए प्रोग्राम के आखिरी गाने की ओर बढ़ रहे हैं। गाना आपको सुनवा रहे हैं, श्रोताओं के नाम शामिल कर रहे हैं। पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक हैं। ये है सुरेंद्र सोलंकी, भावना, प्रदीप, हर्षु, रानू, पार्थ और पूरा सोलंकी परिवार सेक्टर 11 उदयपुर से। कुछ और नाम शामिल हो रहे हैं। दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह के भी।

0: लगे हैं।
1: और ये हमारे श्रोता जिन्होंने मैसेज लिखा है कि उन्हें बहुत पसंद आता है हमारा प्रोग्राम, और ये लिख रहे हैं परंतु इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया है, आप बहुत मैसेज शामिल करते हैं तो अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लगता है कि आपके मैसेज अगर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा हैं, रोशन लाल सालवी, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैत्विक सालवी और पूरा सालवी परिवार है। उदयपुर के हमारे सभी श्रोताओं का शुक्रिया करते हैं दिल से, और जिनके गाने शामिल नहीं हो पाए उम्मीद करेंगे आपके गाने हम अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, इस प्रोग्राम से लेंगे इजाज़त और आपको जोड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, सुनेंगे समाचार कुछ ही पलों में।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
3: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती

0: नियुक्ति हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रूपये और गुरूग्राम में इसकी दर 84.12 रूपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। एफएम रेडियो लेक सिटी। दिन के 12:05 हुए हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के साथ। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध कार्यक्रमों में सबसे पहले सुनते हैं यादों की महफिल। प्रेम भी दर्शाया गया है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत। बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बिल्कुल, कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा परिवार। हम फिल्म से गीत आपने सुना, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत जिनमें परिवार की एकजुटता के बारे में बताया जाता है या पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं।

दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे सखियों की फोन इन फरमाइशें पूरी होंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और दोपहर 2 बजे से सुन सकते हैं वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 28वीं कड़ी। शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी में आज सुनेगा सुनिएगा जीवन एक सरल रेखा, ये कहानी जिसे लिखा है श्वेता उपाध्याय ने। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

घर घर की कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शब्बीर कुमार, चंद्राणी मुखर्जी, उत्तारा केलकर और साथियों की आवाज़ें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर ऐसे गीत जिनमें पारिवारिक रिश्तों की बातें हैं और साथ ही है पारिवारिक एकजुटता का संदेश।

ही है पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख भी। कुछ ऐसा ही गीत आपको अब सुनवाने वाले हैं। साधना सरगम और साथियों की आवाजें हैं, महबूब के बोल, ए आर रहमान का संगीत, फिल्म डोली सजा के रखना। सुनिए ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में ढोंगी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर आपको सुनवा रहे हैं ऐसे गीत जिसमें पारिवारिक एकजुटता की बातें तो हैं ही।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: यमल कल्याण
1: और मेरी विदेशी तान तान तान
0: मेरा राग।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। रोजाना दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और रोज रात छाया गीत होता है 10 बजे। अगर आप किसी दिन छाया गीत सुनने से रह जाएं तो चिंता ना कीजिएगा, सुन सकते हैं रोजाना शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनः प्रसारण विविध भारती पर। इन दिनों आप कई कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस वक्त आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को बताते गीत या पारिवारिक एकजुटता को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

0: आए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा
1: धगन तिलक धन धगन तिलक धन गत्ता गदत्ता गदत्ता
0: मामा। ओ मामा ओ मामा मामा मामा सा रे गा मा पा जा नी सा नी नी पा पा मामा। ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा। ओ मामा ओ मामा।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है, वफादारी का शिकवा क्या
2: जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
3: अरे क्या
2: असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन।
4: ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा
2: या हूँ या हूँ या हूँ, मामा ओ मामा ओ मामा मामा।

0: ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
2: सच भाई
1: हुए

परवरिश फिल्म के इस गीत को आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल दत्ताराम वाडकर का संगीत। आपको याद दिला दें कि 10 बजे रोजाना आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम, और अगर आपसे सुनना रह जाए या आप दोबारा सुनना चाहें तो हर शाम 5 बजे आप पहले दिन के छाया गीत का पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। आपके लिए ये कार्यक्रम रोजाना 9 बजे होता है और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। तो अब इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक संबंधों को दर्शाते गीत हमने शामिल किए हैं।

क्या कहना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन के साथ साथियों की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर याद कर रहे हैं वो गीत जिनमें परिवार के सदस्यों की बातें हों या पारिवारिक एकजुटता के बात।

एनिमल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़, राजशेखर की बोल, हर्षवर्धन रामेश्वरम का संगीत था इस गीत में। अगर आप नए गानों के शौकीन हैं तो सुनिए हमारा कार्यक्रम चित्रलोक रोजाना रात 8:15 से, और ये कार्यक्रम सुबह 8:30 पर भी आता है। दोनों ही समय आप सुन सकते हैं नए फिल्मी गीत विविध भारती पर। और इस वक्त विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मौके पर पारिवारिक रिश्तों को दर्शाते गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही यादों के महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। और इससे पहले आपको बता दें, सत्य पे सत्ता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और राहुल देवबर्मन की आवाजों में। राहुल देवबर्मन का संगीत, गुलशन बावरा के बोल। और अब कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जो भी गीत शामिल होते हैं वो उसी टेक्स्ट से आते हैं और उनमें कुछ शब्द ऐसे समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो ये अंदाजा लगाना होता है हमारे श्रोताओं को कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा तो इसी बात में है कि आपके गानों की लिस्ट और हमारे गानों की लिस्ट किसी तरह से मैच हो जाए। और अगर आपके कुछ गीत अलग भी हैं तो भी आप उसे हमारे पोस्ट पर कमेंट के जरिए बता सकते हैं, क्या पता शायद वो गीत शामिल हो जाए कार्यक्रम में। और आज की जो इबारत है या टेक्स्ट है वो हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमारे जो साथी अब तक फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं वो जा सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज मिल जाएगा। बहुत से साथी पूछते हैं कि कौन सा असली पेज है, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बाजू में एक नीले कलर का टिक बना हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फॉलोअर्स 1000K लिखा होगा, यानी माफ कीजिएगा 100K लिखा होगा, यानी कि 1,00,000 फॉलोअर हैं। और यही पेज विविध भारती का आधिकारिक पेज है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं और इस पर ही आपको ये पोस्ट नजर आएगी। तो आज की इबारत मैं एक बार आपके सामने पढ़ दूं, गर्मी जहां झुलसाती है वहीं इससे जुड़ी यादें हमारे मन पर मीठे नर्म फाहे रख जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, रेलगाड़ी का सफर, कभी नानी की कहानी तो कभी दादी का दुलार, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खेल खेल में दिन बीत जाते थे भाई, सैर सपाटे, पिकनिक, बाग बगीचे और मस्ती, वो दिन भी क्या दिन थे। तो इस इबारत से अंदाजा तो हमारे बहुत से साथियों ने लगाया है कि आज बातें बचपन में मिलने वाली गर्मियों की छुट्टी की है। और साथ ही बहुत सी बातें होंगी जहां हम घूमने जाते थे, रेलगाड़ी के सफर की बातें होंगी, ऐसा हमारे साथियों ने कुछ अंदाजा लगाया है और शब्द भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लेकिन कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने से पहले हम आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो आप आपकी गर्मियों की छुट्टियों की यादें हमसे साझा कर सकते हैं और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, क्योंकि इसमें तो हमने 2-3 खेलों के ही नाम बताए, लेकिन आप कौन कौन से खेल खेला करते थे ये बता सकते हैं। क्या गर्मियों की छुट्टियां आपके लिए फिल्में ज्यादा देखने का मौका लेकर आती थी या कुछ नहीं, और क्या गर्मियों में आप पिकनिक का प्लान बनाते थे, या जब बत्ती गुल हो जाती थी तो गर्मी से निजात पाने के लिए क्या आपने हाथ वाला पंखा झरा है, या अंताक्षरी खेली है अपने साथियों के साथ, कौन सा हुआ आपका पसंदीदा गाना, ये सब हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि नानी और दादी से आपको डांट ज़्यादा पड़ती थी या दुलार ज़्यादा मिलता था, क्योंकि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बचपन में थे शरारती या शरीफ, या बचपन की इन यादों को सुनकर आप भी भरते हैं ठंडी ठंडी आहें, या आपके अंदर अब भी आप अपने इस बचपन को जीते हैं। ये सारी बातें हम तक पहुंचाइए, हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से कमेंट्स लिखे हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं पहले कार्यक्रम का पहला गीत।

मुकेश की आवाज़ में देवर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद किया जा रहा था बचपन को, क्योंकि आज हम भी कुछ याद ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों की बातें हो रही है। हमारे एक साथी ने लिखा कि सुरीला सफ़र में आज अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, बचपन की गलियारों में झांकेंगे। तो आज की इबारत में से याद शब्द तो हमने ले लिया एक गीत में, और कौन से शब्द हो सकते हैं जिनके गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, आप हमें बताइए। हमारे साथी ने बताया, हमने पूछा था कि कौन कौन से और खेल आप खेलते हैं, क्योंकि हमारे इबारत में तो सिर्फ दो खेल के नाम हैं। तो उन्होंने बताया कि पकड़ दांव, लंगड़ी, खो खो, रुमाल दांव, कबड्डी जैसे कई खेल खेला करते थे। वेकेशन में दोस्तों के साथ उनके खेतों में जाते थे, नहाते थे, कच्चे आम, इमली, शहतूत जैसे फल खाने का आनंद भी खूब उठाया है। बचपन अनमोल था, कोई भी कीमत से उसे नहीं खरीदा जा सकता। हमारे एक और साथी ने बताया कि बचपन में पढ़ता था तब दोस्त फिल्म दिखाने हमें काका जी सभी कजन भाई को लेकर लेके गए थे। बचपन में छोटे धर्मेंद्र होते हैं तो पिताजी उन्हें आती जाती रेल दिखाते हैं, गाना बजता है, हम उसे आकाशवाणी गीत कहते थे। फिल्म में फिर कई बार गाना बजता है, जब धर्मेंद्र बड़े हो जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठते हैं तब भी गाना बजता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और हमारे एक और साथी ने कहा कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हम सुबह का खाना लेकर अपने परिवार के साथ खेत पर चले जाते थे, वहीं वटवृक्ष की छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा के साथ हम खेलते थे, अंताक्षरी खेलते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर सुस्ताकर पेड़ के कैरियां तोड़कर लाते थे। जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता था तो हम पहले उसका रस पी लेते थे, कितना सुकून मिलता था, काश वो बचपन के दिन वापस लौट कर आ जाएं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन आज गीतों के जरिए जरूर आपको कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं। हमें ये भी बताइए कि क्या आप बचपन को जीते हैं अब भी, क्या पिकनिक वगैरह पर कहीं जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। और ये सारी बातें बताते बताते हमारे साथी जब गर्मियों की बात कर रहे हैं तो वो पसीने की बात बहुत कर रहे हैं कि भाई बड़े पसीना छूटता है, गर्मी बड़ी तपती है, तो एक गीत वैसा ही सुना दें आपको, बताइए कौन सी फिल्म का ये गीत है।

हुस्न का गुलाम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और उषा मंगेशकर की आवाजें, योगेश के बोल, रॉबिन बनर्जी का संगीत। फिलहाल तो हमें नहीं दिखा है कि किसी ने सही जवाब हमें भेजा हो, पर हो सकता है नेटवर्क के इश्यू की वजह से कभी कभी लेट भी जवाब मिल जाता है। हालांकि हमारी एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टियां यानी ननिहाल या दूर गांव में सफर पर जाने का मौज मस्ती का सुहाना मौसम। आपने सभी के बचपन वाले से मनभावन यादों को आज हम याद करने वाले हैं और उन्होंने बहुत से गीत भी भेजे हैं जिन शब्दों से आज के कार्यक्रम में गीत हो सकते हैं। अब उन्हें ये देखना होगा कि भाई उनके गीत आज के कार्यक्रम के गीतों के लिस्ट से मैच होते हैं या नहीं। हालांकि हमें लगता है कि कोई ना कोई गीत तो ज़रूर सबकी लिस्ट से मैच हो ही जाएगा। हमारे एक और साथी बता रहे कि हमने पूछा था ना कि नानी और दादी से डांट पड़ती है कि प्यार मिला हमेशा, यानी शरारती थे या शरीफ। तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, बहुत से साथियों ने तो कह दिया वो शरीफ थे भाई। और एक और साथी कहते हैं कि दादी नानी से ढेर सारा प्यार और डांट भी मिली। मेरी दादी हमें लेकर सब्जी भाजी लेने जाती, लौटते समय कुछ ना कुछ खाने को पक्का मिलता। और नानी तो जब भी घर आती तो बच्चों के लिए चीज़ी और खिलौने की प्रतीक्षा रहती थी कि इस बार क्या लाएंगी। हमने तो अभी भी उनके खिलौने बहुत संभाल कर रखे हैं। नानी दादी नाना दादाजी सभी बहुत याद आते हैं और हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में अधिक ही याद आते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन में उन्होंने साथियों के साथ गिल्ली डंडा, चुपम चुपाई, पोसंपा, लट्टू कंचे, आम डंडी और चोल पुलिस, कैरम, ये सारे खेल खेले हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के गांव की बात हो तो गर्मी हालांकि सभी हदें पार कर रही है, लेकिन अगर नानी के घर की बात हो तो सर्दी हो गर्मी हो सभी फुर हो जाती है। पिछले एक दशक से हमारे इंदौर से रेल मार्ग बंद है तो सफर में पहले जैसा उतना आनंद नहीं आता, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो रेल की गाड़ी पे यात्रा करते हुए आता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दादी माँ बहुत ज़्यादा डरा के रखती थी, हम लोगों को उनकी आंख से डर लगता था, हम लोग बहुत बदमाशी करते थे इसलिए। और नानी बी के घर में नानी को ज़्यादा डांटने का मौका नहीं मिलता था, पर डर डर के हम लोग रहे बचपन में भाई। लेकिन आप साथ में तो बता रहे ना कि इतनी शरारतें करते थे, थोड़ा डराना तो ज़रूरी पड़ता है। हमारे एक और साथी कहने कि गर्मियों में जब घर से बाहर निकलना बंद हो जाता था तो समय बिताने के लिए हम घरेलू इंडोर खेल खेलते थे, जिसमें चूड़ियों के टुकड़े और इमली के बीज के साथ खेलने वाला खेल जो कि लूडो से मिलता जुलता खेल था। ज़मीन पर चौक से कुछ ब्लॉक ड्रॉ करके चार अलग अलग रंग की चूड़ियों को रख कर इमली के बीज बनते थे हमारे पास और हम इसे खेलते थे। इसे चाई चूड़ी कहते थे स्थानीय भाषा में। भाई इस तरह का खेल हमने भी कुछ खेला है और बड़ा ही आनंद आता है उस खेल को देखकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई हम कार्यक्रम में बैडमिंटन वगैरह उन्होंने बहुत खेला है, अंताक्षरी खेली है, ऐसा वो बता रही हैं। बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी छुपाई बहुत हम खेला करते थे बचपन के टाइम से। हमारे साथियों ने कहा बहुत सारे खेलों के बारे में बता रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि झुलसती हुई तेज़ गर्मी में रेलगाड़ियों का लंबा सफ़र करीब 1500 किलोमीटर तय करके हम अजमेर से पश्चिम छोर गुजरात के सोमनाथ तीर्थ

0: आज दोपहर पहुंच गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो भाई आपके साथ आपका ये सफर सुहाना हो, हम यही कह सकते हैं। और एक गीत क्यों ना बताया जाए, क्यों ना सुनाया जाए आपको, क्योंकि बात हो रही है छुट्टियों की, तो ऐसा ही एक गीत आपके लिए भेज रहे हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है।
1: तूने मुस्कुरा के दे

0: मेरी छुट्टी हो गई,
1: दूसरी ढूंढ ले लुगाई।
0: मेरी छुट्टी हो गई, तूने मुस्कुरा के देखा, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई, मेरी छुट्टी हो गई। जान किस अदा से, जान किस अदा।

0: है बाज अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई अपनी हो गई सगाई सबके छुट्टी हो गई तूने मुस्कुरा के देखा मेरी छुट्टी हो गई मेरी छुट्टी हो गई मेरी छुट्टी हो गई जाने किस अदा से जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई जाने किस अदा से देखा सबकी छुट्टी हो गई
1: मोहम्मद रफी और कृष्णा कल्ले की आवाज में आप सुन रहे थे शंकर खान फिल्म का ये गीत। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि इससे पहले वाली जो फिल्म का नाम हमने पूछा था हुस्न का गुलाम, वो जवाब भी आपने हमें दिया, आपका जवाब हमें मिल गया। हमारे साथ ही आप सुन रहे हैं मिलकर हम सभी सुरीला सफर, जिसमें आज इस इबारत जो हमने भेजी है जिसमें गर्मियों की छुट्टियों की बातें हैं और दादी नानी के घर की बातें हैं, वो सारी बातें हम कर रहे हैं, वो अनुभव हम आपस में बांट रहे हैं और साथ ही उनमें कुछ शब्द हैं जिनसे गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच हो जाए इसका तो बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। देखते हैं कहां कहां तक हमारी और आपकी लिस्ट मिलती है। हमारे साथी कहते हैं कि नानी दादी की संगत तो नसीब नहीं हुई मगर ये कमी अपने नातिन और पोतों को दुलार करके हम पूरी कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज भी बचपन में जीता हूँ, एरोप्लेन की आवाज़ आती है तो ऊपर देखता हूँ, रेलवे स्टेशन से गुजरती गाड़ी के डिब्बे गिनता हूँ, बच्चों के साथ खेल खेल में जुड़ जाता हूँ। एक साथी ने बताया कि बचपन में पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और लुका छुपी खेला करते थे। और हमारे एक साथी बोल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि छुपन छुपाई, कोकोनट, रंग पूछने वाला खेल, चोर सिपाही, खो खो आदि खेलते थे। एक और साथी ने बताया कि दादी घर में सब मोहल्ले के बच्चे लड़कियां मिलकर 7x7 स्टोन्स वाला गेम होता था।

जिसको बॉल से गिरा के वापस से लगाना होता था। ये बहुत खेला करते थे हम सड़क पर। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ सितोलिया, कबड्डी, लुका छुपी, मार दड़ी, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे अनेक प्रकार के खेल खेले हैं। और हाथ से जलने वाले पंखे याद करें हमारे एक साथी जो उसके बारे में बता रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो नानी के घर में ही रहा करते थे। और एक और साथी कह रहे हैं कि नानी के यहाँ तो साल में 10-15 दिन जाते थे, लेकिन दादी तो हमेशा साथ रहती थी, बहुत अच्छी थी। हम उन्हें हाथ से खाना खिलाते थे, उनको बहुत मिस करते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके दिल के एक कोने में बचपना हमेशा जिंदा रहता है। कुछ लोग उम्र के साथ उसे छिपा देते हैं, पर कुछ लोग बचपना खुलकर जीते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। अब दादी और नानी की बात हो गई है, तो उन पर जो उनके संबंधित जो गीत हैं वो सुनवा दिए जाएं। भाई दादी वाला गीत तो हमने चुन लिया है, हो सकता है आपके लिस्ट से वो मैच करे, लेकिन नानी पर आधारित दो गीत हमारे पास हैं। अब आपको ये बताना है कि नानी की नाव आज चलेगी या नानी की मोरनी को मोरों के साथ भेजा जाए। तो आप हमें बताइए, तब तक हम दादी वाला गीत आपको सुनवा रहे हैं। किस फिल्म का ये गीत है ये भी बताइए।

घराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही नाम बताया। हमारे साथी कहने की आज की इबारत प्रासंगिक और रोचक है और बचपन की स्वर्णिम यादों संग पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न आयाम को दर्शाती है। रेलगाड़ी का सफर हो या सैर सपाटे का जिक्र, बच्चे से लेकर हम उम्र वालों को रोमांचित करता है। इतनी रोमांच होता है, गर्मियों का कोई असर इस सफर को निरुत्साहित नहीं कर पाता। गांव की गलियों में वो गिल्ली डंडा, लट्टू खेलना, चोर सिपाही खेल याद आते हैं तो आंखें सजल हो जाती हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। हमारे एक साथी कहते हैं कि हम झरने के पास समंदर के किनारे पश्चिमी घाट के सैरगाहों पर

0: जहाँ सुकून और शांति दोनों मिलते हैं वहाँ जाएं। और गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चों को नानी के घर भेजने के बजाय सबको सिक्किम जैसी जगहों पर घुमाने ले चलें, जहाँ के एडवेंचर देखते सब गदगद हो जाएंगे। पहाड़ों पर मिलने वाला गर्म सूप सबको पसंद आएगा। भाई एक अच्छा आइडिया तो है, लेकिन नानी के घर की बराबरी तो कोई भी जगह नहीं कर सकती। हमारे एक और साथी कहने की छुट्टियों में दादी और नानी के घर जाना बच्चों वाला सभी बच्चों को पसंद है। और हम नानी को बंगाल टाइगर बोलते थे क्योंकि हमारी नानी किसी से भी डरती नहीं थी। बंदर को भगाना हो, चिड़िया पकड़नी हो, चिड़िया को पकड़कर उस पर कलर लगा देती थी। हम लोग भी नानी के यहाँ जाने पर आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते, और जब माली आता तो छोटा पेड़ होने के कारण हम पेड़ से कूद जाते। कभी कभी तो चोट भी लगती थी। और बहुत सारे खेल थे, कागज पर चोर पुलिस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, कच्चे गिट्टे बहुत खेलते थे। हार जाने पर कच्चे और गिट्टे फेंक भी देते थे। तो बचपन को असल में इन्होंने याद कर लिया। हमारे एक और साथी कहने कि बचपन में हम चक्का चलाते थे और रेडियो जब बजता था तो ऐसा महसूस होता था कि इसके भीतर बैठे बैठे लोग बोल रहे हैं। और हमें आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे एक और साथी बता रहे कि गर्मियों का मतलब फ्रिज में रखी ठंडी ठंडी पेय पदार्थ, मिट्टी के घड़े का पानी, ढेर सारे रसीले आम, रात में छत पर पानी पानी छिड़क कर बिस्तर लगाना और तारों को गिनते हुए सो जाना। ये सुकून आज के एयर कंडीशन में भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने जिक्र किया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पूरा मोहल्ला ही हमारा मैदान होता था। और हम दोस्त के घर का दरवाजा हर दोस्त के घर का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला रहता। बचपन की यादें वाकई किसी मीठे नरम फाहे की तरह है, और जो जिंदगी की भागदौड़ में हमें थोड़ी ठंडक दे जाती है। हमारे एक और साथी बता रहे कि सफर में सबसे मजा आता था। ऐसे तो गार्जियन कुछ नहीं खरीदेंगे, पर ट्रेन में ये डिब्बे में दूध का मलाई, बर्फ, लेमन जूस, ककड़ी, मूंगफली बहुत बेचने वाले आते थे और हम खूब खरीदते थे और खरीदवाते थे, खाते थे। ऐसा तो जरूर होता था। और उन्हें भी मन कर जाता था ना लंबे सफर में कुछ खाने का। हालांकि हमने आपसे पूछा था कि नानी पर दो गाने हमारे पास हैं, तो नानी की नाव चलाएं या नानी की मोरनी की बात होगी, ये हमने आपसे पूछा था। हमारे साथियों ने क्या कहा ये तो हमने देख ही लिया, लेकिन हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत। बताइए किस फिल्म का है।
1: नाव चली नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, आओ चली भागो चली जागो चली, आओ आओ आओ, आओ, आओ। ये कैसे चले लाओ पैसे चले, आहा, खड़े हो जाओ, तीन तीन की लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, सब खड़े, ला ला ला ला ला, लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में, तुम भी खड़ी हो जाओ, जा जा जा जा उधर लाइन में, हाँ तुम भी आओ ना।
2: मेरे पास पैसा नहीं है।
1: पैसे नहीं है तो ये लो, लाओ पैसे और लाइन में खड़ी हो जाओ, जाओ पहले वो तीन, फिर तीन, फिर दूसरे तीन, तुम भी आओ, पहले लाइन में चले आओ। अब शुरू करते हैं, एक दो।
3: नाव चली नानी की नाव चली, मीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे, सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए।
2: क्या डाले गए?
3: एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की नाल, एक धीवर का जाल, एक लहसुन ने कालू, एक तोता, एक भालू, एक डोरा, एक दी, एक बोरा, एक बोरी, एक डंडा, एक झंडा, एक हंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर एक मगर ने पीछा किया, नानी की नाव का पीछा किया, नीना की नानी की नाव का पीछा किया।
2: क्या हुआ?
3: चुपके से पीछे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया, एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक अंडा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक घीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक दीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक बंदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक झड़ी, एक घड़ी।
2: मगर नानी क्या कर रही थी?
3: नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी, नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी, नानी की नींद थी इतनी गहरी, इतनी गहरी।
2: कितनी गहरी?
4: नदिया से गहरी दिन दोपहरी रात की रानी ठंडा पानी गरम मसाला पेट में ताला साढ़े सोलह पंद्रह पंद्रह दूना तीस तीया पैतालीस चौके सात पना पचहत्तर छक्के नब्बे साथी पिछला आठी बीस नंबर पच्चीस।

0: गले में रस्ता।
1: आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अशोक कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, बसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रही हैं कि मेरा ननिहाल तो लोकल ही था, पर मेरी तीन बुआ बाहर रह करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सब बच्चों सहित आते थे। तब हम लोग चिट्ठी लिखकर पता करते थे कि कब वे आ रहे हैं। खूब प्लानिंग करते थे। मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे। सुबह सब मिलकर मॉर्निंग वॉक पर जाते। एक घर के सहायक थे, हम लोगों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी वकील थे और कोर्ट में भी 2 महीने की छुट्टी होती थी। उनका ऑफिस भी खाली रहता था जो घर के पास ही था। दिन में बाहर धूप होने के कारण सब वहीं इकट्ठा होते थे। फिर खूब धमाक चौकड़ी मचती थी। लड़ते भिड़ते रोते हंसते सब अपने अपनी समस्या का समाधान कर लेते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। वाकई वो दिन बहुत याद आते हैं। जब छोटे रहते हैं तो कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचते नहीं हैं। अभी लड़ाई होती है और अभी मिल जाते हैं और अपने मन में कोई बातें इस तरह से नहीं पालते। हालांकि हमने नानी के बारे में जब पूछा कि कौन सा गीत सुनाया जाए तो दोनों ही गीतों की फरमाइश आई और कहा गया कि वे दोनों ही गीत सुनने चाहिए। आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुना। सही जवाब हमारे साथी ने दिया और हमारे साथी कह रहे हैं कि बात तो समय की है, जब हम अपने दोस्तों को घर से बाहर खेलने के लिए बुलाया करते थे उसके भी कोड वर्ड हुआ करते थे। सीटी बजाना, कोयल की आवाज, टक टक की आवाज निकालना आदि। वो सब आवाज मेरे अंदर बैठी है, बैठा मेरा दोस्त सुन लिया करते थे और तुरंत बाहर खेलने आ जाया करते थे। तो इस तरह से होता था ये काम कि किस तरह से, क्योंकि घर से बाहर निकलने की मनाही होती थी धूप में। हाँ, हालांकि नानी की इतनी बातें हो रही हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों ही गीत आपको सुनवा दिया जाए। तो ये सुनवा रहे हैं दूसरा गीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। और इसी नाम से एक और फिल्म बनी, उसमें भी बच्चों का एक गीत है। अगर आप वो भी बता सकें तो क्या ही अच्छा होगा।

ये गीत आप सुन रहे थे रानू मुखर्जी की आवाज में। और हमने ये पढ़ा, हमारे साथियों ने कमेंट किया हुआ था कि भाई नानी का एक गीत तो सुनवा दिया लेकिन दूसरा गीत आपने नहीं सुनवाया। और हमारे बहुत से साथी तो रूठने का प्लान बना रहे थे लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनका प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि छुट्टियों में नानी की बातें दो बार ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वही हमारे साथी ने बहुत साथी बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे गीतों की फरमाइश भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्योंकि शब्द जो हों उनसे आधारित गीत ही हम सुनवा सकते हैं। हमारे एक और साथी ने बताया कि परिवार की बात चल रही है तो भाभी जी को ट्रेन से बुलवा लीजिए और मामा जी को रॉकेट पर घूमने चलते हैं। भाई दोनों काम करेंगे तो नानी जी के घर पे कौन रहेगा, तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम में हम बता रहे हैं कि हमारी एक साथी कह रही है कि आज जीवन का संध्या समय सुनहरे बचपन की मासूम अलहड़ बातें याद करने से सुखमय हो जाता है। प्रदूषण रहित सृष्टि का सानिध्य, नदी में नहाना, मछलियां देखना, नीम के पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना, अलग अलग तरह के पशु पक्षी देखना, विशाल वटवृक्ष की छाया में नानी के हाथ का घर का बना मक्खन और रोटी का नाश्ता, अमराई के आम खाते खाते सभी रिश्तेदार भाई बहनों के मेले में छुट्टियां कैसे गुजर जाया करती थी पता ही नहीं चलता था। वाकई वो दिन किस तरह से गुजरते थे हमें पता नहीं चलता था, शायद इस वजह से भी गर्मियों की जो छुट्टियां हुआ करती थी वो बड़ी छोटी लगती थी। हमारे साथियों ने बताया कि एक दूसरा जो मासूम फिल्म है वो भी है, लेकिन हमारे साथी थोड़ा ज्यादा दोनों मतलब उन्होंने गीत पसंद किए क्योंकि मासूम नाम से तो तीन फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि मासूम में लकड़ी की काठी वाला गीत है। और एक और साथी ने बताया छोटा बच्चा जान के कोई ना आंख दिखाना रे, ये भी मासूम फिल्म का ही गीत है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कांच का कंचा, माचिस की अलग अलग छाप वाली, लोहे का पहिए को सरिये से चलाना, हाथों में चलने वाली तार की दो पहियों वाली से जुड़ा हुआ ऊपर तक छोटा स्ट्रिंग वाली हाथों से चलाकर तार की गाड़ी मैंने अपने हाथ से बनाई थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आशीर्वाद फिल्म का गीत आपने सुनाया, बिल्कुल सही आपने बताया, और इसके बाद मासूम फिल्म का गीत भी हम सुन चुके हैं। हमारे एक और साथी बताया कि घर में ही खेलने के लिए अंताक्षरी, लूडो, चोर सिपाही, वजीर बादशाह, कैरम, 3-2-5 आदि खेलों से नाना नानी, मामा मामी, मौसी सभी दिल बहला लेते थे। शाम को 4 बजने की प्रतीक्षा रहती थी। एक और साथी कहने कि नानी की डांट तो नहीं पड़ी पर उनका वो 54, 58 और 1 रुपए वाला बड़ा याद आता है कि जाओ कुछ लेकर खाना, और वो फ्रॉक के लिए उनका कपड़ा लेकर आना, अच्छी तरह से सिलवाना मम्मी से। दादी भी नहीं डांटती थी, प्यार ही ज्यादा पाया। हाँ कभी कभी हम गीले पोछे पर चलते और भाई बहन लड़ते तो जरूर कोई ना कोई पीटता। दोनों ने डांट तो नहीं खाई, सीधा पिटाई खाई है, लेकिन काम भी कुछ ऐसा ही रहा है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बस हम कर सकते हैं एक काम कि कुछ खेलों को याद कर लें। चलिए सुनाते हैं आपको ये खेल से जुड़ा गीत। हमें बताइए कि किसने लिखा है ये गीत और किस फिल्म से हमने लिया।

ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं, नहीं लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लें। देखिए, इस गीत में कई बार ये कहा गया कि अच्छी तरह से किया नहीं गया, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं तो अच्छी तरह से आंख बंद नहीं की और चुपचाप देख लिया गया, वहीं जब उसे ढूंढ लिया जाता है तो भी कहा जा रहा है कि हम इस बात को नहीं मानते। तो इस तरह का खेल में कौन किया करता था? कि आप में से कोई ऐसा है जो ये किया करता था, खेल में एक बार पकड़े जाने के बाद कहता था कि हम नहीं मान रहे या हम नहीं खेल रहे, और इस तरह से रूठ जाता था, या घर के बड़ों को बुला के ले आता था कि भाई देखिए ये हमारे साथ इस तरह का काम करे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। तो क्या आप ऐसा करते थे, थोड़ी बड़ी बेईमानी करते थे खेल में? हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारे मामा लोगों ने कॉमिक्स बहुत सारी इकट्ठी करके उनको बाइंड करके रखा था, तो दोपहर में तो कहीं निकलने का सवाल ही नहीं था, हम लोग तो बस उसे ही पढ़ते रहते थे। हमारे एक साथी याद कर रहे हैं अपनी नानी को, जो एक पैसों की थैली अपनी कमर में खोंस कर रखती थी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाथ का पंखा भी झला है, पंखे का फ्रेम आता था, उसे हमने क्रोशे से बनाया है। गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल में जब लाइट नहीं थी तो गर्मी लगने पर हम दालान में लगे नीम के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और अपनी हमउम्र मौसियों के साथ बड़े मजे करते थे। हमारे एक साथी ने सत्य घटना बताई कि बरसों पहले रेलवे स्टेशन पर पानी पीने के लिए एक छोटी सी रूप में बड़े मटके और लंबी मिट्टी की पानी का बर्तन, जिसे कोठी गुजरात में कहा करते हैं, कोई बुजुर्ग बैठे मुसाफिरों को गिलास में पानी पिलाते थे, कोई 2-3-5-10 पैसा देते थे, निःशुल्क रेलवे की तरफ से व्यवस्था होती थी। स्टेशन में छोटी आधी गोल टंकी होती थी, ऊपर पानी का नल को दबाकर खड़े खड़े पानी पी सकते थे, तो नल के ऊपर का गोला उसे दबाते थे तो पानी आता था। मैंने बचपन में देखा था, एक बार एक बुजुर्ग दादा पानी पी रहे थे तो उनकी तरफ छिप गई और फिर वो बोल रहे थे कि बस अब नहीं, लेकिन वो पानी बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्हें हमने बताया कि गोला छोड़ेंगे तो पानी रुकता है, तो किसी ने आवाज़ दी, दादा आप नल की वो गोले को छोड़ दीजिए, तभी पानी अपने आप रुक जाएगा। और पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग ऐसे भोले भाले होते थे, ऐसा हमारे साथी ने बताया। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि रात की छत, खुले आसमान के नीचे चारपाइयों पर लेटना, तारों को गिनना, सूरज ढलते ही मैदान आवाज़।

याद हो जाते थे, ना कोई होमवर्क की चिंता, ना सुबह जल्दी उठने का डर, बस गलियों में क्रिकेट, पकड़म पकड़ाई या गिल्ली डंडा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन वो धूप में तपती दोपहरी वाली मस्ती भी एक अलग ही किस्म का सुकून देती है। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि गर्मी की छुट्टी का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, क्योंकि नानी के घर जाते थे, वो भी रेलगाड़ी से। उस पर भी यदि विंडो सीट मिल गई तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती थी, लेकिन भाई बहनों से लड़ाई भी होती थी और फिर बारी बारी से सब बैठते थे। सैर सपाटा, पिकनिक, बाग बगीचा, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया, क्योंकि अब तो स्वरूप भी बदल गया बहुत सारी चीज़ों का। और एक साथी कहती है कि गर्मी की छुट्टी का और रेलगाड़ी का बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम कैसे खुश हो जाते थे कि अब नानी दादी के गांव जाने को मिलेगा। वे दिन सैर सपाटे के थे, अब कहाँ चले गए पता नहीं चला। और हमारे साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में लिखा है कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके लिस्ट में से कितने गीत आज के इस कार्यक्रम में अब तक शामिल हुए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किसकी आवाजें हैं इसमें।

सुजाता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में। हमारे साथी कह रहे कि पहले के समय में फिल्म देखकर जो आते थे उसकी स्टोरी सुनाने का भी तो रिवाज था। हाँ, ये रिवाज तो अब भी बना हुआ है। और हमारे एक और साथी कह रहे कि मेरे गानों की लिस्ट में से 6 गाने बच चुके हैं, किसी की लिस्ट में 4 में से 2 गाने शामिल हो चुके हैं, तो किसी की लिस्ट में से कुछ गाने शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो आगे के गाने आएंगे वो उनकी लिस्ट के गानों में से ही होंगे। हमारे एक साथी कह रहे कि गर्मी की छुट्टियां बचपन की सबसे मीठी यादों का खजाना होती है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती मन में नानी के घर जाने की खुशी उमड़ पड़ती थी। रेलगाड़ी का सफर अपने आप में एक उत्सव सा लगता था। खिड़की से भागते पेड़, खेत, छोटे छोटे स्टेशन और कुल्हड़ वाली चाय आज भी यादों में मुस्कान भर देती है। आज समय बदल गया है लेकिन गर्मी की छुट्टियों के वी मधुर स्मृतियां आज भी मन को ठंडी छांव जैसा सुकून देती है। वहीं हमारे एक साथी ने लिखा है कि आजकल के बच्चे मोबाइल के मिसयूज में लगे रहते हैं, पूरे टाइम

0: में लगे रहते हैं वो तो ये सारी गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इसमें हमारी भी तो कोई गलती है, क्योंकि अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है तो वो तो जो सामने आएगा वही सीखेंगे। वही हमारे एक साथी कह रहे कि जब छोटे थे तब वेकेशन में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे, ट्रेन में सबसे पहले खिड़की वाली सीट को हासिल कर लेते थे, पेड़ को पीछे की ओर जाते देखने में मजा आता था। मन में सवाल ये भी उठता था कि सूरज गाड़ी के साथ क्यों और कैसे आता जाता है। ट्रेन में खाने पीने की चीज लाने वाले सेल्समैन को देखकर लालच भी होता था, पर असली मजा तो घर से लाए हुए थेपले और अचार में ही आती थी। अरे आप जब ट्रेन का सफर करते थे तो क्या लेकर जाते थे अपने साथ खाने के लिए, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको ले चलते हैं ट्रेन के सफर पर। बताइए किस फिल्म का ये गीत है।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दी
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

परिणीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि खेलों में एक बेईमान का होना एक अलग ही मजा देता था। वाद विवाद ना हो तो क्या बचपना। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कई बार बहुत सी मतलब बेईमानी तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बाद में कह दिया करते थे कि उन्होंने झूठ बोला है। तो इस तरह की मासूम बेईमानियां होती थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम लोग घर से चावल, भुजिया, रोटी, आलू की भुजिया, गुजिया, ठेकुआ, चिप्स, बहुत सारा खाना लेके जाते थे, पेपर ले जाते थे, पानी ले जाते थे। भाई जो जाते थे इतनी खुशी होती थी, पर जब वापस आना होता था तो बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, उसके लिए भी तैयारियां होती थी नानी की तरफ से या दादी की तरफ से, जहां भी हम जाते थे। और मन में कुछ टीस की भाव होते थे, क्योंकि अगर गाड़ी हो सवेरे की तो जाना होता था। चलिए सुनते हैं वो गीत, बताइए किस फिल्म का।

लैड साहब फिल्म का ये गीत आपने सुना, और जैसा इसमें कहा गया भी, समय जब होता है तो जाना ही होता है, तो छुट्टियां खत्म होती है तो हम भी लौटते हैं, और कार्यक्रम का वक्त भी हो चुका है तो हमें भी इस कार्यक्रम से लेनी होगी इजाजत। आप सभी बने रहिए विविध भारती के साथ, क्योंकि विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहता है 24 घंटे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 28वीं कड़ी।

महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी जागरण, और इस मुहिम में युवा वर्ग के प्रेरणा स्थान थे शिक्षाविद एवं समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त अश्विनी कुमार दत्त। इस आंदोलन में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अश्विनी कुमार जी के कहने पर कवि हृदय के यज्ञेश्वर नामक एक दुकानदार ने एक अनोखा ही जनजागरण शुरू किया। पहाड़ी शैली में अलग अलग गीत रचकर वे गाया करते थे। गांव गांव घूमकर पूरे बंगाल को वे जागृत करने लगे। अश्विनी कुमार दत्त जी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चारण मुकुंद दास। मुकुंददास गांव गांव जाकर छोटे छोटे गली मोहल्लों में देहात के बीच बनी चौपाल पर, नदियों के घाट पर अपने गीत प्रस्तुत कर इस स्वदेशी आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचा।

थोड़े ही समय में चारण मुकुंद दास बंगाल के एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थीं, उन्हें भी चारण मुकुंद दास की कविताओं ने जागृत किया। स्वदेशी चूड़ियां पहनने का आह्वान करते हुए मुकुंद दास जी कहते हैं।

हे बंगाली स्त्रियों, तुम ये कांच की चूड़ियां कभी इस्तेमाल न करो। तुम सब गृह लक्ष्मी हो, धर्म साक्षी हो, ये सारी दुनिया जानती है। कांच की माया को छोड़ शंख के आभूषण पहनकर सौभाग्य चिन्ह

0: ये वो समय था जब स्वदेशी का प्रचार अपने चरम पर था। मातृ भंडार अर्थात मायेर वस्त्र, इस नाम से स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। मुंबई और कर्णावती में 20 नई कपड़ा मिले तथा 15 स्वदेशी बैंक शुरू किए गए। बंगाल में विदेशी वस्त्रों की बिक्री एक ही साल में 77,000 से घटकर 10,000 पर आ गई।
1: वंदे मातरम की अग्नि ब्रिटिश सरकार महसूस करने लगी। 7 अगस्त को हुई सभा के अवसर पर इस गर्जना का अवतरण हुआ और मात्र 3 महीनों में इस घोषणा ने ब्रिटिश सत्ता के मन में डर पैदा कर दिया। ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र ने लिखा, वंदे मातरम ये शब्द लोकप्रिय हो गए हैं। माता का वंदन, इतना ही उसका अर्थ है, उसमें कोई और भयंकर अर्थ है ही नहीं। फिर इन शब्दों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? यहां पढ़े लिखे लोग एक दूसरे से

0: मिलते हैं, वंदे मातरम कहकर अभिवादन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मुख से निकलने वाले वंदे मातरम शब्दों पर रोक लगाने के लिए सरकार को कितने सिपाही और अधिकारियों की आवश्यकता होगी? बंगाल के सभी लोगों को पूरे हिंदुस्तान की जनता का समर्थन प्राप्त है।
1: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बाहर

0: बंगाल के विभाजन ने केवल बंगाल को ही नहीं पूरे देश को जगा दिया। इस लड़ाई के बहाने भारतीय जनता की एक बार फिर एकजुटता दिखाई दी। हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव कर उनके बीच झगड़ा कराने का ब्रिटिशों का मकसद बहुत सफल नहीं हुआ। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, मौलवी अब्दुल कासिल, अब्दुल हुसैन, दीदार बख्श, लियाकत हुसैन जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेता कर्जन के आह्वान का खोखलापन उजागर करते हुए मुस्लिम समाज से इस आंदोलन में शामिल होने का सार्वजनिक आह्वान कर रहे थे।
1: कर्जन के इस एक कदम से ब्रिटिश सत्ता को जो झटके लगे थे उनसे उबरना ब्रिटिशों के लिए मुश्किल हो रहा था। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। भारत के सेनापति बनकर आए लॉर्ड किचनर के साथ कर्जन के बार बार मतभेद होने लगे। राजनीतिक फैसले लेते समय वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में सेनाधिकारियों का स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार को बताया। लेकिन लंदन की सत्ता किचनर के पक्ष में होने के कारण लॉर्ड कर्जन ने वॉइसरॉय पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरह से यह बंग भंग विरोधी आंदोलन की ही जीत थी।
0: लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो की नियुक्ति हुई, पर उन्होंने भी बंगाल के विभाजन को मान्यता दी। बंगाल में दमन चक्र वैसे ही चलता रहा। दिसंबर 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और वापस भी चले गए। आम जनता के स्तर पर उनका बहुत बड़ा स्वागत नहीं हुआ। 1976 में वंदे मातरम की शताब्दी मनाने की पहल करने वाले वंदे मातरम के अध्ययनकर्ता विश्वनाथ मुखर्जी इन सभी घटनाओं के बारे में लिखते हैं।
2: कांग्रेस का जन्म होने के काफी पहले, जब वंदे मातरम गीत का जन्म नहीं हुआ था, उन दिनों सन 1872 में बंग दर्शन पत्रिका के संपादकीय में बंकिम बाबू ने लिखा था, भारतवर्ष की विभिन्न जातियां जब तक एक मत, एक परामर्श और एकोद्योगी नहीं होंगी, तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं होगी।
1: बंकिम चंद्र जी का यह कथन सच होने जा रहा था। अलग अलग प्रांतों के निवासी एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो रहे थे। वंदे मातरम गीत का कितना प्रभाव पड़ा था, इसका उदाहरण श्री मोतीलाल नेहरू के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने 1905 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखा था।
2: हम ब्रिटिश भारत के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहां लौटने पर भारत को जब तुम गए थे उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे।
1: यह सारा प्रभाव था वंदे मातरम इन दो शब्दों का।
3: आसे तु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी है।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफल।

0: वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 28वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: देश की सुरीली धड़कन थोड़ी देर में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने

0: चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को

0: पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से

0: प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीतों की बहार लिए कार्यक्रम के सदाबहार गीतों में हम आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। आजाद फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे आप सुन सकते हैं गीतों भरी कहानी में श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी जीवन एक सरल रेखा। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बारादरी फिल्म का गीत आपने सुना। खुमार बारा बंकवे ने इसे लिखा, शौकत दहलवी नौशाद नाशाद का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत फिल्म उड़न खटोला की इस गीत में।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कौन सा कार्यक्रम कब आएगा विविध भारती पर, इसके लिए आपको सीआईडी की तरह पड़ताल करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल भी नहीं, आप सुबह और शाम 6:30 से सुन सकते हैं कार्यक्रम विवरण झरोखा के अंतर्गत। सुबह के झरोखा में बताए जाते हैं दिन भर के प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण, वहीं शाम के झरोखा में आप सुन सकते हैं शेष कार्यक्रमों के साथ साथ अगले दिन के सभी मुख्य कार्यक्रमों का विवरण भी। और अब हम दे देते हैं आपको विवरण अगले गीत का, जो है बारिश फिल्म से आशा भोसले और सी रामचंद्र की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, हाँ?

0: चाची,
1: अरे हेलो हेलो हेलो।
2: राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। नाशाद का संगीत, आशा भोसले की आवाज, बड़ा भाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। रोजाना शाम को 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सजते हैं अलग अलग कार्यक्रम के रंग, और आज आप सुन सकते हैं गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस श्रृंखला के अंतर्गत 7:45 से। और इस वक्त सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का की तर्ज है। न्यू दिल्ली फिल्म से सुनिए ये गीत।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सखियों, भावनाएं जब शब्दों का हाथ थामती हैं, तब रिश्तों में अपनापन खिल उठता है। जब दिल बोलता है तो शब्द केवल आवाज नहीं, आत्मा का संगीत बन जाते हैं, है ना? अपने परिजनों से दिल की बात साझा करना मानो बंद खिड़की से ताजी हवा का भीतर आना है। और विविध भारती भी अपना एक भरा पूरा परिवार है, तो आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है मैं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। और इस चिलचिलाती गर्मी में आपके फोन कॉल्स देंगे हमें सुखद एहसास, तो जल्दी से फोन घुमाइए, देखते हैं कौन सी सखी का पहला फोन आता है। और ये बजी घंटी और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सहेली बात कर रही हैं आप?
1: मैं विनीता पाठक बोल रही हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सोनाली जी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: बहुत बहुत बधाई। और पहली बार आपका कॉल लगा है?
1: जी जी जी, पहली बार मेरा कॉल लगा है
0: जी। तो विनीता जी, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पर मैं मिलेट्स से रिलेटेड बेकरी आइटम बनाती हूँ। बेकरी में सभी लोग कुकीज पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम डेली रूटीन में काम आने वाली ब्रेड, पाव, पिज्जा बेस, बर्गर, हम ये बना रहे हैं ताकि जो 3 हजार बच्चे हैं वो अपनी चॉइस का पिज्जा और ये सब खाएं, तो हेल्दी बेस के साथ खाएं, तो हम इस पे काम कर रहे हैं।
0: क्या बात है। मिलेट्स यानी फिर रागी है, ज्वार है, बाजरा है, इनसे बनी बेकरी आइटम्स आप बनाते हैं ना?
1: जी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को चटपटा खाना पसंद होता है, पर हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसमें मैदा होगा या वनस्पति घी होगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पर आप जो इस तरह से मिलेट्स का इस्तेमाल करके बेकरी आइटम बना रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनीता जी, आज 15 तारीख है, 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि परिवार की क्या अहमियत है आपके जीवन में?
1: परिवार सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम आजकल जो छोटी फैमिली हो गई है उसके बहुत सारे लॉसेज हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो हम भाई बहन एक साथ हो गए और हम बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से निकाल ले जाते हैं, और कोई छोटा सा भी पर्व हो उसमें हम लोग सब इकट्ठा होकर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ साथ हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे आपस में मिल के मतलब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, वो वहां तक जा रही है, तो वो लोग भी अब इतना समझ में आने लगा है कि नहीं, फैमिली तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। तो हर खुशी के मौके में बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब साथ होते हैं।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में जो वर्किंग

0: महिलाएं होती हैं, जैसे आप कुछ काम कर रही हैं, तो उस वक्त जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, उस वक्त दादा दादी नाना नानी का उन्हें सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम बाहर हैं तो घर में तो कोई है हमारे बच्चों को संभालने के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत निश्चिंत होके बेफिक्र होके मैं काम पे निकल जाती थी, क्योंकि घर में दादा दादी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, हम लोग सब भी साथ में रहते थे। तो बच्चा कब बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया और इतनी अच्छी परवरिश के साथ बड़ा हुआ, तो वो सभी संभव है जबकि हम परिवार के साथ होते हैं। जी
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। विनीता जी बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये 1973 की एक मूवी है, यादों की बारात। हाँ जी, तो ये मुझे गाना बहुत पसंद है, इसे आशिया जी और मोहम्मद रफी सर ने गाया है और जीनत अमान और विजय अरोड़ा पे फिल्माया है, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो अगर ये सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी विनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: बताइए कौन सहेली बात कर रही हैं?
1: जी, मेरा नाम वर्षा धगट है। जी, मैं वैसे तो मुंबई की हूँ, पर अभी फिलहाल छुट्टियों पर जबलपुर आई हुई हूँ, मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है, यानी आप मायके गई हुई हैं।
1: बिल्कुल सही पहचाना आपने, मायके आई हुई हूँ।
0: यानी मायके का लुत्फ उठा रही है माँ के साथ में, ना?
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अच्छा वर्षा जी, बताइए आपके बारे में बताइए।
1: सोनाली जी, मेरे बारे में बस क्या बताऊं, मैं वैसे एक्ट्रेस हूँ, टीवी टेलीविजन करती हूँ, और हाल ही में मेरी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, और इसके अलावा मैं प्रोफेशनल एंकर भी हूँ, म्यूजिकल शोज होस्ट करती हूँ, और थोड़ी सिंगिंग भी कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 15 मई है, आज परिवार दिवस है, तो मैं वर्षा जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि परिवार की आपके जीवन में क्या अहमियत है?
1: सवाल वाकई बहुत अच्छा सवाल किया सोनाली जी आपने। और परिवार की अहमियत, मेरे ख्याल से परिवार के बिना तो हर कोई अधूरा है, और शादी जैसे ही होती है और हमारी एक अलग दुनिया बस जाती है, और परिवार हमारे ख्याल से हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, और परिवार के लिए मेरे ख्याल से हर स्त्री अपना पूरा जीवन दे देती है।
0: चाहे फिर वो ससुराल हो या मायका हो, है ना?
1: बिल्कुल, ससुराल वालों के साथ भी रहते हुए और मायके वालों के साथ भी, वो दोनों ही तरफ बड़े अच्छे से एडजस्ट करती है।
0: और
1: ये हर
0: सचमुच
1: महिला, मेरे ख्याल से भारत की हर महिला का यही किरदार होता है। जी
0: और परिवार का अगर हमें साथ मिलता है ना, तो
1: जी
0: हम यानी हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं होता है कि अरे हमारा क्या होगा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई तो है ना?
1: ये आपने 100% सही बात कही कि जैसे हम अपने लेडीज जो भी कर पाती हैं, जैसे शायद आप ये जॉब कर पा रही हैं, ये भी आपके परिवार की स्वेच्छा से ही आप और उनके मोटिवेशन से ही शायद आप इधर तक पहुंची। एम आई राइट?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, उनके बिना ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि उनके सपोर्ट के बिना हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत संबल
1: जी
0: मिलता
1: जी
0: है जब परिवार का साथ होता है हमें।
1: बिल्कुल, हर महिला को खासतौर पर पति का सपोर्ट मिल जाए तो पत्नियां बहुत कुछ कर सकती है।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, और आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग प्रेरित भी होंगे कि अगर हम अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो हमारी महिलाएं भी, हमारे घर की जो परिवार की महिलाएं हैं, वो बहुत आगे बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली जी आपने। जी
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और वर्षा जी बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, पसंद के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई वैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई वैर नहीं।
1: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक अंतराल।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: हेलो सहेली, हेलो सहेली,
4: हेलो सहेली,
3: क्या नाम है सहेली जी आपका?
4: प्रगति मुड़े।
3: प्रगति मुड़े जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
4: नांदेड़ से
3: फोन लगाया। प्रगति जी, आपके बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
4: मैं घर पे हूँ अभी,
3: हाउस वाइफ हूँ। मैं हाउस वाइफ को प्रगति जी हाउस क्वीन कहूंगी, है ना, क्योंकि वे घर परिवार की जिम्मेदारी कितनी खूबसूरती के साथ निभाती हैं। आपके कारण घर के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आते हैं तो सुकून की सांस लेते हैं कि देखिए कोई तो है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और आज है परिवार दिवस, तो प्रगति जी आपके जहन में परिवार की क्या महत्ता है, यानी आपके लिए परिवार का कितना महत्व है आपके जीवन में?
4: परिवार का महत्व तो बहुत रहता है, परिवार के बिना तो कुछ नहीं होता।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि परिवार अगर साथ है तो हम महिलाएं हर काम बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
4: मैं काम चोर लगाई थे।
3: बहुत सुंदर गाना है। और विविध भारती सुनती हैं आप? कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
4: मैं तो न्यूज सुनती हूँ, न्यूज चैनल।
3: अरे वाह। और सखी सहेली सुनती है?
4: सखी सहेली सुनती हूँ।
3: और हेलो सहेली भी सुनती है?
4: और हेलो सहेली।
3: बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो चलिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सहेली बात कर रही है?
1: मैं साक्षी खिरवड़कर बोल रही हूँ
0: साक्षी जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी। मैंने भोपाल से फोन लगाया है, मध्य प्रदेश
0: साक्षी जी, जरा अपने बारे में बताइए।
1: जी। मैं गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ अच्छे से और बस अपने आप में खुश रहती हूँ, बढ़िया रहती हूँ,
0: क्या बात है, बहुत
1: अपने लिए
0: अच्छी
1: समय
0: बात।
1: निकालती हूँ बहुत अच्छे से।
0: साक्षी जी, आज है परिवार दिवस, 15 मई को हम परिवार दिवस मनाते हैं, तो मैं
1: जी।
0: आपसे जानना चाहूंगी कि परिवार का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: परिवार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। परिवार है तो हम सुरक्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, उनके बिना तो फिर कुछ है ही नहीं, उन्हीं
0: जी
1: के आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है। बहुत
0: जी
1: महत्व है सभी के लिए। जी
0: सचमुच, यानी परिवार ही हमारे जीवन का आधार है ना।
1: जी
0: और हम
1: बिल्कुल
0: महिलाओं को खासकर बहुत संबल मिलता है जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना।
1: जी, बहुत
0: और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: जी बिल्कुल, शुरू से सुनती हूँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है
0: कौन सा कार्यक्रम आपको पसंद है?
1: मुझे। हेलो सहेली, सखी सहेली, बहुत अच्छा लगता है सुनना।
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ लग जा गले।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है,
1: जी
0: तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
3: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना
3: RBI कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: क्या नाम है आपका?
1: अंबिका विजय मारवाड़ी,
0: जी कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: शिरपुर से,
0: शिरपुर से फोन लगाए।
1: शिरपुर जैन।
0: जी
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं चलाती।
0: मेस चलाती हैं, क्या बात है, बहुत
1: हाँ
0: अच्छी बात है।
1: हाँ
0: ये तो
1: हाँ
0: बहुत अच्छी बात है कि आपके कारण कितने सारे लोग जो हैं उन्हें पेट भर खाना मिलता है ना। जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपको बहुत खुशी मिलती है जब कोई आपके।
1: हाँ, खुशी मिलती। खाने को आते जाते वो अच्छा खाना बनाए बोलते, कभी कम ज्यादा हो जाता।
0: और सचमुच जब कोई हमारे खाने की तारीफ करता है ना तो हमारी जो थकान है ना वो छूमंतर हो जाती है ना।
1: हाँ, खाने के तो अच्छे से अपनी थकान जाती, सब अच्छे बोलते खाने का।
0: हाँ, यानी अगर किसी ने तारीफ कर दी कि अरे कितना अच्छा खाना बनाया तो हम सचमुच खुश हो जाते हैं और हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं
1: खुश हो
0: लगता कि
1: जाते,
0: मैं इतनी थक गई थी, है ना।
1: मेहनत मेहनत पे फल मिलता, ऐसा हो जाता।
0: हाँ बिल्कुल, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। और रेडियो सुनती हैं आप? कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? हेलो
1: तो हेलो फरमाइश,
0: फरमाइश।
1: गाने सुनते हो? क्यों रहता रेडियो है दिन
0: दिन भर रेडियो चालू
1: भर?
0: रहता है। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: अनाड़ी पिक्चर, मतलब
0: अनाड़ी फिल्म का कौन सा गीत?
1: फूलों का चेहरा।
0: ओके, अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में लेते हैं एक अंतराल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: क्या नाम है आपका?
2: राजबाई, राजबाई धाकड़।
1: राजबाई धाकड़, कहाँ से फोन लगाया आपने?
2: बड़े गांव से।
1: बड़े गांव?
2: गुना जिले।
1: जी, तो क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
2: अपन घर के काम करती हैं, गेहूं बोते हैं, धना बोते हैं, चना बोते हैं।
1: क्या बात है,
2: खेती बाड़ी काम करे हैं अपन।
1: बहुत अच्छी बात है, जो किसान बड़ी मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, फसल उगाते हैं, तभी तो सारे लोगों को इतने सारे अनाज मिलते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं।
2: तीन बहने हैं, तीन बच्ची है अपने और दो बच्चा है, पांच बहन भाई है।
1: क्या बात है, सचमुच यानी परिवार के साथ रह के अच्छा लगता है ना?
2: अच्छा लगे, देवर है, देरानी है, देवर के मोड़ा मोड़ी है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें सुन के। और रेडियो सुनती हैं कि नहीं आप?
2: हाँ, रेडियो सुनती हैं।
1: अच्छा लगता है रेडियो सुनना?
2: बहुत अच्छे लगे हैं।
1: और बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आपके पसंद का?
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो बड़ी दो बड़ी।
1: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। और विविध भारती हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम सुनंदा है।
0: सुनंदा जी, कहाँ से फोन लगाया?
1: हम यवतमाल महाराष्ट्र से है।
0: यवतमाल से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए सुनंदा जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं तो घर में रहती हूँ मैडम, खाना बनाती।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। घर में रहना यानी बहुत सी आम जो महिलाएं होती है ना, गृहणियां होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हम तो घर में रहते, पर घर में रह के भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आपके बदौलत आपके परिवार के लोग जो है ना, आराम से बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं। घर में आने के बाद उन्हें एक सुकून का एहसास होता है कि चलो घर में कोई तो है हमारा ख्याल रखने के लिए, है ना। और रेडियो सुनना पसंद है आपको?
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: कौन सा कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हमको सच्ची सहेली है, बहुत सारे कार्यक्रम पसंद है।
0: अच्छा, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम वो आपके ऐसे नाते का गीत सुनना चाहते हैं मैडम। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, बहुत सुंदर गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए।
1: लक्ष्मी विलास भोले।
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: खामगांव से।
0: खामगांव से लगा, खामगांव महाराष्ट्र से फोन लगाया। अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: कुछ नहीं करती, घर घर का काम सिंपल।
0: घर का काम करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप कहती है कुछ नहीं करती, ये सब कुछ करती हैं आप। आपकी बदौलत ही जो ना घर वाले खुश रहते हैं ना, कि वे लोग खुश है कि चलो कोई तो है घर संभालने वाला, ताकि हम जब बाहर से घर आए तो हमें कितना अच्छा लगता है। घर साफ सुथरा होता है, खाना बना होता है ना, सारे काम किए होते हैं। तो हमें, हम गृहिणियों को

0: कुछ रहना चाहिए या कहना चाहिए कि
1: जी
0: हाँ हम हाउस
1: हाँ,
0: क्वीन है घर की, है ना। और खुद के लिए जीती हैं आप, कभी खुद की खुशी का काम करती हैं आप, यानी खुद के लिए। जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अरे हमारी पसंद का काम हम कर ही नहीं पाते, तो आप करती हैं अपनी पसंद का कोई काम?
1: नहीं वो तो टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही दिन में बच्चे का करते करते टाइम हो जाता है।
0: टाइम निकालना जरूरी है।
1: खेत में जाना पड़ता।
0: खेत में जाना पड़ता है, वो सब ठीक है, पर आप अपने लिए वक्त निकालिए। आपको जो काम अच्छा लगता है, जैसे कि अपनी पसंद का खाना बनाना या फिर गाना सुनना, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम आपके कौन मतलब माई माई गाना है।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म का माए ने माए मुंडेर पे तेरी, बहुत अच्छा गाना आपने
1: हाँ
0: चुना है, तो सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: हम रेखा मुखर्जी वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद छाटुई से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, बताइए रेखा जी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं जिंदगी में?
1: हम हाउसवाइफ हैं और रेडियो का गाना सुन

0: हैं, प्रोग्राम जितना होता है सुनते हैं, जो हेलो साहिल है वो भी सुनते हैं, लाइव फोन में सुबह सकाल में फोन में बात करते हैं रेडियो में, आकाशवाणी मुर्शिदाबाद में हम मैसेज भेजते हैं, गीतांजलि में लिखा भेजते हैं, शांति निकेतन में भी भेजते हैं और मुर्शिदाबाद में भी लिखा भेजते हैं, हम पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं और घर का काम लपेट लेते हैं, गान सुनते हैं रेडियो का साथ जुड़े रहता है।
1: जी बहुत अच्छा लगा कि आप रेडियो भी सुनती हैं, कविताएं भी लिखती हैं और फिर घर में भी रहती हैं, पूरी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: हाँ, हम चाहे सिलाई सिलाई उलाई भी करते हैं।
1: क्या बात है ना, आप ऑलराउंडर हैं, है ना?
0: हम अकेले सब समेट लेते हैं।
1: ये बात बहुत अच्छी बात है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी रेखा जी, कि खुद के लिए आप जीते हैं कि ऐसे कुछ पल होते हैं जब हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानी कि सारे काम निपटाने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये पल सिर्फ मेरे लिए है, ये एक घंटा मैं मेरे लिए जीना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ करती हैं आप?
0: हाँ करते हैं, एक घंटे के लिए हम सिलाई उलाई करते हैं।
1: और उसमें आपको खुशी मिलती है?
0: खुशी मिलते हैं, हाँ, अपना हाथ से सिलाई करने के बाद हमको खुशी मिलता है।
1: बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम महिलाएं खुश रहती है ना, तो परिवार भी खुश रहता है और पूरा परिवार खिला खिला सा रहता है, सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आप
0: विविध भारती सुनते हैं जी?
1: और आपने पसंद
0: दो महीना से छटपटाया रहे थे, हाँ जी, कब 2 महीना पूरा होगा।
1: अच्छा चलो बहुत खुशी की बात है। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: जसमती मैया तेरे बोले नंद लाला।
1: सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, क्या
1: हेलो सहेली दीदी, मैं सातारा महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: नाम है आपका?
1: मेरा उषा नाइक नाम है दीदी।
0: उषा नाइक सातारा से बात कर रही है जी। बताइए अपने
1: हाँ,
0: बारे में बताइए।
1: सातारा ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला है, अजिंक्य तारा है, प्रतापगढ़ है, खास तालाब है, महाबलेश्वर है जी,
0: जी, सातारा घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।
1: बहुत ही अच्छा जगह है, नटराज
0: जी।
1: मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। आप आइए कभी, शूटिंग भी होती है इधर।
0: जी, हम जरूर आएंगे। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं जिंदगी में?
1: दीदी मैम, तो मैं जॉब में हूँ, मैं साड़ी सेंटर में हूँ, सिटी साड़ी सेंटर में हूँ, मैं जॉब करती हूँ। मैंने आज छुट्टी लिए खास आपके लिए फोन करने के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। और बहुत खुश होंगी ना आज
1: हाँ,
0: कि फोन लग गया है।
1: बहुत ही खुश हूँ, मेरा फोन लग गया। मैं इसके वास्ते आज रूम में घर रही हूँ, चार
0: क्या
1: महीने बाद मेरा फोन लगा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: मैं
0: अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई हमें।
1: जी
0: और आपसे एक सवाल है कि आप नौकरी भी करती हैं, घर भी संभाल

0: निकालती है, तो आप खुद के
1: जी
0: लिए जीती हैं क्या? अगर खुद के लिए जीती हैं तो आपकी पसंदीदा कौन सा काम है जो आपको करने से आपको बहुत खुशी मिलती है?
1: जी मेरा 57 एज है दीदी।
0: अच्छा
1: 57। मैं घर में नहीं रहती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ घर में। मेरा बेटा है, बहू है, जमाई है, सब अपने अपने संसार में व्यस्त है। फिर घर में क्या करने का, इसी वास्ते मैं 10 साल से मैं सेल्समैन का काम करती हूँ।
0: क्या बात है।
1: साड़ी सेंटर में, सिटी साड़ी सेंटर में।
0: यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है, यानी आपका ये मानना है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, है ना?
1: हाँ, और मेरा यही है कि मेरा सभी गाना सुनने में बहुत ही मेरा दिल सोया है। मेरा पूरा दिन आनंद आनंद में ही जाता है
0: जी।
1: 11:30 बजे तक हाँ गाना ही सुनती हूँ मैं रेडियो का।
0: क्या बात है, रेडियो सुनना अपने आप में बहुत खुशी देता है ना, हम खुश हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: प्यारे प्यारे गीत सुन
1: बहुत ही खुश। और मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, और मेरा छोटा सा नोकियो का फोन है, बड़ा भी एंड्रॉइड नहीं है, मेरा छोटा ही है।
0: क्या बात
1: है, काम मेरा चल जाता हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ।
0: ये बात है, नहीं तो देखिए लोग हमेशा परेशान रहते हैं जिंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर सचमुच आपसे सीखने लायक बात है कि छोटा सा फोन है फिर भी आप रेडियो सुन के खुश रहती है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है ना।
1: जरूरी है, बराबर है
0: जी। बताइए कौन सा गीत आप आज सुनना चाहती हैं?
1: दीदी बहुत ही धूप है बाहर, धूप में निकलाना करो रूप की रानी।
0: बहुत प्यारा गीत आपने चुना है, ये गंगाना आप गुनगुना के सुना सकती हैं?
1: धूप में निकलाना करो रूप की रानी, गोला रंग का लानी।

तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह है 400-24662 यानी

0: 4004624662, दूसरा नंबर है 2867-0288 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूलकाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे

जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं, मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी, बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी, यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था, वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

0: स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई।

है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे।

एकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड एक माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थीं, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थीं, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले

2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

91.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के बज चुके हैं 5 और ये वक्त होता है हमारी इवनिंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स का, जिन्हें हम हर शाम 5 बजे से आपके लिए लेकर आते हैं। और आज की शाम की शुरुआत करते हैं युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी से, बस थोड़ी ही देर में।

0: परिस्थितियाँ मुश्किल हो तो क्या, इरादे मजबूत होने चाहिए। राहों में चाहे उतार चढ़ाव हो, कदम कभी रुकने नहीं चाहिए। जब जिंदगी के इम्तिहान आए तो हौसले और ऊंचे होने चाहिए। जीत चाहे देर से मिले, मगर उम्मीद सदा रोशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का आपके और हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मानसी, और मेरे साथ है
1: कशिश।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: तो दोस्तों, आज का दौर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का दौर है। हर घर की रोशनी, हर मशीन की ताकत, हर फैक्ट्री की रफ्तार और हर शहर की चमक, सब कुछ जुड़ा है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री से। और सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हमारे युवा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे युवा और औद्योगिकरण इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की भूमिका के बारे में। जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री भारत के विकास की रीढ़ बन रही है और कैसे युवा इसमें नए अवसर पा रहे हैं और कैसे आने वाला समय पूरी तरह बिजली, ऑटोमेशन और ग्रीन एनर्जी पर आधारित होने वाला है।
1: जी दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। जब किसी देश में छोटे स्तर के कामों की जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनें और आधुनिक तकनीक काम करने लगती है, उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। पहले लोग हाथ से काम करते थे, लेकिन आज मशीनें, रोबोट और बिजली के चलते वाले उपकरण उत्पादन को तेज़ और आसान बना रहे हैं। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, क्योंकि बिना बिजली के कोई उद्योग नहीं चल सकता।
0: इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वह क्षेत्र है जहां बिजली से जुड़े उपकरण बनाए जाते हैं, जैसे मोटर, ट्रांसफॉर्मर, वायर और केबल, पंखे, सोलार पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमेशन मशीनें। आज गांव से लेकर महानगर तक हर जगह बिजली आधारित उपकरणों की मांग बढ़ रही है। भारत तेजी से डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिकल सेक्टर युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार का बड़ा माध्यम बन चुका है।
1: जी दोस्तों, आज कई युवा नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कोई सोलर सिस्टम बना रहा है, कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो कोई स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। युवा नई सोच के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया पर्यावरण की चिंता कर रही है, ऐसे में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का महत्व भी बढ़ रहा है।
0: भारत में भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री अब ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है और इसमें युवाओं के लिए अपार अवसर भी है। तो दोस्तों, अक्सर युवा सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या क्या करियर हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। इसमें हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वायरिंग टेक्नीशियन, सोलर पैनल इंस्टॉलर, मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स, ईवी टेक्नीशियन, पावर प्लांट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर। आज सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इनकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
1: बिल्कुल। और

0: आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है। एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्टार्टअप भी भविष्य में बड़ी कंपनी बन सकता है। ज़रूरत है मेहनत की, नई सोच की, तकनीक ज्ञान की और आत्मविश्वास की। याद रखिए, जिस देश के युवा तकनीक से जुड़ते हैं, वही देश भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करते हैं।
1: मेरे युवा साथियों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। नई चीज़ें सीखिए, प्रैक्टिकल काम कीजिए, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कीजिए और अपने सपनों को बड़ा रखिए, क्योंकि आने

के असली नायक है। अगर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे, नई तकनीक सीखें और आत्मनिर्भर बनने का सपना देखें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।

0: जी दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं उन वीरों से जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और अदम्य इच्छा शक्ति से इतिहास रच दिया। आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने दोनों पैर खो देने के बाद भी हार नहीं मानी, जिसने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। यह प्रेरणादायक गाथा है महान सोवियत फाइटर पायलट एलेक्सेई पेट्रोविच मारेसियव की।
1: एलेक्साई मारेसियव का जन्म 20 मई 1916 को रूस के कमीशन नामक शहर में हुआ था, जो वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। उनका बचपन आसान नहीं था। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। बचपन से ही उन्हें आसान और हवाई जहाज़ों से बेहद लगाव था। वे हमेशा एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत की और सोवियत वायुसेना में शामिल हो गए।
0: जी दोस्तों, साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। एलेक्सेई मोरोसिएव सोवियत संघ की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। वे बेहद साहसी फाइटर और पायलट भी थे।
1: उन्होंने कई दुश्मन विमानों को नष्ट किया और अपने अद्भुत कौशल से सबको प्रभावित भी किया। लेकिन साल 1942 में एक मिशन के दौरान उनका विमान दुश्मन की गोलीबारी का शिकार हो गया। विमान घने जंगल में जाकर गिरा। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि उनके दोनों पैर बुरी तरह घायल हो गए। चारों ओर बर्फ, ठंड और जंगल था। ना खाना, ना पानी और ना ही मदद की कोई उम्मीद। ऐसी हालत में कोई भी हार मान सकता था, लेकिन मारे सेव ने नहीं मानी।
0: जी दोस्तों, गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने भी हार नहीं मानी। वे लगभग 18 दिनों तक जंगल में संघर्ष करते रहे, कभी घुटनों में के बल, कभी हाथों के सहारे और कभी रेंगते हुए। उन्होंने भूख, दर्द और ठंड का सामना भी किया। आखिरकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन संक्रमण इतना फैल चुका था कि उनके दोनों पैर कटाने पड़े।
1: अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या बिना पैरों के एक पायलट फिर से उड़ान भर सकता है? ज़्यादातर लोगों का जवाब था नहीं, लेकिन इन्होंने खुद पर विश्वास नहीं खोया। उन्होंने कृत्रिम पैरों के सहारे चलना सीखा, दौड़ना सीखा और फिर से विमान उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी।
0: जी दोस्तों, उन्होंने घंटों अभ्यास किया, कई बार गिरे, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए। उनकी मेहनत रंग लाई। वे दोबारा फाइटर पायलट बने और फिर से युद्ध में शामिल भी हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने दुश्मन के कई और विमान को मार गिराया। उनकी कहानी पूरी दुनिया के लिए साहस और जज्बे की मिसाल है। अलेक्सेई मारेसियव को उनके अद्भुत साहस और देशभक्ति के लिए कई बड़े सम्मान दिए गए। उन्होंने सोवियत संघ का सबसे बड़ा सम्मान हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन प्रदान किया गया। इसके अलावा भी उन्हें कई सैन्य पदक और सम्मान मिले, जैसे ऑर्डर ऑफ लेनिन, ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर, ऑर्डर ऑफ द पेट्रियोटिक वॉर। उनकी वीरता पर लेखक बोरिस पोलेवोय ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ रियल मैन भी लिखी।
1: यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि बाद में इस पर फिल्म और ओपेरा भी बनाए गए। इन्होंने एक से ये एक से सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे हिम्मत आत्म

0: आत्मविश्वास और कभी हार ना मानने वाले की सोच के प्रतीक बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके इरादे में होती है। और 18 मई 2001 को लेकिन उनका साहस और संघर्ष आज भी लोगों के दिल में जीवित था।
1: जी दोस्तों, जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब लोग लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तब एलेक्सेई मोरोसिव की कहानी भी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं डरता बल्कि उन्हें हराकर आगे बढ़ता है।

0: दोस्तों, आज के युवा के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे करियर, जिम्मेदारी, अनुशासन और देश के प्रति कर्तव्य। ऐसे समय में हमें प्रेरणा मिलती है उन महान लोगों से जिन्होंने अपना सपना, पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के महान सैनिक, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ और देश के गौरव फील्ड मार्शल KM करियप्पा के जीवन के बारे में।
1: जी दोस्तों, उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा बल्कि भारतीय सेना को नई पहचान भी दी है। उनका जीवन युवा को अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। KM करियप्पा का पूरा नाम था कोंडेरा मदप्पा करियप्पा। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में हुआ था। बचपन से ही वे अनुशासन प्रिय, मेहनती और साहसी थे।
0: उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारतीयों को सेना में ऊंचे पद आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन करियप्पा जी ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सेना में जाने के लिए फैसला किया। यह फैसला सिर्फ नौकरी के लिए नहीं था बल्कि देश के सेवा के लिए था।
1: जी दोस्तों, उस दौर में भारतीय युवाओं के लिए सेना में अधिकारी बनना बहुत कठिन होता था, लेकिन KM करियप्पा उस शुरुआती भारतीय अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन मिला। उनकी मेहनत, नेतृत्व, क्षमता और ईमानदारी ने जल्द ही उन्हें अलग पहचान दिलाई। वे हर काम पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ भी करते थे।
0: उनका मानना था कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन और देश प्रेम होता है। भारत की आज़ादी से पहले भारतीय सेना पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। भारतीय अधिकारियों को कम महत्व दिया जाता था, लेकिन करियप्पा जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी योग्यता में यह साबित किया कि भारतीय किसी से कम नहीं। धीरे धीरे वे सेना के महत्वपूर्ण पदों तक पहुँचे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व की चर्चा पूरे सैन्य क्षेत्र में होने लगी।
1: जी दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ देश के सामने कई चुनौतियां थीं। देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए और सीमाएं पर तनाव बढ़ गया। ऐसे कठिन समय में भारतीय सेना को मजबूत नेतृत्व की भी ज़रूरत थी। तब KM करियप्पा ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। 1949 में वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था।
0: दोस्तों, KM करियप्पा ने भारतीय सेना को एक नई दिशा दी। उन्होंने सेना में अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति को सबसे ऊपर रखा। उनका मानना था कि धर्म, जाति और भाषा से पहले हम भारतीय हैं। उन्होंने सेना को राजनीति से दूर रखने पर भी जोर दिया। आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में गिनी जाती है और इसकी मजबूत नींव रखने वाले में करियप्पा जी का नाम सबसे ऊपर आता है।
1: दोस्तों, भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय करियप्पा जी ने सेना का मनोबल मजबूत रखा। वे हमेशा सैनिकों को का उत्साह बढ़ाते थे। वे कहते थे, देश की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनका नेतृत्व इतना प्रभावशाली था कि सैनिक उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वे सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी थे।
0: तो दोस्तों, भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद बहुत सम्मानित माना जाता था। KM करियप्पा को उनकी महान सेवाओं के लिए यह सम्मान दिया गया। वे भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व की बात थी। तो आज हमने जाना भारत के महान सैनिक और प्रेरणादायक व्यक्ति फील्ड मार्शल KM करियप्पा के जीवन के बारे में।
1: जी दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे न्यू रिलीजेस की, कि आपका जो ये वीकेंड है ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, सबसे पहली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वधला। तेलुगु थ्रिलर फिल्म है जो कि 14 मई यानी कल के दिन सिनेमाघर में दस्तक दे चुकी है। फिल्म में जगपति बाबू, लाया और रशिका श्रीनिवास अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी एक स्टूडेंट पर बेस्ड है जिसे एक डॉक्टर से जुनूनी लगाव हो जाता है। और इसी के साथ दूसरी है

0: करियप्पू, साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म करियप्पू भी 14 मई यानी कल के दिन ही रिलीज हो चुकी है। सूर्या और त्रिशा कृष्णन और आरजे बालाजी की इस तमिल फिल्म का निर्देशन आरजे बालाजी ने ही किया है। फिल्म आपका दिल जीत लेगी।
1: अब बात करते हैं आयुष्मान खुराना की। पति पत्नी और वो दो कल यानी 15 मई को थिएटर में धमाल मचाने आ रही है। फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह अहम रोल में नज़र आने वाली है। 2019 में आई फिल्म का रिवर्चुअल का ये सीक्वल है।
0: जी दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल, संजय दत्त, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, अमित साध और नीतू चंद्रा स्टार फिल्म आखिरी सवाल, जो कि 15 मई मतलब आज ही के दिन सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है। इस फिल्म को अभिजीत मोहन वरंग ने डायरेक्ट भी किया है। और अगर आप पंजाबी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो शेरा आपके लिए परफेक्ट फिल्म हो सकती है। सेवियो संधू के निर्देशन में बनी शेरा एक अपकमिंग पंजाबी एक्शन ड्रामा फिल्म है। परमीश वर्मा के अभिनय के सजी यह एक्शन ड्रामा आज ही के दिन सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म में पावर, वफादारी और हिम्मत की कहानी भी दिखाई गई है।

0: आज जन्मदिन है। उनकी मुस्कान, उनका अभिनय और उनकी शानदार नृत्य आज भी लोगों के दिलों में बसता है। जी दोस्तों, आज माधुरी दीक्षित का जन्म है 15 मई 1967 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी के बचपन की पढ़ाई में भी अच्छी वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में की पढ़ाई भी की थी, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शानदार डांस और अभिनय। उन्होंने केवल 3 साल की उम्र से कथन सीखना शुरू भी कर दिया था।
1: माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म अबोध से की। शुरुआत में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई साल 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इस फिल्म का गाना 1 2 3 इतना लोकप्रिय हुआ कि माधुरी रातों रात सुपरस्टार बन गई।
0: जी दोस्तों, इसके बाद माधुरी दीक्षित ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दी। उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल है दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में गिनी जाती है। दिल तो पागल है, देवदास, साजन और राजा। माधुरी की खास बात यह थी कि वे हर तरह के किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाती थी, चाहे वो भावुक भूमिका हो, कॉमेडी या फिर रोमांस।
1: माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसरों में गिना जाता था। उनके डांस नंबर आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, जैसे धक धक करने लगा, चोली के पीछे, मार डाला, दीदी तेरा देवर दीवाना। उनकी अदाएं, एक्सप्रेशन और कथन की खूबसूरती ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से भी अलग बनाया।
0: जी दोस्तों, इसके अलावा वे कई टीवी डांस शो में जज भी रह चुकी है और आज भी नई पीढ़ी के कलाकार उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और बात करें उनके व्यक्तित्व जीवन की, तो माधुरी दीक्षित ने साल 1999 में डॉक्टर श्रीराम नैने से शादी भी करी थी। कुछ समय तक वे अमेरिका में रही, लेकिन बाद में फिर भारत लौट आई और फिल्मों व टीवी में सक्रिय भी हो चुकी है। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक चमकती पहचान है, और उन्होंने अपने मेहनत और अनुशासन और प्रतिभा से यह साबित भी किया कि असली सफलता वही है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा है। उन्हें कई माधुरी दीक्षित जी को कई शानदार अभिनय के लिए कई बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, जैसे साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। यह भारत का चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है और इसी के साथ वे अपनी मुस्कान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है और वे सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय है।

0: तो दोस्तों, किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे समाज का आईना होती है। और कुछ लेखक केवल ऐसे होते हैं जिनकी लेखनी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे ओडिशा साहित्य के महान लेखक, कवि, उपन्यासकार और समाज सुधारक कालिनी चरण पणिग्रही के जीवन और उनके योगदान के बारे में। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज, संस्कृति, युवाओं और मानवता की भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है।
1: जी दोस्तों, कालिंदी चरण पाणिग्रही का जन्म 2 जुलाई 1901 को ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य, कविता और समाज के प्रति गहरी रुचि थी। वे बहुत संवेदनशील और विचारशील व्यक्तित्व के थे। उनके अंदर देश प्रेम और समाज सुधार की भावना बचपन से ही दिखाई देती थी। उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था और इसका प्रभाव उनके विचारों पर भी पड़ा।
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। वे सिर्फ लेखक नहीं थे, बल्कि समाज की समस्याओं को समझने वाले चिंतक भी थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक जैसी कई विधाओं में लेखन किया। उनकी रचनाओं में गांव का जीवन, समाज की समस्याएं, मानवता, प्रेम, संघर्ष और भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देती है।
1: कालिंदी चरण पाणिग्रही उड़ीसा के प्रसिद्ध सबुजा आंदोलन से जुड़े थे। यह एक साहित्यिक आंदोलन था जिसमें युवा लेखक नई सोच, नए विचारों के साथ साहित्य को आगे बढ़ा रहे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य था समाज में नई चेतना लाना, युवाओं को जागरूक करना और साहित्य को आम लोगों से जोड़ना। कालिंदी जी इस

0: आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे।
1: कालिंदी चरण पाणिग्राही की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मातिरा मनीषा। यह उपन्यास गांव, परिवार और मानवीय रिश्तों की कहानी को बहुत ही भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन की सच्चाइयों को भी सामने लाती है। उनकी भाषा सरल और दिल को छू लेने वाली थी। यही कारण है कि आज भी उनके साहित्य को बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाता है।
0: जी दोस्तों, कालिंदी जी सिर्फ साहित्यकार नहीं थे बल्कि देशभक्त भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को अपने लेखन में जगह दी। उनका मानना था कि साहित्य समाज को जागरूक करने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने हमेशा सत्य, ईमानदारी और मानवता का संदेश दिया। कालिंदी चरण पाणिग्रही की लेखनी बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली थी। वे कठिन बातों को भी आसान शब्दों में लिखते थे। उनकी रचनाएं पढ़कर ऐसा लगता था जैसे कोई अपने दिल की बात कह रहा हो। यही कारण है कि उनकी किताबें युवाओं और साहित्य प्रेमियों के बीच आज भी लोकप्रिय है। जी दोस्तों, इन्हीं के लिए उन्हें पद्म भूषण 1971 में मिला था। महान लेखक कभी सिर्फ किताबें नहीं लिखते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता भी बनाते हैं।
1: कालिंदी चरण पाणिग्राही ने अब भी अपने शब्दों से समाज को नई सोच, नई दिशा और नई चेतना दी। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तब युवाओं के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपनी संस्कृति, साहित्य और मानवीय मूल्यों से जुड़े रहें, क्योंकि तकनीक हमें तेज बना सकती है।
0: जी दोस्तों, लेकिन साहित्य हमें बेहतर इंसान बनाता है। अगर युवा पढ़ने की आदत अपनाए, अच्छे विचारों को समझे और समाज के लिए सकारात्मक सोच रखे, तो देश का भविष्य और भी उज्जवल बन सकता है। याद रखिएगा, किताबें केवल ज्ञान नहीं देती, वे इंसान को सोचने और समझने की ताकत भी देती है।
1: अब बात करते हैं डॉक्टर येशी धोंडेन की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और इंसानियत का महत्व कई बार पीछे छूट जाता है। ऐसे समय में हमें प्रेरणा मिलती है उन लोगों से जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध तिब्बती चिकित्सक, दयालु व्यक्तित्व और मानव सेवा के प्रतीक येशी धोंडेन के जीवन और उनके योगदान के बारे में। उन्होंने पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा को दुनिया भर में पहचान दिलाई और हजारों लोगों का इलाज कर मानवता की सेवा की।
0: जी, डॉक्टर येशी धोंडेन का जन्म तिब्बत में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में रुचि रखते थे और लोगों की मदद भी करना चाहते थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पारंपरिक तिब्बती चिकित्सा सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा जारी रखी। उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें एक महान चिकित्सक बना दिया। तिब्बती चिकित्सा सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि शरीर, मन और जीवन के संतुलन पर भी ध्यान देती है।
1: येशी धोंडेन ने वर्षों तक इस चिकित्सा पद्धति का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने जड़ी बूटियों, प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली को महत्व को समझा। उनका मानना था स्वस्थ शरीर और शांत मन दोनों जरूरी है। ये दुनिया भर में तब और पहचान मिली जब वे 14 दलाई लामा के निजी चिकित्सक बने।
0: जी दोस्तों, यह बहुत सम्मान की बात थी, लेकिन इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वे बेहद सरल और विनम्र बने रहे। वे हमेशा सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। डॉक्टर येशी धोंडेन के पास दुनिया के कई देशों से लोग इलाज के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे या प्रसिद्धि को महत्व नहीं दिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था इंसान की मदद करना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया के ऐसे खिलाड़ी की जिसने कई बार हार देखी, चोटों का सामना किया, लेकिन कभी हार मानना नहीं सीखा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने साबित किया कि असली जीत केवल ट्रॉफी जीतना नहीं बल्कि मुश्किल समय में खुद को संभाल कर आगे बढ़ना है। जी हाँ युवा साथियों, आज की हमारी खास प्रस्तुति समर्पित है महान टेनिस खिलाड़ी एंडी मुर्रे को।
5: जी दोस्तों, एंडी मुर्रे का जन्म 15 मई 1987 को स्कॉटलैंड के डनब्लेन शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें खेलों में काफ़ी रुचि थी। उनके बड़े भाई जैमी मरे भी टेनिस खिलाड़ी बने। बहुत कम उम्र में ही एंडी ने टेनिस रैकेट पकड़ लिया था, लेकिन उनकी ज़िंदगी केवल खेलों से भरी आसान यात्रा नहीं थी।
4: जब एंडी केवल 9 साल के थे तब उनके स्कूल में एक दर्दनाक घटना हुई थी। उस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी एंडी ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने सपनों को और बढ़ाते रहे। यही बात युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है, मुश्किल हालात इंसान को रोक नहीं सकते अगर उसका इरादा मजबूत हो तो। एंडी मरे ने किशोरावस्था में ही यह तय कर लिया था कि उन्हें प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी बनना है। उन्होंने स्पेन जाकर ट्रेनिंग ली, जहां उन्होंने अपने खेल को और मजबूत बनाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनकी तेज गति, शानदार डिफेंस और शांत दिमाग ने उन्हें अपनी बाकी खिलाड़ियों से अलग बना दिया। टेनिस की इस दुनिया में उस समय रोजर फेडर और नोवाक जोकोविच जैसे महान खिलाड़ी छाए थे हुए थे। इन दिग्गजों के बीच अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन एंडी मरे ने

0: हार नहीं मानी। कई बार एंडी मरे बड़े टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुँचे लेकिन जीत नहीं पाए।
1: जी दोस्तों, लोग आलोचना करते हैं, कुछ लोग ने कहा कि शायद वे कभी ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एंडी ने एक बात साबित की, अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की कोई आलोचना आपको रोक नहीं सकती। साल 2012 में उन्होंने बड़ा इतिहास रचा, उन्होंने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। उस जीत के बाद पूरी दुनिया ने उसकी मेहनत का को सलाम किया। जी दोस्तों, जीवन में मुश्किलें आएगी, लोग आलोचना भी करेंगे, कई बार हार भी मिलेगी, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो मंजिल भी ज़रूर मिलेगी।
0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं शिव चौरसिया की। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े सपने केवल बड़े शहरों या अमीर परिवारों से पूरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी लगन और मेहनत से यह साबित कर देते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता तक पहुंच सकती है। आज हम बात करेंगे भारत के मशहूर गोल्फ खिलाड़ी शिव चौरसिया की, जिन्होंने बेहद साधारण जीवन से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया।
1: जी दोस्तों, शिव चौरसिया का जन्म कोलकाता में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। वे जिस क्लब में गोल्फ खेलते थे वहाँ उनके पिता काम करते थे। बचपन में शिव चौरसिया गेंद उठाने और खिलाड़ियों को देखते देखते गोल्फ सीखने लगे। धीरे धीरे उनका मन इस खेल में इतना लग गया कि उन्होंने गोल्फ को ही अपना सपना बना लिया। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी सुविधा का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि वो अक्सर मिला उसी की शुरुआत की। दोस्तों, गोल्फ ऐसा खेल माना जाता है जिसमें महंगे उपकरण और बड़ी सुविधाओं की ज़रूरत होती है, लेकिन शिव चौरसिया ने सीमित साधनों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अभ्यास किया, कई बार उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहा।
0: उनको अर्जुन अवार्ड 2017 में मिला और उनकी मेहनत और प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि भारत के खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। उन्होंने यह भी दिखाया कि छोटे शहरों और सामान्य परिवार के युवाओं में भी विश्व स्तरीय प्रतिभा होती है। खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को अनुशासित और मजबूत बनाने का माध्यम है।

जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज शेयर मार्केट की। तो निफ्टी 50 की बात करें तो आज 46.10 की गिरावट के साथ 23,643.50 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स आज 160.73 की गिरावट के साथ 75,237.99 पर बंद हुआ और डॉलर की रेट आज 95.74 इंडियन रुपीस है। जी दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय है। मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कम्प्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया

है कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत विजयदशन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है एफएम रेडियो लेक सिटी और श्रोताओं, शाम की 5 बजे का वक्त रहता है हमारी इवनिंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स का, जिन्हें लेकर आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने आपकी रेडियो दोस्त ऋचा पानेरी।

और इस समय बज चुके हैं शाम के 6:05 और ये वक्त होता है फिल्म संगीत का और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत में बहुत ही कुछ खास।

जी हाँ साथियों नमस्कार। आज का जो फिल्म संगीत है वो आधारित है बॉलीवुड की बेहतरीन नायिका जिनका आज जन्मदिन है। उनकी जगमगाती स्माइल के नाम से जिसके जादू से बचना मुश्किल है और उनकी आइकॉनिक स्माइल के साथ ही जगमगाती हैं उनकी दो आंखें जो कर देती हैं लाजवाब। कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज। तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस आइकॉनिक सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा जो हैं माधुरी दीक्षित।

0: एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, फैन की लाडली और घर में सबसे छोटी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई सन 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति उनकी जन्मजात रुझान था, जो कि नन्ही माधुरी जो कि संगीत सुनते ही ठुमकने लगती थी। 3 साल की उम्र में ही जब उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया, तो कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी।

सबसे छोटी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई सन 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति उनकी जन्मजात रुझान था, जो कि नन्ही माधुरी जो कि संगीत सुनते ही ठुमकने लगती थी। 3 साल की उम्र में ही जब उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया तो कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। फिर क्या था, जल्दी ही उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थीं।

दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया करती थी और स्कूल में शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। पर कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। 1984 में जब राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, वो थी अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल। और फिल्म अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल पाया, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं, आवारा बाप 1985 में और स्वाति हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में। 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब।

दोस्तों तेजा फिल्म में ऐसा उनका रोल रहा, ऐसी उनकी भूमिका रही कि तेजाब ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1989 में सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ खूब जमी। इसी साल आई सुभाष घई की एक फिल्म राम लखन, जिसमें अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया।

दोस्तों, वक्त के साथ साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं माधुरी दीक्षित। अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बना दी गई। साथ ही मल्टी स्टारर फिल्म त्रिवेदी की जया माथुर हो, या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव, या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित ने अभिनय की छाप गहरी होती चली गई और माधुरी दीक्षित लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती चली गई। साथ ही 90 के दशक में

माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई एक फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म ने उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया।

दोस्तों, अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गई जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ साथ अकलमंद भी है, आज़ाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज और साजन जैसी फिल्मों में से ने ये साबित कर दिया कि वो परफेक्ट डांसिंग और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

फिर 1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई और इस ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस की क्वीन बन गई थी और फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद भी उनका किया गया हर रोल दर्शकों के दिलों में ताजा रहा। साथ ही कहा जाए तो भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस अफसर गंगा को, या फिर अनजान की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिर मृत्युदंड में केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। फिर 1994 में एक और फिल्म जो माधुरी दीक्षित के नाम रही। 94 में एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले एक और उन्होंने फिल्म की जो सलमान खान के साथ थी। वो फिल्म थी हम आपके हैं कौन। इस फिल्म ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और माधुरी दीक्षित को मिला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 3rd।

सन 1997 जो लेकर आया भावात्मक उथल पुथल से भरी एक ऐसी फिल्म जो प्यार और मोहब्बत से भरी थी। 3 फिल्मफेयर अवार्ड माधुरी दीक्षित के नाम हो चुके थे और ये फिल्म जब आई तो ट्रायों से भरी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर इस फिल्म में दिखाई दिए और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस फिल्म के बाद।

चार फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम करने के बाद माधुरी दीक्षित फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा बन गई जिनकी तारीफ आलोचक भी करते थे। अक्टूबर 1999 माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्री राम माधव नैने के साथ विवाह के बंधन में बंध गईं।

सन 2000 की फिल्म पुकार, जिसका जिक्र आता है प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में, जिसमें की गई उनकी भूमिका जो प्रेम में हारी ईशा दत्त अंजलि के रूप में उनकी बहुत प्रशंसा हुई।

दोस्तों, माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर वर्ग हर उम्र के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। सन 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर एक फिल्म गज कामिनी का निर्माण किया और इस साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें खूब सराहा गया। साथ ही देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का हर जगह एक जबरदस्त क्रेज रहा है। और सन 2002 में उनकी फिल्म आई देवदास, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई और इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी खूब प्रशंसा मिली और माधुरी दीक्षित को मिला फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ये अवार्ड इस अवार्ड से माधुरी को नवाजा गया और माधुरी ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन ही नहीं, शानदार अदाकारा हैं।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

और फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं और वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही पहले पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस बेकरार हो गए और 2007 में उनकी बेकरारी को करार देते हुए फिल्म रिलीज हुई आजा नचले।

फिर सन 2012 में माधुरी दीक्षित वापस लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्क किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए। इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें उन्होंने वुमेन एक्टिविस्ट के रूप में उनके सशक्त अभिनय की भी खूब सराहना हुई। 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आई और इसका नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई और 2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आई। 2009 में रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई और

17 अप्रैल 2019 की फिल्म कलंक में भी उनका अभिनय खूब सराहा गया। फिल्मों में माधुरी दीक्षित की सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में भी रियलिटी डांस शोज किए हैं और साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। श्रोताओं, अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित को उनके जन्मदिन पर रेडियो लेक सिटी की ओर से ढेरों बधाइयां।

दोस्तों, आज के फिल्म संगीत का सफर आपने तय किया ऋचा पानेरी के साथ, और आज का फिल्म संगीत रहा केंद्रित अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के ऊपर, जिनका आज जन्मदिन है। दोस्तों, आपको बता दें, आकाशवाणी कर रहा है 90 साल पूरे। जी हाँ, इस उपलक्ष में, आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में आज एक बहुत ही सुंदर कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है हमारे उदयपुर शहर में, जो बप्पा रावल सभागार अतिथि गृह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है शाम 7:30 बजे से, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह हिरन और डॉक्टर पामेल मोदी, उदयपुर शहर के ये सुंदर गायक कलाकार, सुगम संगीत की गजलों की पेशकश आज वहां प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही सुंदर कॉन्सर्ट होने वाला है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो ठीक शाम 7:30 बजे वहां पहुंच सकते हैं।

एफएमएन 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: लक्ष्य फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीत था।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना,
1: भारतीय सेना गीत। ये अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में। लीजिए जयमाला में अगली पेशकश।

तीसरी मंजिल फिल्म का नाम है मोहम्मद रफी की आवाज में गीत, आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आ गले लग जा फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। कारवा फिल्म से ये गीत, आर डी बर्मन का संगीत।

साथियों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से कार्यक्रम जयमाला में। याराना फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

लहू के दो रंग ये फिल्म का नाम है। किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, बप्पी लहरी का संगीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आज इस कार्यक्रम में सुनिए वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका बुखार।
1: ले ले, नाक बंद करके एकदम पी जा। अरे दवा तो कड़वी हो गई है, तू क्या जाने तेरी बीमारी से हम कितने परेशान हैं। ले बेटा, सड़ाक से पी जा।

0: शाबाश, पीजा पीजा।
1: ओहो माँ, तुम लोग मुझे घर में रहने दोगे भी या नहीं? मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि मुझे ना कभी बुखार था, ना भय, और ना ही कभी भविष्य में होगा। फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए हो।
0: सो तो मैं भी कहूँ बेटा कि बुखार हो तेरे दुश्मनों को।
1: हाँ।
0: पर तू ये काढ़ा तो पी ले मेरे बच्चे, देखियो एक ही खुराक में बुखार आधा रह जाएगा। अरे हर शरण वैद्य जी से दवा लाए हूँ तेरे लिए, कोई अरे गहरे नत्थू खरे की दवा थोड़ी। ले बेटा पी जा।
1: अब चाहे इस दवा को स्वर्गीय धनवंतरी जी ने खुद ही तैयार क्यों ना किया हो, माँ मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। इतनी कड़वी जहर दवा को भला कोई शरीफ आदमी पी सकता है? तुम जरा चक्कर देखो, एक बूंद जिस्म का एक एक रुआ खड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम अशोक नहीं।
0: हाय हाय, बिल्कुल वकीलों की तरह बहस करे तू तो। भगवान मेरे बच्चे को 100 बरस की उम्र देवे, कलेक्टर बनाए इसे। ले बेटा अब तो पी ले इसे, है ही कितना, अरे मुश्किल से मासा दो मासा होगा।
1: तुम भी कमाल करती हो माँ, पूरे पाव भर का ग्लास भरा हुआ इस काढ़े से, और तुम, और फिर चाहे ये रत्ती भरी तो ना हो, मेरे बस का नहीं है इसे पीना।
0: अरे मेरी नहीं तो अपने बाबूजी की परेशानी का तो ख्याल कर। अरे देखो 3 दिन से डॉक्टर बैदों के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं, तू भी तो बिस्तर पर लेटे लेटे परेशान।
1: क्या कहा? मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ? अरे भाई मुझे लेटाया गया है बिस्तर पर जबरदस्ती। हे भगवान, कैसी बुरी घड़ी में मैंने थर्मामीटर मुंह में लगवाया था।
2: इसने फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। अशोक की माँ, बाई दीवे मैं कहता हूँ तुम रोगी से बहस करती क्यों?
1: बाबूजी आप माँ से कुछ भी कहिए लेकिन मुझे रोगी ना कहिए।
2: वाह बरखुरदार वाह, तुम भी अपनी कसम के एक ही हो, 72 घंटों से चारपाई पकड़ी हुई है और
1: मैं इस वक्त सैकड़ों दंड पेल सकता हूँ, 1000 उठक बैठक लगा सकता हूँ, जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, 1 मील तक दौड़ सकता हूँ, और एक सन से कुश्ती लड़कर उसे पछाड़ भी सकता हूँ,
2: लेकिन 3 दिन हो गए एक प्याला काढ़ा भी ना पी सके।
0: हाय हाय, वो बेचारा अभी अभी पीने ही लगा था कि तुमने उसे फिर छेड़ दिया। ले अशोक नाक बंद कर बेटे।
1: मैं कहता हूँ इस काढ़े को पीने से मेरी सांस ही बंद हो जाएगी। बाबूजी आखिर आप लोग मेरे माँ बाप होकर भी क्यों नहीं समझते?
2: देखो अशोक, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो।
1: मैं
2: भाई दीदी, तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपने इकलौते बच्चे को बीमार देखकर माँ बाप के दिल पर क्या बीत।
1: जी
2: भाई दीदी, हम मानते हैं कि दवा कड़वी है, लेकिन कोई भी दवा इतनी कड़वी नहीं होती जो पी ना जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अचानक ही हमारी कनपट्टी पर बाई दीवे फुंसी पैदा हो गई।
0: और बेटा तेरे बाबूजी ने फुंसी की कोई चिंता न करके 1 महीने तक रोज नीम के पत्तों का आधा से रस पिया था, जिससे खून में कोई विकार न रहे।
1: जी।
2: और बेटे हमारे इस काम से हमारी सेहत सुधर गई, साथ ही साथ घर वाले भी बड़े खुश हो गए थे। बाई दीवे अशोक, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें कोई उपदेश दे रहे हैं।
1: नहीं, नहीं, कहा
2: भाई, तुम तो हमारे समझदार बेटे हो। अशोक की माँ, ये गिलास तुम अशोक के हाथ में दे दो।
0: अच्छा।
2: वो खुद पिएगा काढ़ा भाई। हाँ तो बेटा देखो, हम आंखें बंद कर लेते हैं और तुम पी जाओ, हम 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 पी जाओ बेटा, पी जाओ। हाँ हाँ, एक सांस में पी जाओ। हाँ मैं कहता हूँ पी जाओ।
0: हाय हाय, तुम तो बुरी तरह डांटने लगे बच्चे को।
1: देखो
0: जहाँ पहले चेहरे का पसीना तो सुखाओ।
2: मैं कहता हूँ अशोक की माँ,
0: कहते हो तो कहते रहो, 3 दिन से बराबर बुखार है उसे, कमजोरी बढ़ गई है, आखिर एक सांस में कैसे पी जाएगा इतना सारा काढ़ा। ले बेटे, बेटे अशोक।
1: माँ मैं एक सांस में 2 सिर दूध पी सकता हूँ, 5 कच्चे अमरूद खा सकता हूँ, 2 दर्जन केले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि कड़वे करेले खा सकता हूँ, पर
2: एक प्याला काढ़ा नहीं पी सकते।
1: बाबूजी ये नीम के पत्तों से कहीं ज्यादा कड़वा है।
2: कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें काढ़ा पिलाकर ही दम लेंगे।
1: भगवान,
0: बेटा ये काढ़ा मैं 15 दिन तक पी चुकी हूँ। अरे मुझे भी तेरी तरह 100 बुखार था,
2: ना कमबख्त बढ़ने का नाम लेता था ना घटने का। 5 दिन बाद तुम्हारी माँ को जब ये काढ़ा दिया गया तो
0: कहीं जाके मेरा बुखार उतरा।
1: वाह
0: हाय वैद्य जी, भगवान उन्हें 100 बरस की उम्र,
2: क्या बख्ती होगी। वैद्य जी पहले 102 साल के हैं। अच्छा तो हाँ अशोक की माँ, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़े लेते हैं
0: जी।
2: तुम बिजली की तेजी से अशोक के मुंह में काढ़ा डाल देना।
0: नहीं जी, हाथ मैं पकड़ती हूँ।
2: तुम्हारा बेटा 25 साल का नौजवान है अशोक की माँ, एक झटके में ये दोनों हाथ छुड़ा लेगा।
1: आप लोग चिंता ना करें, मैं चुपचाप लेटा रहूंगा।
2: और फिर तुम घंटों तक मुंह नहीं खोलोगे।
1: बाबूजी आप मुझे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखला देते? ना हो तो वैद्य जी से कहिए वो आकर मुझे देख तो ले, पता नहीं उन्होंने मेरी नब्ज देखे बगैर कैसे काढ़ा दे दिया।
2: बेटे तुम्हारी जिद को देखते हुए भाई जी मैंने डॉक्टर साहब को बुला भेजा
1: जी।
2: बस वो आते ही होंगे 5-7 मिनट में।

0: लेकिन उनके आने से पहले हम तुम्हें इस अक्सीर दवा की एक खुराक जरूर पिलाना चाहते हैं।
1: नहीं
0: हाँ, अशोक की माँ
2: जी।
0: अच्छा तो देखो, हम अशोक के दोनों हाथ पकड़ते हैं और तुम
2: चलो, मैं दवा उड़े लूंगी।
1: प्रभु
2: जरा एक सेकंड के लिए ये गिलास तो पकड़ना अशोक के बाबू।
0: लाओ दे दो। है मुझे तो तुम्हारा हाथ भी कुछ गर्म महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें तो
2: क्या भगते हो जी?
1: बहुत अच्छे।
2: अरे अभी अभी तो मैं कढ़ी चावल खा के उठी हूँ और सुबह से अब तक कसाले का काम करती रही हूँ, मुझे भला कहीं बुखार हो सकता है?
0: अरे बातों का बुखार से क्या ताल्लुक है, तुम फौरन थर्मामीटर लगाओ।
2: कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सठिया गया है अशोक के बापू? अरे मुझे फिर भूख लग रही है, और बल्कि मुझे तो अभी रामू की माँ के घर भी जाना है।
1: फिर भी थर्मामीटर लगाने में क्या हर्ज है माँ? हम बुखार ना हो तो ना सही, बाबूजी की शंका तो दूर हो जाएगी। ये लो थर्मामीटर।
2: ओफो।
0: देखो बेटे, तुमने जरा अपनी माँ की तबीयत खराब होने की बात सुनी तो तुम्हें भी टेंशन हो गई, यानी तुम्हारी भी चिंता बढ़ गई।
1: चिंता की तो बात है ही बाबूजी।
0: यही हाल हमारा भी है अशोक बेटा, तुम्हारे लिए हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत चिंतित हैं।
1: आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं गलत था।
0: अच्छा तो बच्चे, अब तुम चुपचाप काढ़ा पी लो।
1: पी तो लूंगा बाबूजी, पर आपको एक कष्ट दूंगा।
0: हाँ हाँ बेटे जरूर, कहो कहो।
1: बाबूजी मैं सीधा लेटा रहूंगा और किसी ना किसी तरह मुंह भी खोल लूंगा, बस आप एकदम खुराक मेरे गले में पहुंचा दीजिए।
0: शाबाश बेटा शाबाश। एक सेकंड ठहरो।
1: क्यों?
0: मैं जरा थर्मामीटर देख लूंगा।
1: हाँ जी।
0: लाना जी जरा देना इधर थर्मामीटर।
2: ये लो।
0: देखा। मैं पहले ना क्या कहता, अशोक की माँ तुम्हें भी बुखार है, 100 डिग्री ठीक अशोक की तरह।
1: क्या मालूम बाबूजी माँ को भी 2-3 दिन से बुखार रहा हो।
0: हो सकता है,
1: हो सकता है।
2: मैं कहती हूँ
0: तुम्हें अब कुछ कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें लेटने की जरूरत।
1: हाँ माँ।
0: संतो, ओ संतो, अबे संतो कहाँ मर गया तू? क्यों जी, कहाँ चले गए थे तुम?
3: डाकघर गया था बाबूजी, अशोक बाबू ने 3 पोस्टकार्ड और 5।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इस चारपाई पर एक बिछौना अशोक की माताजी के लिए लगा दो, जल्दी बुखार है और ये थर्मामीटर धो लो।
2: क्या मुसीबत है।
1: बाबूजी अब इस काढ़े की 2 खुराक बना लीजिए, ये खुराक माँ को भी तो चाहिए।
0: तुम ठीक कहते हो बेटा, बिल्कुल ठीक कहते हो। बाय द वे ये लो अशोक की माँ, लो पहले तुम पी जाओ दवा,
1: जल्दी
0: तुम्हें देखकर अशोक की हिम्मत भी खुल जाएगी।
2: अरे मैं नहीं पीऊंगी ये कड़वा काढ़ा, मेरा जी पहले से ही मितला रहा।
0: वाह जी वाह, ये कैसे हो सकता है?
3: बिस्तर तैयार है बाबूजी, और ये लीजिए थर्मामीटर।
0: अशोक की माँ तुम तो पहले भी इस काढ़े को 15 दिन पी चुकी हो।
1: हाँ तुम
0: पी लो, उधर तुम्हारा बुखार उतरा, इधर मेरी और अशोक की टेंशन यानी चिंता एकदम दूर हो जाए।
2: अजी नाली में फेंकिए इस काढ़े को, भाग में बुखार होगा तो होके ही रहेगा, वैजी का काढ़ा तकदीर के लिखे को थोड़ा ही बदल सकता है।
0: देखो अशोक की माँ, अब तुम्हें भी जबरदस्ती पिलाया जाएगा काढ़ा, दवा के मामले में मरीज की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
1: गुस्सा ना कीजिए बाबूजी, लाइए पहले मुझे पिला दीजिए दवा, माँ अपने आप पी लेंगी बाद में।
0: जियो बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा तो तुम सीधे लेट जाओ, मैं तुम्हारा मुंह खोलकर अपने आप दवा डालता हूँ।
1: जी
0: हाँ, इस तरह बस बस, अब हिलो डुलो मत।
1: जी
0: हाँ हाँ हाँ, मुंह खोलो खोलो, मुंह खोलो।
1: ठहरिए बाबूजी।
0: क्या बात है बेटे?
1: बाबूजी मुझे आपका हाथ भी गर्म लगता है, कहीं आपको तो।
0: अरे पगले, धूप में चल फिर कर आया हूँ ना, कोई बर्फखाने में तो बैठा नहीं था। और फिर मेरे चेहरे की सुर्खी क्यों नहीं देखते हो तुम?
2: सुर्खी बुखार से भी बढ़ जाती है कभी कभी अशोक के बाबू, थर्मामीटर तो पास में पड़ा है, लगा के क्यों नहीं देख लेते?
1: ये लीजिए बाबूजी थर्मामीटर, भगवान करे आपको बुखार हो।
2: बेटा अशोक, बैजी मुझे बता रहे थे कि आजकल भूत के बुखार बहुत फैल रहे हैं।
1: माँ भूत नहीं, वैजी छूत की बीमारियों का जिक्र कर रहे होंगे।
2: बुखार भी तो बीमारी ही होती है बेटा।
1: तब तो ये काढ़ा पीना ही होगा माँ तुम्हें।
2: अरे मेरी जिंदगी का क्या है बेटा, जिंदगी तो तुम लोगों की चाहिए।
1: लाइए बाबूजी मुझे दीजिए थर्मामीटर। अरे आपको भी बुखार है 100 डिग्री, मेरी और माँ की तरह।
2: सच? संतोष
1: संतोष
2: संतोष, अरे इस पलंग पर एक बिस्तर और बिछा दे,
1: एक और,
2: और एक खाली प्याला भी लेते आना
1: जल्दी।
3: जी अशोक।
2: हाँ अशोक।
1: हाँ जी माँ।
2: अब इस दवा के 3 हिस्से कर दे।
1: जी अभी करता हूँ।
2: एक खुराक तेरे बाबूजी पिएंगे।
0: भाई आज मेरे बुखार का पहला दिन है, आज मेरा दवा पीना ठीक नहीं।
1: कौन जाने बाबूजी, आपको भी मेरी और माँ की तरह कल परसों से बुखार हो।
3: बिस्तर लगा दिया है बीबी जी।
2: अच्छा,
3: अरे ये लीजिए प्याले।

0: अशोक बेटा
1: जी।
0: सबसे पहले अपने बाबूजी को एक खुराक दे।
1: सबसे पहले
0: अरे इनके ही दम से तो गृहस्थी चलती है हमारी।
2: मैं आज बुखार के पहले दिन दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, ये मेरा उसूल है।
0: लेकिन नीम के पत्तों का रस तो तुमने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन तुम्हारी कनपट्टी पर फूसी।
2: ठीक है लेकिन ये काढ़ा है।
3: नमस्कार कृपा शंकर जी।
2: आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपकी सख्त जरूरत थी। देखिए मुझे और अशोक की मां को भी सौ बुखार हो गया है और अशोक के बारे में तो मैंने आपको टेलीफोन पर बता ही दिया था।
4: लेकिन डॉक्टर साहब मुझे भूख बहुत लगती है।

बुखार। अभी आपने वीरेंद्र कश्यप की लिखी हास्य नाटिका सुनी। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म बर्फी से ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में प्रीतम ने संगीत दिया, सईद कादरी ने इसे लिखा।

राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत आजा नचले फिल्म का नाम है। जयदीप साहनी ने इसे लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत।

0: सिम्बा फिल्म से ये गीत।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
8: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
9: अच्छा
10: आरबीआई कहता है
11: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आवाजें। अजय अतुल का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा। आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: डियर जिंदगी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य

0: सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: Under the three pillars of BRICS strategic partnership.
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एस स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय

0: ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं।
3: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
4: जरा मैं भी सुनूं।
3: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
4: तुमसे नहीं।

0: कहो।
1: खुद पे इतराते न जाओगे?
0: नहीं, खुद पे नहीं।

0: लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाजों में ये गीत चोरी चोरी फिल्म से आपने सुना, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

फिल्म जूली से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बॉबी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के फनकार उस जगमगाती स्माइल के नाम जिसके जादू से बचना मुश्किल है।

0: कुछ अलग ही है उनका हर अंदाज।
1: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
0: तो आइए मिलते हैं द गॉर्जियस सुपर टैलेंटेड डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित से।

फैंस की लाडली और घर में सबसे छोटी सबकी दुलारी माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ। नृत्य के प्रति जन्मजात रुझान का असर था जो नन्ही माधुरी संगीत सुनते ही ठुमकने लगती। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने कथक सीखना आरंभ किया। कुछ ही वर्षों में कथक की बारीकियां उनके नृत्य में नजर आने लगी। जल्दी उनकी डांस परफॉर्मेंस सराही जाने लगी और बतौर कथक नृत्यांगना उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी।

पढ़ाई के साथ साथ माधुरी दीक्षित कल्चरल एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती। स्कूली शिक्षा के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के उद्देश्य से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। कुछ ऐसे संयोग बने कि उन्होंने हिंदी फिल्मों के रुपहले संसार में किस्मत आजमाने का मन बना लिया। वो साल था 1984 जब राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, अबोध। इस फिल्म में उनके साथ थे बंगाल के अभिनेता तापस पॉल।

अबोध को दर्शकों का प्यार तो नहीं मिल सका, लेकिन माधुरी दीक्षित को मिली आलोचकों की प्रशंसा। आने वाले समय में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में आईं। आवारा बाप 1985 में, स्वाति, हिफाजत और उत्तर दक्षिण 1987 में, 1988 में उनकी एक साथ चार फिल्में रिलीज हुईं, मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दयावान और तेजाब। फिल्म तेजाब में फिल्म हिफाजत के बाद एक बार फिर उनके साथ नजर आए अनिल कपूर। तेजाब की मोहिनी ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया।

1989 में कई सितारों से सजी फिल्म वर्दी में उनकी जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ जमी। इसी साल आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में एक बार फिर अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई।

वक्त के साथ सफलता की सीढ़ियां चढ़ती माधुरी दीक्षित अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किरदारों में फैंस के दिल में अपनी जगह बनाती गईं। मल्टी स्टारर फिल्म त्रिदेव की जया माथुर हो या प्रेम प्रतिज्ञा की भोली भाली लक्ष्मी राव या फिर परिंदा की पारो, रोल छोटा हो या बड़ा, माधुरी दीक्षित के अभिनय की छाप गहरी होती गई।

90 के दशक में माधुरी दीक्षित के करियर का एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 में आई फिल्म कृष्ण कन्हैया के बाद फिल्म दिल की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। आमिर खान के साथ उनकी इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी दीक्षित उस नए जमाने की लड़की की पहचान बन गईं, जो खूबसूरत और स्टाइलिश होने के साथ अकलमंद भी है, आजाद ख्याल है और उसूलों की पक्की है। थानेदार, 100 डेज, साजन जैसी फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि परफेक्ट डांसिंग मूव्स और खूबसूरती के अलावा माधुरी दीक्षित में कमाल की अभिनय क्षमता है।

1992 में आई फिल्म बेटा, जिसमें एक बार फिर माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी नजर आई। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित को मिला दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

0: अपने अभिनय से हर किरदार को यादगार बनाने वाली माधुरी दीक्षित 90s की बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गईं। फिल्म थिएटर से उतरने के बावजूद उनका रोल जहन में हमेशा ताजा रहा। भला कौन भूल सकता है फिल्म खलनायक की जाबाज पुलिस ऑफिसर गंगा को, या फिल्म अंजाम की सताई हुई शिवानी चोपड़ा को, या फिल्म मृत्युदंड की केतकी सिंह को, जो अपराध और अत्याचार के खिलाफ चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है।
1: हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
2: देखिए, जाने दीजिए हमको, दीदी का तबीयत ज्यादा खराब है।
1: हमको भी कुछ बात करना है।
2: वो हम बाद में भी कर सकते हैं।
1: बाद में नहीं, अभी।
2: भगवान के लिए अभी ये बहस मत उठाइए, दीदी को जरूरत है हमारा।
3: देखिए श्रीमती जी, अपना औकात में रहिए, हमरा मरद बनने का कोशिश मत कीजिए।
2: औकात को ताकत का तराजू में तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, परमेश्वर बनने का फूल मत कीजिए।
0: 1994 में माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर राशि प्रोडक्शंस की फिल्म की हम आपके हैं कौन। सलमान खान के साथ ये उनकी एक और हिट मूवी थी, जिसके लिए उन्हें मिला तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

साल 1997 लेकर आया भावनात्मक उथल पुथल से जूझते तीन किरदारों की फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और माधुरी दीक्षित ने जीता 4th फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।

अक्टूबर 1999 में माधुरी दीक्षित अमेरिका के कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर श्रीराम माधव नेने के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

प्रेम त्रिकोण पर आधारित माधुरी दीक्षित की फिल्मों में सन 2000 की फिल्म पुकार का जिक्र भी आता है, जिसमें प्रेम में हारी ईर्ष्या दग्ध अंजलि के रूप में उनकी जमकर प्रशंसा हुई।

माधुरी दीक्षित एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो हर उम्र हर वर्ग के दर्शकों की फेवरेट रही हैं। 2001 में मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन साहब ने उन्हें लेकर फिल्म गजगामिनी का निर्माण किया। इसी साल रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की फिल्म लज्जा, जिसमें जानकी के रोल में उन्हें बहुत सराहा गया।

0: देश हो या विदेश, माधुरी दीक्षित की फिल्मों का जबरदस्त क्रेज रहा है। 2002 में फिल्म देवदास आई, जिसमें माधुरी दीक्षित ने चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में कथक नृत्यांगना माधुरी दीक्षित के अभिनय को भी बहुत प्रशंसा मिली। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया।
1: ढाई शाम रोक लई, रोक लई, रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, गई गई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक।
0: फिल्म देवदास के बाद माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ अमेरिका चली गईं। वहीं रहते हुए उन्होंने एक फिल्म साइन की। खबर मिलते ही एक बार फिर रुपहले पर्दे

2012 में वो वापस भारत लौटी और 2014 में रिलीज हुई आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म डेढ़ इश्किया, जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ नसीरुद्दीन शाह, अरशद वारसी और हुमा कुरैशी नजर आए।

0: इसी साल अभिनेत्री जूही चावला के साथ माधुरी की फिल्म आई गुलाब गैंग, जिसमें वुमन एक्टिविस्ट के रोल में उनके सशक्त अभिनय की बहुत सराहना हुई।
1: जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जुर्म जुर्म होता है और इंसाफ इंसाफ होता है। हमारे यहाँ कहावत है, डंडा सबका पीर होता है।
0: 2018 में माधुरी दीक्षित पहली बार एक मराठी फिल्म में नजर आईं। फिल्म का नाम था बकेट लिस्ट। इस फिल्म में एक बार फिर माधुरी दीक्षित के अभिनय की धाक जम गई।

2019 में एडवेंचर कॉमेडी टोटल धमाल में वो एक बार फिर अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ नजर आईं। 2019 में ही रिलीज हुई फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित के अभिनय की सराहना हुई।

सक्रियता के अलावा माधुरी दीक्षित ने जज के रूप में रियलिटी डांस शोज किए हैं। साथ ही वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त रहती हैं। अपने अभिनय और नृत्य के साथ निखरती मेस्मराइजिंग माधुरी दीक्षित हर रोल में सफल हों।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर। शोध आलेख और स्वर राजुल का था। प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोक हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें, कुछ देर ठहरी, अपने झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी, लेकिन फूल के ठहरे मन में तो हलचल मचा गई।

इटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई, जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: क्या बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी क्या, खुशबू का असर, खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा,

फूल को संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जरा झूम उठा, जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

0: छाया गीत के सुरीले सफर में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए राजुल को इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस मिशन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश

0: आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किये। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also call for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stress the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stress their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared